FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की तीसरी तिथि तदनुसार 24 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने को हैं। हमारा आज का प्रसारण अब प्रारंभ होता है।

0: ये आकाशवाणी बिलासपुर है। प्रातः के 6 बजने को है। कुछ क्षणों में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमेरिका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल उटावा

0: और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े पांचवें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से अभी हम कर रहे थे। FM 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

हर सुबह की तरह पहले वंदना देश की। देश हमारा सबसे सुंदर, हम पर देश का अरमान है। कितनों ने दी कुर्बानी, कितनों का हम पर एहसान है। भारत माँ का नाम सबसे ऊपर हो, हम नौजवान बस यही चाहते हैं। भारत माँ के चरणों में अपने प्राणों की जान निछावर करने वाले सभी वीर शहीदों को प्रणाम करते हुए आइए सुनते हैं ये देश वंदना समूह स्वरों में।

ये समूह स्वर में देश वंदना आपने सुनी और आइए अब आरंभ करते हैं आज की ईश वंदना। और सबसे पहले प्रार्थना, हे ईश्वर, मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय और लक्ष्य तो आप हैं, हम तो अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, इसलिए हमें हमारे ध्येय तक पहुंचाने का रास्ता भी आप बने और हमारी रक्षा भी आप करें। आइए सुनते हैं ये प्रार्थना, स्वर है लता मंगेशकर का।

प्रार्थना और आस्था सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि चलती जागी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जगत और माया दोनों पाट हर जीव को मोह जंजाल में फंसा कर भी रखते हैं और कर्मों के अनुसार फल भी देते हैं। इसीलिए ईश्वर का स्मरण करना ही सद्गति प्रदान करता है और ईश्वर में आस्था ही उनके निकट लेकर जाती है। अब आराधना से परिपूर्ण भारत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं ये भजन। स्वर है अनुप जलोटा का।

लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भक्ति रसे परिपूर्ण आराधना में आइए लेते हैं सीताराम का नाम इस भजन के साथ, जिसे स्वर दिया है जया किशोरी और जुबीन नौटियाल ने।

अभी आप सुन रहे थे जुबिन नौटियाल और जया किशोरी के स्वर में ये भक्ति रचना। और अब भक्ति रस से परिपूर्ण आराधना के अंत में आइए सुन लेते हैं ये भजन। स्वर है नेहा देवी सारस्वत का।

नेहा देवी सारस्वत और साथियों के स्वर में इस कृष्ण भजन के साथ ही आज की आराधना हम यहीं संपन्न करते हैं।

0: देशवंदना भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अभी आप सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बात, ड्रिप और स्प्रिंकलर से सिंचाई के लाभ। इस विषय पर सामूहिक सुझाव आज आप सुनेंगे। जानकारी का वाचन किया है त्रिलोकी सिंह क्षत्रिय ने।
1: किसान भाई हो, राम राम, जय जोहार। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। पानी के महत्व संगी हो, जम्मो जीव प्राणी बर, पशु पक्षी बर, फसल बर, पेड़ पौधा बर, उतके महत्वपूर्ण है जतका मन के मन भर है। और सबले ज्यादा पानी के प्रयोग देखे जाए तो हम अनन करथन, पानी के प्रयोग तो करथन, फिर पानी बचाना भी हमन ला बहुत जरूरी है। काबर के जैसे ही गर्मी के समय आते तहले देखथन संगी हो, जम्मो तरफ पानी के हाहाकार सुने बर मिले लगते। कोनो भी फसल उपजाथन ओमा पानी के बहुत महत्व है। काबर सिंचाई के बिना कोनो भी फसल के कल्पना करे नहीं जा सके। एक जमाना रही से संगवारी हो, आज भी हमन देखथन बहुत जगह सतही सिंचाई के ज्यादा प्रचलन है, जेमा बहुत ज्यादा पानी लगते और बहुत ज्यादा पानी लगे के संगे संग खर पतवार घला बिकट बाढ़ते। ओमा एखर ले बाचे बर हमला सिंचाई में अब नवा तकनीक से जुड़ना चाहिए, तो सिंचाई बर हमला अपनाना चाहिए संगवारी हो टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर। टपक सिंचाई जौन हवा एखर माध्यम ले हमन पानी के बचत 70-90% तक कर सकथन। काबर के ये जौन पानी है बूंद बूंद सीधा हमार फसल के जड़ में ही गिरते, और बाकी जगह में पानी जाबे नहीं करे तो ओखले पानी के भारी बचत होते। संगे संग खर पतवार तक उन्हें उगए और यमा उबड़ खाबड़ जमीन है ओहू में बढ़िया लगा के बेहतरीन सिंचाई करे जा सकते। ये तकनीक ले फसल मां बेहतर गुणवत्ता और उपज बाढ़ते, पानी कम लगते और इखरे से तर खेती खला टिकाऊ बनते। पानी सीधा पौधा के जरी में गिरते जेखर ले वाष्पीकरण और रिसाव के माध्यम ले पानी के नुकसान नहीं हुए। संगे संग टंकी में उर्वरक लग होल दिए जाते और पानी के संग में उर्वरक जो है सीधा सीधा जाके पौधा के जड़ में पहुंच जाते, तो एखर से उर्वरक के बर्बादी बांस थे और उर्वरक के जौन लागत थे बहुत कम हो जाते। काबर के उर्वरक सीधा पौधा तक पहुँचे लगते, बाकी जगह में जौन व्यर्थ उर्वरक बही थे वो नहीं बहे। संगे संग टपक सिंचाई ले खरपतवार के नियंत्रण बहुत अच्छा हो जाते। काबर के जो नमी है भुइयां में वो सीमित जगह में रही थे, जेखर कारण खरपतवार बहुत कम नहीं के बराबर उगते। टपक सिंचाई ले उच्च गुणवत्ता और पैदावार के वृद्धि मिलते संगवारी हो। पौधा मन नियमित और पर्याप्त मात्रा में उमन पानी मिलते, नमी मिलते, जेखर ले फसल जल्दी और बढ़िया ढंग ले तैयार होते। कम पानी धारण करे वाला जो माटी है ओमा तो ये विधि जो है बहुत कारगर है। संगी हो स्प्रिंकलर जो है ऐसा ही वो काम करते, फब्बारा कस

0: साथे पानी एमा दूर दूर तक जाथे अउ बराबर मात्रा में पानी जाथे। एमा भारत सरकार के डहर ले स्प्रिंकलर यंत्र मन बर सब्सिडी तको दे जाथे। एमा समय अउ ऊर्जा दोनों के बचत होथे। पारंपरिक सिंचाई के तुलना में एमा बहुत कम लागत लगथे। कहे के मतलब संगवारी हो, बूंद बूंद पानी के उपयोग एक एक फसल में होथे। पानी के बचत तो होबे करथे, संगे संग हमन के पैसा के बचत होथे, खातू माटी के बचत होथे अउ हमन के खरपतवार नियंत्रण में जोन भी अतिरिक्त खर्च लगथे ओखरो बचत होथे। हमन तो यही केवो संगवारी हो के अब टपक अउ स्प्रिंकलर सिंचाई के माध्यम ला अपना के एकर लाभ ला आपो मन लेव। तो संगी हो, ये तो रही इस खेती के बात जेमा बात करें ड्रिप अउ स्प्रिंकलर सिंचाई के लाभ। राम राम, जय जोहार।
1: कार्यक्रम खेती की बात का प्रसारण अभी किया जा रहा था। वाचन स्वर त्रिलोकी सिंह क्षत्रिय कथा। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस खान। आज के अंक में मुख्य गायन स्वर रंजना जोगलेकर का है। सतीश भाटिया का संगीत संयोजन है।

राजा जनक की यज्ञशाला में सीता को वरण करने के लिए आए नृप समुदाय ने श्री राम तथा लक्ष्मण को अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार देखा। कुछ को वो वीर रस की प्रतिमूर्ति दिखे तो कुछ ने उन्हें अपने काल के रूप में देखा। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। इसी प्रकार स्त्रियां भी हर्षित होकर दोनों भाइयों को अपनी मन भावन छवि में देख रही हैं। उनके लिए मानो स्वयं श्रृंगार रस मानव का अनुपम रूप धारण कर वहां पहुंच गया है। विद्वानों को प्रभु का विराट रूप दिखा और जनक जी के सगे संबंधियों ने उन्हें अपने कुटुंब के रूप में देखा। रानियों को वो अपने बालक प्रतीत हो रहे हैं तो योगी यति उनमें शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के दर्शन कर रहे हैं। भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन हुए, किंतु सीता जी जिस भाव से श्री राम को देख रही हैं, उसके सुख और स्नेह का वर्णन करना कठिन है। ना तो वो स्वयं उसे व्यक्त कर सकती हैं, ना ही कवि उसके लिए सक्षम है।

0: सतीश भाटिया के संगीत संयोजन में रंजना जोगलेकर के मुख्य गायन स्वर में श्री रामचरितमानस गान का आज का अंक अभी आपने सुना। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है जिसे आपने ट्यून किया है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:45 हुए हैं। समय है चिंतन सुनने का, पढ़ने में आस्था। इस विषय पर आज का चिंतन आप सुनेंगे। वाचक दीपक हटवार हैं।
1: एक व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक नित्य प्रति गीता पढ़ा करता था। उसके पोते ने अपने दादा के आचरण को देखकर निर्णय किया कि वो भी प्रतिदिन गीता पढ़ेगा। काफी समय तक धैर्यपूर्वक गीता पढ़ने के बाद एक दिन वो एक शिकायत लेकर अपने दादा के पास आया। बोला, मैं प्रतिदिन गीता पढ़ता हूँ किंतु न तो कुछ समझ में आता है और न ही उसमें से मुझे कुछ स्मरण रहता है, तो फिर पढ़ने से क्या लाभ। दादा के हाथ में वो टोकरी थी जिसमें कोयले उठाए जाते थे। उन्होंने टोकरी अपने पोते को पकड़ा दी और कहा, जाओ इस टोकरी में नदी से जल ले आओ। पोते ने जाकर नदी से जल भर लिया किंतु नदी से घर आते आते सारा पानी बह गया। टोकरी खाली की खाली थी। दादा ने कहा, तुमने आने में देर कर दी, अब जाओ और पानी भरकर जल्दी लौटो। पोता गया और टोकरी में पानी भरकर भागता भागता घर आया, किंतु कितनी भी जल्दी करने पर घर तक आते आते टोकरी का सारा पानी बह गया और टोकरी खाली हो गई। पोते ने कहा, दादाजी कोई लाभ नहीं है, टोकरी में पानी भरकर नहीं लाया जा सकता। दादा हंसे, ठीक कहते हो, टोकरी में पानी संचित नहीं किया जा सकता। टोकरी का रूप रंग देखो, उसमें पानी भरने से कोई अंतर आया है या नहीं। पोते ने टोकरी देखी, कोयलों के संपर्क से वो काली हो गई थी किंतु दो बार पानी लाने से उसके भीतर बाहर की कालीमा धुल गई थी और वो साफ सुथरी हो गई थी। गीता तुम्हारी समझ में आए न आए, स्मरण रहे न रहे, किंतु जो प्रभाव जल का टोकरी पर हुआ है वही प्रभाव गीता का तुम्हारे मन पर होता है। पोता नियमित रूप से गीता पढ़ता रहा। हमारे द्वारा परिकल्पित ऊपर की छोटी कथा का केंद्र है पढ़ने में आस्था। किसी भी किताब को औपचारिक रूप से पढ़ना एक बात है और आस्था पूर्वक पढ़ना बिल्कुल दूसरी बात है। दुर्भाग्य से हम अपने जीवन में किसी भी किताब को आस्था पूर्वक पढ़ना भूलते जा रहे हैं। लगातार व्यावसायिक होते हुए शिक्षा तंत्र में आस्था के लिए कोई भी जगह शेष नहीं रह गई है। आस्था पूर्वक पढ़ना आस्था पूर्वक जीने का पर्याय है। आज पढ़ना या तो नौकरी पर केंद्रित है या फिर मनोरंजन पर। दोनों ही स्तरों पर हम किसी गंभीर संस्कार के उत्पन्न होने की आशा नहीं कर सकते। हमारे पूर्वजों के लिए पढ़ना एक जीवनव्यापी व्यवहार था। जाहिर है कि इसीलिए वे उसमें जीवन के अर्थ का संधान कर सके। इस पर विचार करने की जरूरत है कि क्या बात है कि हम साक्षर होते हुए भी सही अर्थों में शिक्षित नहीं हो पाते। हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या साक्षर निरक्षरता की है। मध्य युग में साक्षरता कम थी लेकिन इसके बावजूद भी वो भीतर से संस्कारी युग था। तुलसी ने वेद पुराण निगम और आगम को

0: औपचारिक स्तर पर नहीं बल्कि आस्था के स्तर पर पढ़ा था। इस पढ़ने का रचनात्मक साक्ष्य उनकी कृतियां प्रस्तुत करती है। पढ़ना और सही पढ़ना तात्कालिक कर्म न होकर एक निरंतर कर्म है। इस तथ्य को भूलने के कारण ही जीवन के बड़े मूल्यों के प्रति हम लगातार लापरवाह होते जा रहे हैं। इसलिए हम जो भी पढ़ें उसे आस्थापूर्वक पढ़ें, निरंतर पढ़ें, इस विश्वास से पढ़ें कि हमारी ये साधना हमें लगातार मुक्त करती चलेगी।
1: पढ़ाई में आस्था, इस विषय पर आज का चिंतन आप सुन रहे थे। वाचक स्वर दीपक हटवार का था। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है।

FM 103.2 MHz पर आकाशवाणी बिलासपुर है। 6:50 हुए हैं। समय हो चला है आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी देने का। आकाशवाणी की 90 वर्ष की स्वर्णिम यात्रा पर कार्यक्रम हम अपने रायपुर केंद्र से रिले करेंगे आज सुबह 7:10 से। हमारे केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ आप सुन सकते हैं 7:30 से। माटी के स्वर ये कार्यक्रम हम लेकर आएंगे सुबह 8:30 और 10 कार्यक्रम होगा नन्हे श्रोताओं के लिए आओ बच्चों, जिसमें सामूहिक चर्चा होगी वर्ल्ड फुटबॉल दिवस और अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के साथ साथ बाल सभा में बच्चों की प्रस्तुति भी आपको सुनवाएंगे। नए तराने कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 10:30 से। आकाशवाणी रायपुर से प्रादेशिक समाचार हम रिले करते हैं सुबह 9:55 और 11:55 से।

हम आपको याद दिला दें, आज सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ। इसके बाद 7:40 पर एक और प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा हमारे स्वतंत्रता सेनानी। इसके बाद सदाबहार नग भी हम आपको सुनवाएंगे और नए तराने सुनवाएंगे सुबह 10:30 से। 12 बजे से संध्या 5 बजे तक हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे। शाम 5 बजे आप हमारे केंद्र से सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

संध्याकालीन सभा में आकाशवाणी रायपुर से हम रिले करेंगे जिले की चिट्ठी शाम 5:05 पर, कानून की बात कार्यक्रम शाम 6:30 से, हमारे केंद्र से आप सुनेंगे ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम शाम 5:35, 6:20 और शेष भाग शाम 7 से। इसके बाद 7:20 पर आप हमारे साथ होंगे कार्यक्रम ग्राम सभा में, जिसमें आज बेरा के गोट का विषय है कृषि यंत्रीकरण। इसके साथ साथ फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम आप मन के गीत भी सुनिएगा। सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 8:00। कलाकार हैं सुखदेव और रजनीगंधा। कार्यक्रम हम पेश करेंगे रात्रि 8:15 से।

शाम 6:30 पर कानून की बात कार्यक्रम में आकाशवाणी रायपुर से आप सुन पाएंगे निशुल्क विधिक सहायता योजना लोक अदालत नए

0: रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं। इसके बाद रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में समाचार, 9:15 से 11 बजे तक विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाते हैं और 11 बजे से 11:10 तक हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करते हैं। उसके बाद हमारी सभा का समापन होता है। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में संस्कृत और फिर हिंदी में समाचार क्रमशः आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानंद झा। अथ वार्ताः। नवदिल्ल्यां हैदराबाद हाउस स्थले अद्य विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अमेरिका देशीयेन विदेश सचिवेन मार्को रूबियो इत्यनेन समं द्विपाक्षिक संवादं करिष्यति। एतौ क्षेत्रीय वैश्विक शांति सुरक्षा संबद्धान् विषयान् समेत्य अनेकेषु भिन्न विषयेषु चर्चां करिष्यतः इति आशास्ते। अमेरिका विदेश मंत्री गतदिने प्रातः चतुर्दिवसीय यात्रा प्रसंगे भारतं संप्राप्तः। द्विपक्षीय संबंधान सुदृढ़ीकर्तुं अपि च वाणिज्य रक्षोर्जा सुरक्षा प्राविधिकी हिंद प्रशांत व्यूह रचनेत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोग विस्तारार्थं तस्य ईशा भारत यात्रा नितरां महत्वाधायिनी वर्तते। गतवासरे सह प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह भारतामेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति सन्धिं सुदृढयितुं चर्चाम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री कार्यालयस्य विज्ञप्त्यनुसारि अमेरिका विदेश मन्त्रिणा रक्षा प्राविधिकी व्यापार निवेशोर्जा सुरक्षा सम्पर्क शिक्षा पारस्परिक जनसम्बन्धादिषु विविध क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सहयोगस्य निरन्तर प्रगतेः विषये प्रधानमन्त्री संसूचितः। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी शान्ति प्रयासेभ्यः भारतस्य सतत समर्थनं पुनरुदीरितवान् अपि च सम्भाषण कूटनीति माध्यमेन विवादानां शान्तिपूर्ण समाधानाय पुनरेकदा आह्वानं कृतवान्। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अद्यारभ्य भारतीय व्यापार नेतृणां एकेन प्रतिनिधिमण्डलेन सह कनाडा देशस्य त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। वाणिज्य मंत्रालयेन सूचितं यत् श्री गोयलः व्यापार निवेश भारत कनाडा व्यापकार्थिक सहभागिता वार्तालापं प्रवर्तयितुं ओटावा टोरंटो नगरयोः द्विपक्षीय समागमं करिष्यति। संसदीय कार्य सूचना प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगुनः अवदत् यत् प्रशासनं 47+2000 वर्षपर्यन्तं विकसितं भारतं इति स्वप्नं साकारयितुं प्रतिबद्धमस्ति। चेन्नई स्थिते ICF इति संस्थाने आयोजितं आजीविका मेलनं संबोधयन् सः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे देशः आधारभूत संरचना विकासे वृत्त्यवसराणां वृद्धौ व्यापार सुगमतायां च तीव्रगत्या प्रगतिं करोति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तु विभागेन अद्य पूर्वीयोत्तर प्रदेशाय, पूर्वीय मध्यप्रदेशाय, विदर्भाय च अतितापपरा रक्तवारणिकी संचेतना

0: प्रसारिता। भारतस्य उत्तरपश्चिमीय मध्य पूर्वीय दिग्विभागेषु कतिपय क्षेत्रेषु समाना एव स्थितिः आगामी सप्तदिवस पर्यन्तं भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। अन्ते क्रीडावार्तासु, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ लखनऊ नगरे इकाना क्रिकेट क्रीडांगणे आयोजिते द्वंद्वे श्रेयस अय्यरेण अर्जितानां एकोत्तर शत धावनांकानां बलेन पंजाब किंग्स दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स दलं सप्तभिः क्रीडकैः पराजितम्। क्रीडान्ते अय्यरः स्पर्धा पुरुषः घोषितः। अद्यतने द्वन्द्वद्वये प्रथमं मुम्बय्याम् अपराह्णे सार्धत्रिवादने मुम्बई इण्डियन्स् दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन स्पर्धिष्यते, ततः सायं कोलकातायां कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली कैपिटल्स दलयोः द्वन्द्वं भविष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉ जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा के तीन दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठकें करेंगे जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। दोनों देशों का साझा लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 70 अरब कैनेडाई डॉलर तक पहुंचाना है। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामले से जुड़े पांचवें उप कार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जनसूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव

0: प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में ये घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत ने विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ उतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से दोपहर 3:30 बजे से होगा। दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी दिल्ली से कर रहे थे। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 7:05 हुए हैं। आइए श्रोताओं सुन लेते हैं आज के ट्रैफिक अपडेट्स जो हमें प्राप्त हुए हैं यातायात पुलिस बिलासपुर से।
2: नमस्कार, प्रस्तुत है बिलासपुर जिले की सड़कों में आज की यातायात व्यवस्था। दैनिक प्रसारण ट्रैफिक अपडेट बिलासपुर में कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोता साथियों का स्वागत है। आज शहर के 14 परीक्षा केंद्रों में संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली के द्वारा 2 पालियों में प्रतियोगी परीक्षा ली जा रही है। प्रथम पाली प्रातः 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी। इस परीक्षा में लगभग 5,000 परीक्षार्थी भाग लेंगे। सभी परीक्षार्थियों को बिलासपुर पुलिस के शुभकामनाएं। इस महत्वपूर्ण असाधारण परीक्षा में शामिल होने जा रहे सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है, यदि भी आज अवकाश का दिन रविवार है, अन्य दिनों की तुलना में आज सड़कों में यातायात का दबाव अपेक्षाकृत कम होता है, फिर भी एक साथ एक ही समय में इतनी संख्या में लोगों के विभिन्न वाहनों से सड़कों में आ जाने से एकाएक यातायात प्रभावित होता है। इसलिए आप सभी अपने अपने घर से परीक्षा केंद्रों के लिए कुछ जल्द ही निकलें। साथ ही यही स्थिति परीक्षा समाप्त होने पर भी होती है। अतः परीक्षा केंद्र से निकलकर जब आप सड़कों में हों, यदि भीड़ अधिक हो तो धीरे धीरे आगे बढ़ें और ओवरटेक बिल्कुल न करें, अन्यथा आप भी जाम में फंसेंगे और अन्य लोग भी। इसके साथ ही जिले की सभी सड़कों में सभी प्रकार के वाहनों का सुगम आवागमन बना हुआ है, अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, आज रविवार है। नई एवं पुरानी अरपा रिवर व्यू में संडे बाजार बड़े स्वरूप में लगता है। सड़क के दोनों किनारों में तो तमाम प्रकार की दुकानें लगती ही हैं, साथ ही अब लोग सड़क के बीच अर्थात डिवाइडर से सटाकर अपने ऑटो, वैन आदि खड़ा कर दुकान लगाने लगे हैं, जिससे यहाँ खरीदारी करने वालों के साथ साथ इस मार्ग में आने जाने वाले लोग भी परेशान होते हैं। इन दोनों ही सड़कों में दुकानदारों के चलते लगभग जाम की स्थिति बन जाती है। इस संदेश को अंतिम चेतावनी समझते हुए ऐसे दुकानदार सतर्क हो जाएं, अन्यथा अतिक्रमण विरोधी दस्ते की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
1: धन्यवाद देते हैं यातायात पुलिस बिलासपुर को इन अपडेट्स के लिए। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना हम आपको दे दें, फोन करें गीत सुने। ये कार्यक्रम प्रसारण होता है महीने के हर चौथे मंगलवार को महिला सभा के अंतर्गत, जिसमें 26 मई मंगलवार को शाम 5:35 पर इसका प्रसारण इस बार किया जाएगा, जिसकी रिकॉर्डिंग 25 मई यानी सोमवार प्रातः 11:00 बजे से 11:30 बजे के बीच की जाएगी। आपसे चर्चा का विषय होगा नई पीढ़ी की मां। जिन फिल्मों के गीत आप सुन सकते हैं उनके नाम हैं फटा पोस्टर, निकला हीरो, यारियां, चक दे इंडिया और रंग दे बसंती। बहनें हमें फोन कर सकती हैं इन नंबरों पर 07752266।

FM बैंड 103.2 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बिलासपुर का प्रसारण। 7:10 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी की 90 वर्ष की स्वर्णिम यात्रा पर कार्यक्रम हम अपने रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

रायपुर में अब आकाशवाणी का देश की वाणी आकाशवाणी में सुनिए। आकाशवाणी के पूर्व वरिष्ठ उद्घोषक श्री श्याम वर्मा से ली गई भेंट वार्ता, प्रस्तुत करता है दीपक हटवार।

0: देश की वाणी आकाशवाणी में आज हमारे खास मेहमान हैं आकाशवाणी रायपुर के एक ऐसे पूर्व उद्घोषक जिनकी वाणी को हमारे छत्तीसगढ़ के संगीत प्रेमी वर्षों से विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सुनते आ रहे हैं और खासकर छत्तीसगढ़ी फरमाइशी कार्यक्रम में सुनने वालों को यूं लगता था कि कब उनकी आवाज इस कार्यक्रम में सुनाई देगी और उनकी आवाज का हमारे छत्तीसगढ़ के संगीत प्रेमियों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहा करता था। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं आकाशवाणी के पूर्व वरिष्ठ उद्घोषक श्री श्याम वर्मा। श्याम भैया, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
0: श्याम जी, आकाशवाणी से आपका जो जुड़ाव रहा है उस यात्रा की कहानी भी बड़ी पुरानी है, तो सबसे पहले हम उस कहानी की शुरुआत की ओर जाना चाहेंगे कि रेडियो से आपका जो जुड़ाव है वो आकाशवाणी में आने से पहले किस तरह का रहा है।
1: आकाशवाणी में आने से पहले असली में क्या है कि उस जमाने में हमारे यहाँ घर में शुरू से रेडियो था, तो उस समय हम लोग बीबीसी लंदन सुना करते थे।
0: उस समय आपकी उम्र क्या रही हो?
1: करीबन मैं तो 11वीं पढ़ता था, तो वही 17-18 साल की उम्र रही है। तो उस समय हम लोग बीबीसी लंदन इसलिए सुनते थे कि हमारे गाँव में पास में एक हाई स्कूल है 1962 से, तो सभी पढ़े लिखे थे, तो गांव का कल्चर भी अच्छा था, वहां पढ़ाई लिखाई को महत्व दिया जाता था, जो मेरा गांव है। तो उस जमाने में मैं बीबीसी लंदन सुन के नोट्स बनाया करता था।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो फिर उस समय रुझान धीरे धीरे फिर आकाशवाणी रायपुर की ओर बढ़ा और यहाँ का बहुत ही मशहूर कार्यक्रम युववाणी, तो उससे हम लोग युवा थे तो प्रेरित हुआ करते थे, तो युववाणी सुने। फिर उसके बाद सूर सिंगार कार्यक्रम 1 घंटे का आता था
0: जी,
1: तो उसके भी हम लोग दीवाने हो गए, क्योंकि मैं संगीत से जुड़ा हूं, तो संगीत में भी सूर सिंगार के कुछ गीत हम लोग गाते थे। तो धीरे धीरे धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मेरा एक भतीजा समझिए या दोस्त, वो आकाशवाणी में ईए के पद पर उसकी नियुक्ति हुई। अब उस समय हम लोग ग्रेजुएट हो गए थे, तो मैंने कहा

0: सर मैं क्या करूं, आप तो जगदलपुर आपका पोस्टिंग हो गया, तो उसने बताया कि आकाशवाणी में नैमित्तिक उद्घोषक का जो पद है वो निकलता है, आप भरिए। तो ये बात है सन 1987। तो फिर रेडियो तो सुनता था, तो धीरे धीरे फिर रेडियो सुन के, जैसे लाल राम कुमार सिंह जी है, किशन गंगेले हैं, मिर्जा मसूद जी हैं, उस समय के मशहूर उद्घोषक हुआ करते थे, तो हम लोग नकल करते थे कि ये कैसे बोलते हैं। तो धीरे धीरे धीरे धीरे फिर मेरे भतीजे ने कहा भर दो, तो फिर मैं रायपुर आया। फिर सन 1987 में एक कार्यक्रम आया करता था, श्रमिक जगत और
1: जी
0: चौपाल। तो पहले हम लोग 6:40 को श्रमिक जगत करते थे और फिर उसके बाद 7:21 को चौपाल। तो धीरे धीरे हम लोग फिर यहाँ मेरा वो उस समय चयन हो गया, इंटरव्यू दिया। फिर धीरे धीरे धीरे धीरे फिर रुझान हुआ आकस्मिक उद्घोषक की ओर। उस समय क्या था, जैसे हम लोग केजुअल आते थे चौपाल कार्यक्रम में, श्रमिक जगत में, उस समय के उद्घोषक जो होते थे, हम लोगों को कंसोल जिस दिन ड्यूटी रहती थी, बोले आओ कंसोल में बैठो, तो हम लोगों को उस समय से ही कंसोल ऑपरेट करते
1: ये
0: थे।
1: 87-88 की बात है
0: सत्यासी अट्ठासी की
1: जी,
0: बात, सत्यासी की
1: बहुत
0: बात है।
1: बहुत पुरानी
0: और
1: बात।
0: फिर 1988 में फिर इन लोगों ने कहा कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम केजुअल अनाउंसर बन जाओ। तो
1: अच्छा
0: कंसोल तो जानते ही थे।
1: हाँ।
0: फिर केजुअल अनाउंसर 1988 से मैं नैमित्तिक उद्घोषक के रूप में यहाँ काम किया।
1: 1988 से कौन से साल तक आप नैमित्तिक उद्घोषक
0: मैं
1: रहे?
0: 1996 तक।
1: 96 तक।
0: जी।
1: फिर उसके बाद आप जब परमानेंट हुए तो हमने सुना है कि आकाशवाणी रायपुर के किसी अन्य आकाशवाणी केंद्र में आप परमानेंट हुए थे, कौन सा केंद्र?
0: मैं सन 1996 नवंबर में मध्य प्रदेश के आकाशवाणी शहडोल में मेरी पहली पोस्टिंग थी। और शहडोल का एक मज़ेदार किस्सा है कि जब मैं ज्वाइनिंग करने गया तो एक दो दिन तो मैं देखते रहा कि मेरे को ड्यूटी कब देंगे। तो वहाँ ये था कि ये नया लड़का है और इसको अभी सिखाओ। तो वहाँ के जो कार्यक्रम प्रमुख थे श्री मंगल सिंह जी, उसने कहा कि अभी सीखो। मैंने कहा सर मैं नहीं सीखूंगा क्योंकि मैं सब जानता हूँ। तो बोले कैसे जानते हो? मैंने कहा इतने साल तक मैं नैमित्तिक उद्घोषक था, तो मुझे कंसोल अनाउंसमेंट लिखना सब आता है। तो हम आपकी ड्यूटी कल लगा देते हैं। तो मेरी ड्यूटी लगी। और मज़ेदार देखिए कि उस समय हमारे गुरु आकाशवाणी रायपुर के किशन गंगेले जी, लाल राम कुमार सिंह जी, मिर्जा मसूद जी, कमल शर्मा जी, इनकी जो आवाज़ थी और इनका जो प्रसारण करने का तरीका था उसको हमने अपनाया। और वहाँ मैं जैसे ही पहली बार अनाउंसमेंट किया तो एक वहाँ का डीओ हुआ करते थे, बाद में वो एएसडी होके रिटायर्ड हुए, वो दौड़ते आ गया, बोले यार क्या है आप तो दिल्ली के अनाउंसर लगते हैं। तो मैंने कहा ये दिल्ली के अनाउंसर नहीं, ये आकाशवाणी रायपुर की देन है।
1: क्या बात। तो श्याम जी, शहडोल में आप कितने साल रहे?
0: मैं शहडोल में नवंबर 1996 से नवंबर 1999 तक रहा,
1: 3 साल वहां
0: तीन
1: आप
0: साल
1: रहे,
0: रहा वहां पर,
1: फिर शहडोल के बाद आप रायपुर आ गए।
0: रायपुर आ गया।
1: तो वे श्याम वर्मा जो आकाशवाणी रायपुर में करीब 8 साल तक नैमित्तिक उद्घोषक थे, वे श्याम वर्मा एक परमानेंट अनाउंसर बनकर जब आकाशवाणी रायपुर आए तो उसके बाद यहां का वातावरण कैसा था? फिर कौन कौन से कार्यक्रम आपको मिले?
0: यहाँ का वातावरण तो वो हमारे जितने सीनियर थे वो समझते थे हमारे बीच का ही बंदा है। तो मैं आकाशवाणी रायपुर में आया तो सबसे पहले तो मुझे चौपाल कार्यक्रम दिया गया। उस समय हमारे केंद्र निदेशक हसन खान जी हुआ करते थे, चौपाल दिया। फिर धीरे धीरे मेरा जुड़ाव हुआ, फिर अनाउंसमेंट भी करता था साथ में, अनाउंसमेंट के साथ डीओ की ड्यूटी करना होता था। फिर धीरे धीरे मुझे एक लोकप्रिय कार्यक्रम राज्य बनने के बाद शुरू हुआ, उसका नाम है मोर भुइयां।
1: मोर भुइयां
0: जी
1: कार्यक्रम
0: जी
1: जी।
0: तो उस समय गोवर्धन देवांगन जी देखा करते थे, फिर मुझे भी वहाँ अटैच कर दिया गया। फिर उस कार्यक्रम को धीरे धीरे करते करते फिर मुझे युवाणी छत्तीसगढ़ ही में जोड़ा गया।
1: अच्छा
0: हाँ उस समय क्या है, युवाणी छत्तीसगढ़ ही भी दिखता था,
1: जी।
0: चौपाल तो देखता ही था। फिर एक लोकप्रिय कार्यक्रम हुआ करता था नगर दर्पण, तो मेरी रोड ड्यूटी लगती थी। मैं रिकॉर्डिंग करने जहाँ भी जो जो आयोजन छत्तीसगढ़ शासन का या साहित्यिक कार्यक्रम या संगीत कार्यक्रम सभी में मुझे भेजा जाता था, वो कार्यक्रम मैंने किया। उसके बाद फिर कहा यार ये तो छत्तीसगढ़ी।

0: जानता है क्यों ना इसको आप मन के गीत और सुर श्रृंगार दे दिया जाए।
1: जी
0: तो आकाशवाणी रायपुर में रहते रहते मैं आप मन के गीत और सुर श्रृंगार कार्यक्रम बहुत किया। फिर धीरे धीरे धीरे धीरे मोर भुइयां अलग अलग स्वरूप में आने लगा। एक समय ऐसा था कि एक नाचा कार्यक्रम का हम लोग नाचा कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग करते थे। उस समय महेश मिश्रा जी हुआ करते थे
1: जी।
0: तो मुझे यही कि ये लड़का छत्तीसगढ़ ही जानता है, इनको मिश्रा जी के साथ लगा दीजिए।

0: मिश्रा जी हुआ करते थे,
1: जी
0: तो मुझे यही कि ये लड़का छत्तीसगढ़ ही जानता है, इनको मिश्रा जी के साथ लगा दीजिए। तो उस जमाने में हम लोगों ने नाचा का जो नाचा की रिकॉर्डिंग पहली बार आकाशवाणी रायपुर से हम लोगों ने जो किया वो ऐतिहासिक कार्यक्रम था। फिर धीरे धीरे हर कार्यक्रमों में, क्योंकि यहाँ आकाशवाणी में तो कोई छुट्टी अगर ले लिया तो आप इसका कार्यक्रम देखिए, तो ऐसे करके सारा कार्यक्रम मैंने गांधी चर्चा भी मैंने किया। गांधी चर्चा की रिकॉर्डिंग बहुत लंबे अरसे तक गांधी चर्चा देखा। और ये क्या है, इंटरेस्ट की बात है,
1: जी
0: अगर आप मेहनत करते हैं तो ऐसे धीरे धीरे धीरे धीरे बहुत सारा कार्यक्रम करने को मिला। फिर मैं सबसे ज़्यादा किया हूँ बाहर की रिकॉर्डिंग,
1: ओ भी
0: वो भी कार्यक्रम
1: जी
0: जिसमें संगीत कार्यक्रम एक रात को हुआ करता था, नाम मैं भूल रहा हूँ, तो वो कार्यक्रम हम लोग गांव-गांव में जाके करते थे। फिर युवाणी गांव में ये कार्यक्रम मैंने लगातार किया, ये कार्यक्रम लगभग सन 2022 तक मैंने किया। तो इसी का प्रतिसाद है कि कलाकार लोग मुझे जानते हैं। उसके बाद आकाशवाणी रायपुर में लोक संगीत कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में कलाकार लोग आते थे, फिर रिकॉर्डिंग में बेचारे बैठे रहते थे, तो मुझे हमारे पेक्ष समीर जी बोलते थे यार रिकॉर्डिंग कर दो, तो मैंने लोक रंजनी का लोक संगीत का बहुत रिकॉर्डिंग किया।
1: अच्छा श्याम जी, आप जब युववाणी गांव में या इस तरह के जो कार्यक्रम स्थल ध्वनिंकन पर आधारित हुआ करते थे, उनकी रिकॉर्डिंग के लिए आप गांव-गांव जाते थे,
0: जी,
1: आपके साथ में माइक तो एक ही हुआ करता था, और इतने सारे बजाने वाले गाने वाले जब बैठते थे तो एक माइक में किस तरह से आप सेट करते थे, उसके बारे में कुछ बता।
0: दीपक जी देखिए, एक अनाउंसर होता है, वो आवाज से नहीं, उसका मन मस्तिष्क कहता है कि यार इसको यहां बिठाऊं, इसको यहां बिठाऊं, इसको यहां बिठाऊं, फिर रिकॉर्डिंग हो जाएगी। एक अनाउंसर को माइक का जो तजुर्बा है वो बहुत होता है, तो मैं वैसे ही करता था, मैं सुनता कम था, पहले उनको बिठा के सुनता था, अरे ये तो बढ़िया आ रहा है। तो एक ये एक उद्घोषक या एक अच्छे प्रसारण जो करता है ये उनके ऊपर है, तो मैं अक्सर पहले आँख से देख लेता था कि जगह कैसी है, कहाँ कौन बैठे। तो एक
1: मतलब ये बड़े कमाल की बात होती थी
0: जी,
1: कि आज के दौर में तो इतने सारे माइक्रोफोन होते हैं, ट्रैक में अलग अलग रिकॉर्डिंग की जाती है, और
0: जी
1: ये सारी रिकॉर्डिंग आप एक साथ करते थे और एक माइक से करते
0: जी
1: थे,
0: जी
1: जिसमें गाने वाले भी दो हुआ करते थे, हारमोनियम भी साथ में हुआ करता था, बांसुरी भी, मंजीरा भी हुआ करता था, ढोलक भी हुआ
0: हाँ
1: करता
0: जी जी
1: था,
0: जी
1: तबला भी हुआ करता था। तो इस तरह से सारे साजों की और गायक कलाकारों के साथ एक माइक्रोफोन में आप रिकॉर्डिंग किया
0: जी
1: करते
0: जी
1: थे,
0: जी जी
1: और उसकी बैलेंसिंग भी बड़ी गजब की हुआ करती थी।
0: ये कमाल हमारे यहाँ मेल्ट्रॉन जो मशीन है
1: जी
0: उसी का ही है, क्योंकि जहाँ तक मैं सुना हूँ सूर सिंगार के जितने भी गीत हैं सब
1: बाहर
0: बाहर की
1: रिकॉर्ड किए
0: रिकॉर्डिंग
1: गए।
0: है,
1: जी,
0: तो उसमें एक अद्भुत अद्भुत मशीन है वो, सब आवाज़ वो खींच लेती थी, चाहे वो गाने वाले का हो हारमोनियम का हो। और हम लोगों का बिठाने का भी एक कला है
1: जी
0: कि उनको गोल बिठा देते थे, बीच में माइक रखते थे,
1: जी
0: तो वो अच्छी रिकॉर्डिंग होती थी।
1: जी
0: जी
1: जी
0: जी जी
1: श्याम जी, आपने आकाशवाणी रायपुर में बहुत से नाटकों में और पारिवारिक धारावाहिक में भी काम किया है, तो
0: जी जी
1: उसके बारे में अपने अनुभव बताएं।
0: जी अजी सुनिए, और नाटकों में ये तो असली में मैं देखा, एक समय की बात है जब मैं नैमित्तिक उद्घोषक के रूप में आता था,
1: जी
0: मिर्जा मसूद जी उस समय एक नाटक कर रहे थे, और उनको रेलवे में जो अनाउंसमेंट जो करते हैं ना, रेलवे का अनाउंसमेंट,
1: जी
0: उनके लिए एक आवाज़ की आवश्यकता थी, तो उन्होंने जितने भी कलाकार थे जो अप डाउन करते थे रेल से, बहुत कलाकारों को बुलाया, तो जमा नहीं। तो मिर्जा भैया एक बोले कि यार ये श्याम भी तो ट्रेन से सफ़र करता है, तो मुझे मिर्जा मसूद जी ने जो अनाउंसमेंट रेलवे का
1: अच्छा
0: आने जाने का अनाउंसमेंट दिया, वो मेरे लिए अद्भुत है, और मैं मिर्जा मसूद जी को इसलिए बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक पारखी निर्देशक हैं, उनको कैसी आवाज़ चाहिए, कौन चाहिए, ये मैं उस नाटक में देखा। और आपने बीच में कहा अजी सुनिए कार्यक्रम,
1: जी
0: तो अजी सुनिए कार्यक्रम में आपने भी खूब रोल निभाया, तो मैं भी बहुत दिनों तक अजी सुनिए ये कार्यक्रम किया। दरअसल मैं देखा हूं कि निर्देश

0: शिक्षक जो होते हैं वो उनके ऊपर है, किनको क्या लेना है किनको क्या लेना है। जैसे मैंने बताया एक नाटक के बारे में, वैसे ही बहुत सारे नाटकों में हमारे जो जो जो नाटक के निर्देशक हुए हैं तो वो परखते थे कि किस में किनको लेना है, किस में किनको लेना है। तो ऐसे करके मैं बहुत सारे सारा नाटक है उसमें काम किया। एक नाटक था उसमें एक राजा का रोल किया था। मैं आज भी सुनता हूँ तो लगता है कि यार उस जमाने में हमारी आवाज़ कैसी थी, क्योंकि उस समय हम लोग नैमित्तिक उद्घोषक के रूप में आते थे
1: जी।
0: तो ये आकाशवाणी रायपुर का ही देन है कि उन्होंने हमें सिखाया।
1: श्याम जी, आपने आकाशवाणी रायपुर के बहुत सारे लोकप्रिय कार्यक्रमों को लगातार किया है
0: जी,
1: खासकर फरमाइशी कार्यक्रमों की अगर हम बात करें। और फरमाइशी कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने वाले श्याम वर्मा जी को छत्तीसगढ़ के कोने कोने के श्रोता बहुत प्यार भी करते थे
0: जी, जी।
1: जानते भी थे, मानते भी थे। आप जब यहां से निकलकर किसी गांव में, सुदूर गांव में जाते थे और लोगों को जब पता चलता था कि श्याम वर्मा जी आए हैं, किस तरह की प्रतिक्रियाएं, किस तरह का माहौल आपको वहां का मिलता
0: जी? ये तो बड़ा ही एक प्रसारक और एक जो श्रोता हैं इनके बीच का जो रिश्ता है वो तो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन गांव जाओ तो ऐसे स्वागत करते थे, नहीं भैया आपको खा के जाना है भैया, नहीं भैया ऐसा है भैया। तो वहाँ ये पता चलता था कि 10 किलोमीटर के जो श्रोता हैं वो भी आते थे मिलने।
1: जी जी,
0: तो श्रोताओं का प्यार तो बहुत मिलता है। और ये चाहे आप आकाशवाणी में रहें या आकाशवाणी से आप रिटायर्ड भी हो गए, फिर भी उनका प्यार आपके प्रति वैसे ही रहता है। कारण ये है कि हम लंबे समय तक जिस संस्था में थे, लोग जो बोलते हैं कई बार कि नहीं रिटायर्ड होने के बाद श्रोता से कम हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं, श्रोता आज भी उतना ही प्यार करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के जो श्रोता हैं, ये श्रोता तो पूरे भारत में कहीं नहीं है। महाराष्ट्र के श्रोताओं से भी मेरा उतना ही जुड़ाव है और छत्तीसगढ़ के श्रोताओं की तो बात ही अलग है। और इसी के चलते श्रोताओं का जो एक जुटता हमें दिखता है ना
1: जी,
0: बहुत अच्छा लगता है।
1: आपने तो बहुत सारे श्रोता सम्मेलन भी अटेंड किए हैं
0: जी, जी जी।
1: तो उन सम्मेलनों का कोई खास अनुभव आपको याद आ रहा होगा?
0: मैं अभी 4 बड़े बड़े श्रोताओं का सम्मेलन, पटियाला गया था मैं, बागपत गया, बुलढाणा, ये 3 जगह मेरा जाना हुआ। वो तो जो श्रोता है वो तो ऐसा हाथों हाथ लेते हैं उद्घोषक को कि पूछे मत। लेकिन एक चीज है, लोगों को लगता है कि रेडियो के श्रोता वही कुछ वर्ग के लोग हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि रेडियो में एक बड़े उद्योगपति भी जुड़ा हुआ है, एक वैज्ञानिक भी जुड़ा हुआ है और एक शिक्षाविद भी जुड़ा रहता है। तो जब वहाँ जाते हैं ना, तब वो जब ये मिलते हैं तब पता चता है कि नहीं यार, हम रेडियो में हालांकि काम करते हैं लेकिन ये जो श्रोता वर्ग हैं कितने बड़े बड़े लोग हैं, समय निकाल के कैसे रेडियो सुनते हैं। और आप जैसे ही जाएंगे तो इतनी आत्मीयता से आपको, मैं तो अभी जहाँ जहाँ गया हूँ ना तो वो तो ऑटोग्राफ के लिए उन लोग भी तरसते हैं अभी भी। लेकिन ये चीज़ मानना पड़ेगा कि इतने धनाढ्य होने के बाद भी श्रोता उस सम्मेलन में आते।
1: श्याम जी, जिस दिन आप आकाशवाणी से सेवानिवृत्त हुए वो तारीख कौन सी थी और उस दिन आपको कैसा लग रहा था?
0: 2022 के जनवरी के माह की अंतिम तारीख को मैं जब विदा हुआ, मुझे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ा कि मेरा कहना है कि जिस संस्था में आपने काम किया वो संस्था में रहते हुए भी आप उतना ही प्रेम करते थे और जाने के बाद भी उस संस्था को उतना ही सम्मान दीजिए। एक संस्था के लिए तो यही सबसे बड़ी बात है कि हम उस संस्था को मरते दम तक न भूलें। आकाशवाणी रायपुर को इसलिए बहुत बड़ा मानता हूँ कि यहाँ बड़े बड़े प्रसारक हुए हैं जो दिल्ली तक गए हैं और यहाँ के कार्यक्रमों का जो नाम उन्होंने दिया, आज भारत के बहुत से स्टेशनों में ऐसा लगता है कि आकाशवाणी रायपुर से लिया गया कार्यक्रम का नाम।
1: श्याम जी, अभी सेवानिवृत्ति के बाद आपका समय किस तरह से कट रहा है?
0: दरअसल सेवानिवृत्ति के बाद एक तो मुझे बचपन से आदत है 3:30 बजे उठने की, फिर सुबह घूमता हूँ, घर का जो काम है वो करता हूँ। और मेरे लिए मेरे बड़े भाई ने एक बहुत बड़ा संपत्ति दिया है, वो है संगीत का, क्योंकि मेरे बड़े भैया स्वर्गीय प्रेमलाल वर्मा जी बड़ोदरा घराने के, हालांकि हम लोगों ने पूरे परिवार संगीत में रमे हुए हैं, हम लोगों ने सीखा नहीं क्योंकि उनको डरते थे, लेकिन उनके दिए हुए संगीत का भी हम लोग आनंद उठाते हैं। मैं हारमोनियम बजाता हूँ और गाता हूँ, और सबसे बड़ी बात है तू हमारा

0: पोता आ गया है, तो वो उनको पूरा समय देना पड़ता, समय का पता ही नहीं चलता। और फिर शाम को यार दोस्तों के यहाँ बैठना होता है, और एक सेवानिवृत्त कोई भी हो उनको सबसे वही संबंध बना के रखना चाहिए जो हमारा जब हम यहाँ काम करते थे उस समय का संबंध अभी काम आता है।
1: तो श्याम जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप जिस तरह से हमें दिखाई दे रहे हैं, बड़े स्वस्थ और फिट लग रहे हैं। आप यूं ही स्वस्थ रहें, फिट रहें, हमेशा प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, और आकाशवाणी रायपुर की सुनहरी यादों के संग सदैव खुश रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: देश की वाणी आकाशवाणी में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के पूर्व वरिष्ठ उद्घोषक श्री श्याम वर्मा से ली गई भेंट वार्ता।
1: FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ। आज का कार्यक्रम आप सुनेंगे त्वचा रोग के संदर्भ में।
2: सेहत की बात डॉक्टर के साथ इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर अजय पांडे, चर्म रोग विशेषज्ञ, स्किन क्योर, लिंक रोड, नारायण प्लाजा, बिलासपुर। फोन नंबर है 07828093301 और 7587453632।
1: सेहत की बात डॉक्टर के साथ इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच हैं डॉक्टर अजय पांडे, इस अंचल के जाने माने त्वचा रोग विशेषज्ञ। श्रोताओं, त्वचा से जुड़ी समस्याओं पर लगातार हर सप्ताह हम डॉक्टर साहब से बातें कर रहे हैं और पिछले कुछ अंकों में हमने कुष्ठ रोग के संदर्भ में काफी गहराई से जाना कि कुष्ठ रोग क्या है, इसमें आनुवंशिक कारण क्या है, ये कैसे होता है, इसका इलाज कैसे किया जाता है, और इलाज के बारे में ही आज के अंक में आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब, पिछले अंक में आपने हमें बताया कि दवाइयां कैसी होती हैं, उनका साइड इफेक्ट क्या होता है और उपचार उनका कैसे किया जाता है, इसके बारे में आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो इलाज होता है इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है और इसे कैसे पूरा किया जाता है।
3: आकाशवाणी बिलासपुर एंड सुप्रिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार हमने ये देखा है कि कुष्ठ के मरीज पूर्वाग्रह के कारण अपना इलाज कराने में संकोच करते हैं और इलाज नहीं कराते हैं
1: जी।
3: पिछले 10 से 15 वर्षों में मैं काफी इस चीज से रूबरू हुआ हूं। तो ऐसे केसेस में सिर्फ इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं अपना नाम, नंबर और पता शेयर करना चाहूंगा। यदि आपको लगता है कि आपको कुष्ठ है और आप संकोचवश पास के चिकित्सालय में नहीं जा पा रहे हैं तो आप उनसे मिल सकते हैं। मैं डॉक्टर अजय पांडे, चर्म रोग विशेषज्ञ, स्किन क्योर क्लिनिक, लिंक रोड, नारायण प्लाजा, जो अग्रसेन चौक के पास है। मेरा नंबर है 7828093301। एक बार नंबर फिर से नोट करेंगे, 7828093301। कुष्ठ को लेकर यदि आपको लगता है कि आपको कुष्ठ है, आपकी संकुचित प्रवृत्ति है, तो आप मुझसे आके अकेले बंद कैबिन में मिल सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं कि हाँ मुझे कुष्ठ है कि नहीं है। और खास तौर से स्त्रियां इस बीमारी को लेकर और भी संकोच में रहती हैं कि कहीं उनसे परिवार में भेदभाव न कर दिया जाए
1: जी।
3: तो इसलिए यदि कोई संकोच है तो आके मिलिए। और कुष्ठ की दवाई शासकीय अस्पतालों में फ्री में दी जाती है, साथ ही साथ इस बीमारी की दवाई दवा दुकानों में भी बड़ी सरलता से उपलब्ध होती है और बहुत ही सस्ती होती है। महीने भर की दवा हार्डली 500 रुपए में आ जाती है।
1: हाँ डॉक्टर साहब, पिछले सप्ताह जो कार्यक्रम था उसमें हमने जाना कि दवाइयाँ कौन कौन सी हैं, उनके साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं। अब ये प्रश्न आता है कि कोई गर्भवती महिला है, छोटे बच्चे हैं, वयस्क लोग हैं, इन सब के इलाज के दौरान इनकी दवाई के संदर्भ में कैसा ध्यान रखा जाता है।
3: यदि कोई महिला गर्भवती है तो उसके दौरान भी कुष्ठ की दवा ले सकती है, इसमें कोई मनाही नहीं है। यदि कोई महिला स्तनपान करा रही है तो

0: स्तनपान के दौरान भी आप कुष्ठ की दवाई ले सकती हैं। कुष्ठ की दवा स्त्रियों में चालू करने के पूर्व अपने खून में हीमोग्लोबिन की जांच करा लें और जहां तक हो सके साथ ही साथ एक खून बनने की विटामिन की गोली जोड़ लें। और यदि हम चाहेंगे कि खाने में क्या खाएं जिससे हमारा खून बढ़े, तो सुबेरे शाम देसी गुड़ मिठाई के टुकड़े के बराबर, अंकुरित मूंग और अंकुरित चना
1: जी।
0: गुड़, देसी गुड़ आयरन का, जो कि खून बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है, उसका रिचेस्ट सोर्स है, मतलब कि दवा भी इसके सामने फेल है।
1: क्या बात है।
0: और बड़ी अच्छी बात कि जो गुड़ से जो आयरन मिलता है वो एब्जॉर्ब भी बहुत अच्छा होता है।
1: और बच्चों के लिए क्या सलाह होगी, क्योंकि ये कुष्ठ क्या किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है?
0: जी हाँ, कुष्ठ बैक्टीरिया से होने वाली संक्रामक बीमारी है, इसलिए ये किसी को भी हो सकती है, मीन्स 6 महीने के बच्चे से लेकर 100 साल के व्यक्ति, हमें सभी उम्र में सतर्क रहना होगा।
1: डॉक्टर साहब, एक बात मन में आती है कि जैसे हम टीबी का केसेस देखते हैं उसमें एकदम फिक्स बताते हैं कि आपको इतने समय तक नियमित दवा लेनी है, नहीं तो फिर दोबारा से भी आपको बीमारी हो सकती है। एक बार लक्षण दिखने बंद होते हैं तो लोग दवा लेना छोड़ देते हैं और फिर जब दोबारा से होता है तो फिर वो दवा काम भी नहीं करती। तो कुष्ठ में भी क्या इसी तरह का है कि कुछ समय दिया गया, इतने समय तक आपको दवाएं लगातार खाने हैं बिना रुके?
0: कुष्ठ में 2 तरह का ट्रीटमेंट चलता है, 6 महीने का और साल भर का। हमें 6 ब्लिस्टर पैक दिए जाते हैं और हमें उसको 6 महीने, और एक में 12 ब्लिस्टर पैक दिए जाते हैं जिसको हमको 12, हमको 1 से 2 महीने का ग्रेस पीरियड दिया जाता है कि हाँ बीच में यदि आपने वो भूल गया हो तो कंप्लीट कर लीजिए। कुष्ठ नहीं, किसी भी बीमारी में आप जितना नियमित होके दवा का सेवन करते हैं आपको रिजल्ट उतना अच्छा मिलता है और त्वरित मिलता है। त्वरित मिल जाता है इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है, चाहे वो कुष्ठ की बात हो चाहे वो टीबी की बात हो, कि आपको आराम मिल गया तो आप दवाई बंद कर दें या इरेगुलर हो जाएं। ऐसा आप किसी भी बीमारी के साथ करेंगे तो वो बीमारी दूसरी बार और तीव्र वेग से धावा बोलेगी। जो भी शेड्यूल है, जितने दिन के लिए नियम बनाया गया है उतने दिन तक आपको नियमित होके लेना है। किसी कारणवश, मैं इस बात को जोर देकर बताना चाहूंगा कि हमारे लोग अक्सर काम को लेकर दूसरे राज्यों में जाते हैं और जिसके कारण उनकी जो दवाई चल रही होती है वो इंटरप्ट हो जाती है। कुष्ठ और टीबी की दवा अक्सर बाधित हो जाती है। यदि हफ्ते 2 हफ्ते का गैप हो भी जाता है कुष्ठ को लेकर, तो घबराएं ना, आप दवा को चालू कर दें।
1: जी बिल्कुल।
0: और यदि आपको लगता है कि आप चले गए हैं, अब आपको आते नहीं बन रहा है, तो सरकार जहां से दवाई आपको दे रही है, वितरित कर रही होती है, वहां से आपको एक कार्ड भी देती है जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा रहता है, तो उस कार्ड को आप अपने साथ संभाल के रखिए और जहां पे भी आप जाके काम कर रहे हैं, जो आपके समीपस्थ शासकीय चिकित्सालय है, जाके उस कार्ड को दिखाइए, आपको वो दवा वहां से मिलना चालू हो जाएगी। सरकार ने NELP कार्यक्रम के तहत ये व्यवस्था करके रखी हुई है।
1: बिल्कुल, क्या बात है सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि आप पूरे भारत में कहीं भी हैं आपको अपनी दवाई रोकने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, बस आपको तैयारी रखनी होगी 1 महीने की 2 महीने की, नहीं तो आपका कार्ड आपके साथ है तो आप कहीं से भी दवाई ले सकते हैं। तो ये बहुत ही सारगर्भित बातें हैं जो आज हमें इस कार्यक्रम में पता चली है, सेहत की बात डॉक्टर के साथ, और कुष्ठ रोग के संदर्भ में हम कई अंकों में आपसे बात कर रहे हैं। आगे के अंक में और भी विस्तार से कुछ बातें जो छूट रही उनके बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका धन्यवाद और नमस्कार।
0: धन्यवाद सुप्रिया जी।
2: सेहत की बात डॉक्टर के साथ, इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे डॉक्टर अजय पांडे, चर्म रोग विशेषज्ञ, स्किन क्योर, लिंक रोड, नारायण प्लाजा, बिलासपुर। फोन नंबर है 07828093301 और 7587453632।
0: उस कार्ड को आप अपने साथ संभाल के रखिए और जहां पे भी आप जाके काम कर रहे हैं या आंशिक रूप से सेट हुए हैं, वहां पे जाके जो आपके समीपस्थ शासकीय चिकित्सालय है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या जिला चिकित्सालय हो या मेडिकल कॉलेज हो या रीजनल सेंटर हो, अपने समीपस्थ जो है शासकीय चिकित्सालय में जाके उस कार्ड को दिखाइए, आपको वो दवा वहां से मिलना चालू हो जाएगी। सरकार ने NELP कार्यक्रम के तहत ये व्यवस्था करके रखी हुई है।
1: बिल्कुल।
0: हाँ, तो आप ये बिल्कुल मत संकोच कीजिए कि मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, मैं जम्मू चला गया हूँ, अब मुझे दवा कैसे मिलेगी, मुझे तो वापस छत्तीसगढ़ आना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप आने का जरूरत नहीं। यदि 1-2 महीने के लिए गए हैं तो दवा लेते जाइए, और ज्यादा देरी के लिए गए हैं तो ये कार्ड वहां दिखाइए, सरकार आपको वहां आपके निवास स्थल के पास

0: व्यवस्था कर दी है।
1: क्या बात है सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि आप पूरे भारत में कहीं भी हैं आपको अपनी दवाई रोकने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, बस आपको तैयारी रखनी होगी 1 महीने की 2 महीने की, नहीं तो आपका कार्ड आपके साथ है तो आप कहीं से भी दवाई ले सकते हैं। और इस अंक को समाप्त करने से पहले बस एक प्रश्न और कि दवाई लेने के कितने दिन में संक्रमण वाली स्थिति खत्म हो जाती है?
0: 99% केस में 1 महीना, सरल शब्दों में यदि आज मैं दवाई चालू करता हूं तो 1 महीने के बाद मैं दूसरों को बीमारी नहीं फैला पाऊंगा।
1: जी, तो ये बहुत ही सारगर्भित बातें हैं जो आज हमें इस कार्यक्रम में पता चली हैं सेहत की बात डॉक्टर के साथ, और कुष्ठ रोग के संदर्भ में हम कई अंकों में आपसे बात कर रहे हैं। आगे के अंक में और भी विस्तार से कुछ बातें जो छूट रही उनके बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब आपका धन्यवाद और नमस्कार।
0: धन्यवाद।
2: सेहत की बात डॉक्टर के साथ इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे डॉक्टर अजय पांडे, चर्म रोग विशेषज्ञ, स्किन क्योर, लिंक रोड, नारायण प्लाजा, बिलासपुर। फोन नंबर है 07828093301 और 7587453632।
3: अभी हम प्रसारित कर रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ। आज का कार्यक्रम त्वचा रोग पर आधारित था। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 7:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्रोताओं कार्यक्रम प्रायोजित कार्यक्रम हमारे स्वतंत्रता सेनानी।

हमारे स्वतंत्रता सेनानी कार्यक्रम में आज हम जॉर्ज जोसेफ को याद कर रहे हैं। जॉर्ज जोसेफ जो स्वतंत्रता पूर्व भारत में एक अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी, दूरदर्शी वकील और राष्ट्रीय एवं धार्मिक एकता के प्रबल समर्थक थे। केरल के चेंगनूर में एक समृद्ध पारंपरिक सीरियाई ईसाई परिवार में जन्मे जोसेफ असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ पूर्णतः समर्पित होने वाले शुरुआती और प्रमुख ईसाई नेताओं में से एक थे। ऐसे समय में जब ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां भारत को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करने का सक्रिय रूप से प्रयास कर रही थी, जॉर्ज जोसेफ ने अपनी कानूनी कुशलता, पत्रकारिता मंच और राजनीतिक प्रभाव का उपयोग एक एकीकृत धर्मनिरपेक्ष भारत के लिए किया था, जहां धार्मिक अल्पसंख्यक बहुसंख्यक समुदाय के साथ सहजता से घुल मिल जाएं। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था तो जोसेफ ने अपने आकर्षक कानूनी कैरियर को त्याग दिया और उनकी तीक्ष्ण बुद्धि, राष्ट्र के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को पहचानते हुए गांधी ने उन्हें 1921 में प्रमुख राष्ट्रवादी समाचार पत्र यंग इंडिया का संपादक नियुक्त कर दिया था। सामाजिक एकजुटता के प्रति जोसेफ की प्रतिबद्धता का असाधारण उदाहरण वायकॉम सत्याग्रह के अंतर्गत उनका नेतृत्व दिखा था। यह विरोध प्रदर्शन वायकॉम स्थित शिव मंदिर के आसपास की सार्वजनिक सड़कों पर निम्न जाति के हिंदुओं के चलने को अधिकार देने की मांग को लेकर शुरू किया गया था। ईसाई होने के नाते जोसेफ का कोई व्यक्तिगत धार्मिक हित नहीं था, फिर भी वे आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में उतरे, सत्याग्रह शिविर का नेतृत्व संभाला और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा उन्हें बेरहमी से जेल में डाल दिया गया था। हालांकि उन्होंने जातिगत भेदभाव को भारतीय राष्ट्र की आत्मा पर गहरा घाव माना था, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर कर दिया था। जोसेफ का तर्क था कि मानवीय गरिमा और सामाजिक समानता सर्वोच्च राष्ट्रीय गुण है। उनकी सक्रिय भागीदारी ने व्यापक जनमानस को यह सिद्ध कर दिया कि सामाजिक सुधार का संघर्ष केवल एक आंतरिक हिंदू मुद्दा नहीं बल्कि सामूहिक भारतीय जिम्मेदारी है। सन 1920 और 1930 के दशकों के दौरान ब्रिटिश सरकार ने अलग अलग निर्वाचक मंडलों की अवधारणा को आक्रामक रूप से बढ़ावा दिया था। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें मुसलमान, सिख और ईसाई केवल अपने अपने धर्मों के उम्मीदवारों को ही वोट देते, जहां कुछ अल्पसंख्यक नेताओं ने राजनीतिक चिंता के कारण इसका समर्थन किया, वहीं जोसेफ ने इसका कड़ा विरोध किया था। उन्होंने देश भर में ईसाई सभाओं को संबोधित करते हुए जोरदार तर्क दिया कि अलग राजनीतिक व्यवस्था की मांग से ईसाई राष्ट्रीय मुख्यधारा से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि

भारतीय ईसाइयों को सर्वप्रथम अपने को भारतीय ईसाई भारतीय समझना चाहिए, बाद में ईसाई, और उन्होंने अपने हिंदू मुस्लिम पड़ोसियों पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। उनका मानना था कि अल्पसंख्यकों की सच्ची सुरक्षा संवैधानिक अलगाव से नहीं बल्कि आपसी भाईचारे से आती है। जॉर्ज जोसेफ का निधन 1938 में 50 वर्ष की आयु में अपेक्षाकृत जल्दी हो गया था, जिससे वे भारतीय स्वतंत्रता में उदय के क्षण से वंचित रह गए। हालांकि उनके द्वारा रखी गई दार्शनिक नींव भारत में ईसाई समुदाय की भूमिका का खाका बना गई थी। जब मई 1949 में भारत संविधान को अंतिम रूप देने के लिए संविधान सभा की बैठक हुई थी, तब डॉक्टर जे एच सी मुखर्जी जैसे ईसाई नेताओं ने जॉर्ज जोसेफ जैसे प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के दर्शन का स्पष्ट उल्लेख किया था। उनके वैचारिक पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए स्वेच्छा से ईसाइयों के लिए आरक्षित सीटों और अलग निर्वाचक मंडलों को त्याग दिया था। इसके बजाय एक एकजुट धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत पर भरोसा करना उन्होंने चुना। जॉर्ज जोसेफ की अंतिम परिणति ठीक मई 1949 के उत्तरार्ध में घटी। 24 और 25 मई 1949 को भारत की संविधान सभा की सलाहकार समिति ने अल्पसंख्यक अधिकार पर अंतिम ऐतिहासिक निर्णय लेने के लिए बैठक की। जोसेफ द्वारा निर्धारित मार्ग का अनुसरण करते हुए डॉ एच सी मुखर्जी जैसे ईसाई नेताओं ने इन्हीं दिनों अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण समाप्त करने के लिए आधिकारिक तौर पर मतदान किया और मई के उत्तरार्ध में ही सांप्रदायिक सीटों को त्याग कर ईसाई नेतृत्व ने धार्मिक एकता का अंतिम व्यवहारिक और ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत किया। यह घोषणा करते हुए वे भारत के ताने बाने में समान नागरिकों के रूप में विलीन होना चाहते हैं, न कि पृथक समूह के रूप में।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारे स्वतंत्रता सेनानी। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:47 हुए हैं। पेश है सदाबहार नगमे।

आइए सुनते हैं राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में कार्यक्रम का पहला गीत, साधना सरगम और कुमार सानो की युगल स्वरों में।

जुर्म फिल्म का ये मीठा सा गीत आप सुन रहे थे कुमार सानू, साधना सरगम और साथियों की आवाजों में। इंदिवर की शब्द रचना, संगीत निर्देशन राजेश रोशन का था।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: इस संदेश के बाद एक सूचना हम अपने श्रोताओं तक पहुंचा दें। फोन करें, गीत सुने। कार्यक्रम का प्रसारण हर महीने के चौथे मंगलवार को महिला सभा के अंतर्गत किया जाता है। इस माह इसका प्रसारण 26 मई 2026 को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 25 मई सोमवार को 11 बजे से 11:30 बजे के बीच की जाएगी, जिसमें बहनों से चर्चा का विषय होगा नई पीढ़ी की माँ। जिन फिल्मों के गीत सुनवाए जाएंगे उनके नाम हैं फटा पोस्टर, निकला हीरो, यारियां, चक दे इंडिया और रंग दे बसंती। बातचीत के लिए, फरमाइशी गीतों के लिए बहनें हमें फोन कर सकती हैं इन नंबरों पर 0775226592 और 3100026 266592। दूसरा नंबर है 310026। बिलासपुर का एसटीडी कोड 077752। आपके फोन का हमें इंतजार रहेगा। प्यार तो होना था। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: आशा भोसले और उदित नारायण की आवाजों में समीर का लिखा हुआ गाना अभी आप सुन रहे थे, जतिन ललित के संगीत निर्देशन में फिल्म प्यार तो होना ही था से। इसी गीत के साथ आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। ये आकाशवाणी बिलासपुर है, 8 बजने वाले हैं। समाचारों के लिए कुछ ही देर में हम दिल्ली केंद्र से जुड़ेंगे।
1: घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी, स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
4: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
5: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।

0: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
1: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
0: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
2: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
5: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक

0: शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
1: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्ते में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमरीका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स के अनुसार रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लोकसत्ते ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर सीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
1: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता

समाचारों का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी दिल्ली से कर रहे थे। एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। 8:30 में हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम माटी के स्वर।

बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम माटी के स्वर सुनने वाले सभी श्रोताओं का, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। और कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं ममता चंद्राकर और साथियों की आवाजों में पहला गीत, जिसे सुनना चाहते हैं देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, मयाराम रजक, पुनेश्वर फानेश्वर, मुकेश कुमार, कुमारी हाविया और टानिया। इसी गीत को सुनना चाहते हैं हथकीरा भाटापारा से पंचू यादव, दादू यादव, बावली से कमलेश साहू, हारेंद्र और सुशील बिलसपुरिया। भाटापारा से चिट्ठी आई है बचकामल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चोवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु, लेखराम यदु, राधेश्याम, जितेंद्र साहू, आपके साथ मारवाड़ी कुआं से सियाराम, अश्विनी पांडे, सोराडी से सुब्रत चौधरी, बेबी अनीशा और रायपुर से नीलो मेघ भी इस गीत को सुनना चाहते हैं। हटौत बाजार लाहौत से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर, राजकुमारी पटेल भी इस गीत को पसंद करते हैं। रसेड़ा अकलतरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी साहू, योगेश कुमार, कीर्ति कुमार, संध्या, डिकेश और वासु डॉली पूर्वेश साहू भी इस गीत को सुनना चाहते हैं। मुंगेली गोल बाजार खपरी कला से संतोष कुमार सोनी, सुनीता, खिलेश, नेहल, पेहू, छोटी, दानिश, दीक्षा, संजय, पूजा, रामा, पूर्वी, पुलकिता, खुशी के साथ लल्लू पांडे और भूषण सोने भी ममता चंद्राकर, मिथिलेश की आवाजों में कार्यक्रम का ये गीत सुनना चाहते हैं।

कार्यक्रम माटी के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे कुंवराबाई और साथियों के स्वर में, जिसे सुनना चाहते हैं नेहरूवाड़ भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत राघवेंद्र के साथ, मोहनपारा अकलतरा से अभिनव अभिषेक और उमा देवी साहू, महमदपुर भक्तिन बाजार अकलतरा से रमेश कैवर्त, राजकुमारी कैवर्त और आरती कैवर्त भी इस गीत को पसंद करते हैं। भुरसुदा से चिट्ठी आई है भगवानी संतोषी, चिराग राजेंद्र, चंद्रप्रकाश और नेहा सेन की। दतरंगी से विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा रीना लक्ष्मीना के साथ, लालपुर से लोकेश और समीर यदु भी इस गीत को पसंद करते हैं। भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार, जावेंद्र कुमार, महादेव घाट से अमलेश्वर के डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर भी इस गीत को पसंद करते हैं। कतियापारा जुना बिलासपुर से इस गीत की फरमाइश भेजी है सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रियांश, कान्हा, आदित्य देवांगन के साथ। बम्बर चाटी डी से गंगा देवी देवांगन, पूनम, धनेश्वरी, महेश्वरी, कुमारी बिल्की और बेबी मीनाक्षी के साथ निधि देवांगन ने।

0: दिल में अटका हो कोई गाना तो सोचिए मत, भेजिए ईमेल और सुनिए अपना फेवरेट गीत।
1: होता है तो ये प्यार है।
0: कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने में रोज शाम 6:20 से 6:45 तक और 7 से 7:20 तक।
1: तुमको खुश देखकर मैं बहुत खुश हुआ।
0: आकाशवाणी बिलासपुर से। ईमेल आईडी है geetmail@gmail.com।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा

0: 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आकाशवाणी बिलासपुर से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम माटी के स्वर। अगला गीत सुनाने से पहले एक सूचना हम अपने श्रोताओं को दे दें। फोन करें, गीत सुने। कार्यक्रम का प्रसारण महीने के चौथे मंगलवार को महिला सभा के अंतर्गत होता है। इस बार इसका प्रसारण 26 मई मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 25 मई सोमवार को सुबह 11 बजे से 11:30 बजे के बीच की जाएगी, जिसमें चर्चा का विषय होगा नई पीढ़ी की माँ। जिन फिल्मों के गीत कार्यक्रम में सुनवाए जाएंगे उनके नाम है फटा पोस्टर, निकला हीरो, यार या चक दे इंडिया और रंग दे बसंती। अपनी बातचीत और अपनी फरमाइशी गीतों के साथ बहने हमें फोन कर सकती हैं इन नंबरों पर 0775226592 और 3100026। आपके फोन का हमें इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। बढ़ते हैं माटी के स्वर कार्यक्रम में अगले गीत की ओर, जिसे हमने लिया है रामेश्वर खांडे की आवाज में। सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता साथी रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र के साथ खुशी और रौनक सेन, पहरा अहिवारा जिला दुर्ग से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति और छाया बंछोर, हरदेव लाल पारा वार्ड सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया, रिक्कू, सन्नी, कोमल यादव और ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता, शशिकांता प्रजापति, ग्राम पंचायत पठेना बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी के साथ चटौदा सारा गांव के सुजान वर्मा, सहोदरा वर्मा और आयुषी के साथ कृत वर्मा इस गीत को सुनना चाहते हैं।

ये गीत आप सुन रहे थे निशु बंजारे की आवाज में। कार्यक्रम माटी के स्वर का अगला गीत हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर है। रोहासी से डगेसर राम साहू, नूतन, गौरव, घनश्याम, अलका और जानवी के साथ फूलबती साहू। भाटापारा से बिरजा मानिकपुरी, संजना, संगीता, अंजलि, चारू मानिकपुरी और आपके साथ मिलाओ, संतोष, संदीप, अजीत, लक्की, भार्गव, निलय और विवान मानिकपुरी भी इस गीत को सुनना चाहते हैं। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू। हथनीपारा भाटापारा से दुर्गा दुर्गेश्वरी, गीतू, मुकेश वर्मा, हरीश, किरण और दुलारी वर्मा इस गीत को पसंद करते हैं। शांतिनगर से रमजान खान, सिकंदर, अशरफ खान, अयाज खान, अल्फैज खान, हजीरुन्निशा, सादिया खान। बिल्हा से आपके साथ शेख नासिर, महजबीन बानो इस गीत को सुनना चाहते हैं। और स्थान लूतरा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज भी इस गीत को पसंद करते हैं। उड़नताल दगौरी से श्यामता प्रसाद गायकवाड़, हेमलता, जागृति, सरला, पल्लवी, समीर गायकवाड़ भी इस गीत को सुनना चाहते हैं। और दरचूरा से ददवा साहू, भूरी साहू, संतोष, ईदलौरिन, रेखा, मोतीलाल, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम साहू सुनना चाहते हैं। कार्यक्रम का अगला गीत

0: पापा लाइए।
1: मंजू चतुर्वेदी के गाए इस गीत के साथ ही आज का माटी के स्वर कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। हमारे नए श्रोता जो हमें अपनी फरमाइशी भेजना चाहते हैं और गीत सुनना चाहते हैं वो इस पते पर चिट्ठी भेज सकते हैं। कार्यक्रम है माटी के स्वर द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 49 आकाशवाणी नूतन कॉलोनी सरकंडा बिलासपुर 495006। ये है हमारा पिन कोड नंबर। अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें आज सुबह 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ बच्चों। लिंटा मनोज के साथ वर्ल्ड फुटबॉल दिवस अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस पर सामूहिक चर्चा होगी। साथ ही क्रम होगा बाल सभा का जिसमें हम बच्चों की प्रस्तुति आपको सुनवाएंगे। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के ठीक 9 बजे हैं। आइए जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा से।

फिल्म संसार की जानी मानी कलाकारों पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, हर रोज सुबह 9:30 और रात 9:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: चर्स है, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूँ। काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट, तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो राइट? तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल कोशेंट है ना वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलाओ।
1: कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट।
2: कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

0: आप सुन रहे थे चित्रलोक कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में आज हमने राजेश रोशन और मजरूह सुल्तानपुरी की कहानी आपको सुनवाई।
1: आप सुन रहे हैं हमारे प्रोग्राम विविध भारती से। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
2: आज के फनकार।

मजरू सुल्तानपुरी का जन्म आजमगढ़ के निजामाबाद में 1 अक्टूबर सन 1919 में हुआ था। उनका असल नाम था असरार उल हसन खान। उनके पिता पुलिस विभाग में थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा असरार उल हसन इंग्लिश की पढ़ाई करे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को पारंपरिक शिक्षा के लिए मदरसे में दाखिल किया और अरबी व फारसी में काबिल बनाकर आलिम का सर्टिफिकेट दिलवाया। बाद में असरार उल हसन उर्फ मजरू ने लखनऊ के तकमील उल तिब कॉलेज से यूनानी चिकित्सा की तालीम भी हासिल की और वो हकीम कहलाए, लेकिन शायराना तबीयत की वजह से वो हकीमी ठीक से कर नहीं पाए और सुल्तानपुर में रहकर गजलें लिखते रहे और मुशायरों में शिरकत करते रहे। तत्कालीन दौर में वो शायर जिगर मुरादाबादी के सानिध्य में भी रहे। हकीम से शायर बनते बनते असरार उल हसन खान की शख्सियत मशहूर शायर मजरू सुल्तानपुरी में कब तब्दील हो गई, ये खुद उन्हें भी पता नहीं चला।

सन 1945 में मजरू सुल्तानपुरी तत्कालीन बॉम्बे शहर में साबू सिद्दीक इंस्टीट्यूट में एक मुशायरे के सिलसिले में आए और अपनी पुरअसर शायरी से सुनने वालों के दिलों पर छा गए। सुनने वालों में उस समय जाने माने फिल्मकार A.R. कारदार भी शामिल थे। वो मजरू साहब से बेहद मुतासिर हुए। उन्होंने जिगर मुरादाबादी के जरिए मजरू से संपर्क किया और संगीतकार नौशाद से मजरू साहब की मुलाकात तय कर दी। दौर था 1946 के साल का, फिल्म थी शाहजहां और फनकार थे K.L. सहगल।

वामपंथी विचारधारा के समर्थक मजरू सुल्तानपुरी ने 1949 में बलराज साहनी के साथ कुछ समय जेल में भी बिताया। आर्थिक रूप से कमजोर भी हुए, लेकिन सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया।

1950 से लेकर 1960 के पूर्वार्ध तक मजरू सुल्तानपुरी भारतीय सिनेमा में अपनी गीतकारी के साथ पूरे शबाब पर रहे। सन 1965 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती के एक गीत के लिए फिल्म फेयर के श्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मजरू साहब को प्रदान किया गया।

किया, जैसे नौशाद, मदन मोहन, एसडी बर्मन, रोशन, रवि, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आरडी बर्मन, अनु मलिक, राजेश रोशन से लेकर आनंद मिलिंद, जतिन ललित और ए आर रहमान तक सभी के संगीत में मजरू ने अपने बोल पिरोए।

आरडी बर्मन के संगीत में भी मजरूह के गीतों ने कई बार धूम मचाई, चाहे वो फिल्म तीसरी मंजिल हो या हो जमाने को दिखाना है। सभी गानों ने सुनने वालों के कदमों को थिरकाया है।

0: जो न कह सका।
1: 24 मई सन 2000 को न्यूमोनिया बीमारी के गंभीर हमले से मजरू साहब उबर नहीं पाए और मौत ने आखिरकार उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। जिंदा दिल शायरी का मतवाला और रूह को छू लेने वाले गीतों का ये रचयिता बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने गानों के जरिए सदा हमारे दिलों पर राज करता रहेगा।

एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बिलासपुर का प्रसारण। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के ठीक 10 बजे हैं। प्रस्तुत है नन्हे श्रोताओं का कार्यक्रम आओ बच्चों। प्रस्तुति लिंटा मनोज की है।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: आप सभी को आपकी दीदी लिंटा का प्यार। आशा करते हैं आप सभी अच्छे से हैं, स्वस्थ हैं और खुश हैं। गर्मी की छुट्टियों का आनंद भी अपना ध्यान रखते हुए उठा रहे हैं। जी हाँ बच्चों, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, ऐसे में हर दिन कुछ बातों का ख्याल आप सभी अवश्य रखें। खेलते समय, दोस्तों के साथ मस्ती करते समय कुछ देर में ब्रेक लेकर नींबू पानी, शरबत, छाछ, लस्सी, पना भी लेते रहें। मम्मी से बोलकर मौसमी फल वगैरह भी आप खूब खाएं। बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स और अन्य बाजार में मिलने वाले जो जंक फूड वगैरह हैं बच्चों, कम से कम उनका खाने में उपयोग करें। मिक्स फ्रूट सैलेड, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, आम, बेल, इन सभी को अपने मनपसंद तरीकों से आप मम्मी या दादी से बोलकर बनवा सकते हैं, जिससे कि आप फ्रेश और एक्टिव रह सकें। तेज गर्मी के कारण बच्चों घर पर ही शाम 6 बजे तक इंडोर गेम्स या अन्य खेल खेलें। अपने मित्रों से बातचीत करें आप, जिससे गर्मी और धूप से बचते हुए स्वस्थ और ऊर्जावान होकर आप परिवारजनों के साथ हर पल का आनंद उठा सकें। तो बच्चों, ये तो बातें हुई गर्मी के सीजन में आपके हेल्दी और फिट रहने की। लेकिन यदि हम आपसे पूछें कि छुट्टियों में आपको कौन सी चीज सबसे अच्छी लगती है, तो बहुत से हमारे नन्हे दोस्तों का जवाब होगा खेलना। बिल्कुल बच्चों, खेल एक ऐसी चीज है जो कि आपको खुश रखने के साथ आपके दोस्तों से भी आपको जोड़े रखती है। और आज की चर्चा में आपसे हम एक ऐसे ही खेल के बारे में बातें करेंगे जिसे दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल कहा जाता है, और वो है फुटबॉल। बच्चों, हर साल 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है, और ये दिन फुटबॉल के प्रति लोगों के प्यार, खेल भावना और एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। दुनिया के लगभग हर देश में फुटबॉल को खेला और देखा जाता है बच्चों। यही कारण है कि इसे द ब्यूटीफुल गेम भी कहा जाता है। वैसे बच्चों, फुटबॉल खेलने के लिए बहुत ज्यादा सामान की जरूरत हमें नहीं होती है, बस एक बड़ा गेंद, थोड़ा सा मैदान और खेलने का उत्साह, बस इन्हीं चीजों की जरूरत होती है। यही कारण है कि गांव हो या शहर, बच्चे हो या बड़े, हर कोई फुटबॉल खेलना पसंद करता है। यही नहीं बच्चों, फुटबॉल केवल मनोरंजन नहीं लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि जब आप फुटबॉल खेलते हैं तो आपका पूरा शरीर सक्रिय रहता है। इससे शरीर मजबूत बनता है, दौड़ने की क्षमता बढ़ती है और शरीर चुस्त भी रहता है। और शरीर की एक्सरसाइज के अलावा बच्चों, इस खेल में आपको टीम वर्क सीखने को मिलती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आप में अनुशासन और धैर्य की आदत बनती है। और सबसे अच्छी बात, फुटबॉल हमें हार और जीत दोनों को स्वीकार करना सिखाता है। चलिए अब आपको फुटबॉल से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी देते हैं। बच्चों, फुटबॉल मैच में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। ये गेम लगभग 90 मिनट तक खेला जाता है। फुटबॉल का पहला विश्व कप सन 1930 में खेला गया था। बच्चों, दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप है, जो कि आप सभी को पसंद भी है। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि पेले को फुटबॉल का जादूगर और महान खिलाड़ी कहा जाता है। वैसे हम जानते हैं कि आप सभी के फुटबॉल में फेवरेट खिलाड़ी लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो है ना? ये दोनों ही खिलाड़ी बच्चों अपनी शानदार ड्रिबलिंग, गोल, मेहनत, फिटनेस के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। बच्चों, हमारे देश भारत में सुनील छेत्री देश के उन महान खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने भारतीय फुटबॉल को एक नई पहचान दी। इस प्रकार से बच्चों, खेल कोई भी हो वो हमें जीवन में आगे बढ़ना सिखाता है। फुटबॉल हमें दोस्ती, सहयोग और मेहनत का महत्व भी समझाता है। इसलिए आप सभी पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी अवश्य रुचि लें और उनमें भाग लेकर जीवन में आगे बढ़ें, हमारी यही कामना है। और इस छोटी सी बातचीत के बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: गीत के बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए जुड़ते हैं बच्चों हमारे उन नन्हे साथियों से जो कि अपनी प्यारी प्यारी बातों और प्रस्तुतियों से हमारा और आप सभी का मनोरंजन करेंगे। आइए जुड़ते हैं हमारे इन नन्हे साथियों से।
1: हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है यामी ढीमर, मैं क्लास के जीवन में पढ़ती हूँ। आप सभी कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप सभी को चूहे क्यों

0: Sí, yo hago la uy, uy, uy. दस में एक और सुनाती हूँ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। थैंक यू।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ काव्या और आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार और हैरान कर देने वाली जानकारी बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, हम सभी ने सात महाद्वीप के बारे में पढ़ा है, जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने एक और महाद्वीप के बारे में पता लगाया है? उसका नाम है ज़ीलैंडिया। कई लोग इसे धरती का आठवां महाद्वीप भी कहते हैं। सबसे खास बात यह है कि ज़ीलैंडिया पूरा दिखाई नहीं देता। इसका लगभग 90% हिस्सा समुद्र के नीचे छिपा हुआ है। केवल थोड़ा सा भाग पानी के ऊपर है, जिसे आज हम न्यूजीलैंड के रूप में जानते हैं। ज़ीलैंडिया प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास है। इसका आकार बहुत बड़ा है, यह भारत से भी बड़ा माना जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि करोड़ों साल पहले ज़ीलैंडिया पूरी तरह जमीन के ऊपर था, लेकिन धीरे धीरे धरती में बदलाव होने लगे और इसका बड़ा हिस्सा समुद्र के अंदर चला गया, इसलिए आज यह पानी के अंदर छुपा हुआ है। दोस्तों, इसकी खोज भी बहुत रोचक है। वैज्ञानिक कई सालों तक समुद्र में रिसर्च करते रहे। उन्होंने बड़े जहाजों और खास मशीनों की मदद से समुद्र की गहराई का अध्ययन किया। तब जाकर पता चला कि समुद्र के नीचे पूरा महाद्वीप छिपा हुआ है। ज़ीलैंडिया के आसपास का समुद्र बहुत सुंदर माना जाता है। वहाँ रंग बिरंगी मछलियाँ, समुद्री जीव और ऊंचे समुद्री पहाड़ भी पाए जाते हैं। कुछ जगहों पर समुद्र के अंदर ज्वालामुखी भी है। दोस्तों, ज़ीलैंडिया हमें यह सिखाता है कि हमारी धरती अभी भी

0: रहस्यों से भरी हुई है। विज्ञान हर दिन नई खोज कर रहा है, इसलिए हमें हमेशा नई चीजें सीखते रहना चाहिए और विज्ञान में रुचि रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको समुद्र में छुपे इस अनोखे महाद्वीप जीलैंडिया के बारे में जानकारी कैसी लगी, बताना जरूर। धन्यवाद।
1: हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चेरिल बंसिया है और मैं बाल भारती पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं कक्षा तीसरी की छात्रा हूँ। मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ। हर

0: चीटी सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चीटी। छोटे तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चीटी। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चीटी। काम बड़े कर कर दिखलाती, जहाँ कहीं अड़ जाती चीटी। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चीटी। धन्यवाद।
1: नमस्कार, मेरा नाम धानी शर्मा है। मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। आज मैं सच्चाई और मेहनत का फल की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा और ईमानदार था। उसके पिता एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे और माँ घर में काम करती थी। आरव रोज खुल जाता था, साथ साथ अपने पिता की मदद भी करता था। गांव में एक बहुत अमीर व्यक्ति रहता था, जिसका नाम सेठ धनराज था। उसके पास बहुत पैसे थे, लेकिन वो बहुत घमंडी था। वो गरीब लोगों को हमेशा नीचा दिखाता था। एक दिन सेठ ने गांव में घोषणा की कि जो भी उसके खोए हुए सोने के सिक्के लौटा देगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। उसी शाम आरव स्कूल से घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक भारी सी थैली मिली। जब उसने खोल कर देखा तो उसमें सोने के बहुत सारे सिक्के थे। आरव समझ गया कि यह सेठ धनराज के ही सिक्के हैं। आरव के दोस्त ने कहा, ये सारे सिक्के हैं, अब तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, इसे घर ले जाओ। लेकिन आरव ने शांत होकर कहा, ये हमारा सिक्का नहीं है, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। अगले दिन आरव वो थैली लेकर सेठ के घर पहुंच गया। सेठ बहुत खुश हुआ, लेकिन उसको पता था कि अगर वो आरव को इनाम देगा तो उसके बहुत सारे पैसे चले जाएंगे। इसलिए सेठ झूठ बोलते हुए बोला, मेरी थाली में तो एक हीरे की अंगूठी भी थी, लेकिन यहाँ नहीं है, जरूर तुम्हें चुरा ली होगी। यह सुनकर आरव की आंखों में आंसू आ गए। गांव वाले भी हैरान रह गए, क्योंकि सब आरव की ईमानदारी जानते थे। तभी गांव के बुद्धिमान मुखिया वहां आए। उन्होंने सेठ से पूछा, तुम कह रहे हो कि थैली में सोने के सिक्के और हीरे की अंगूठी दोनों थी? सेठ ने तुरंत जवाब दिया, हाँ। मुखिया मुस्कुराए और बोली, फिर यह थैली तुम्हारी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें सिर्फ सोने के सिक्के हैं, अंगूठी नहीं। इसका मतलब असली मालिक अभी मिला नहीं है। सेठ का झूठ सबके सामने आ गया, वो शर्म से झुक गया। गांव वालों ने आरव की बहुत तारीफ की। मुखिया ने आरव को इनाम दिया और उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया। समय बीतता गया, आरव मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करता रहा और बड़ा होकर एक सफल अधिकारी बना। उसने अपने गांव के गरीब बच्चों की मदद करनी शुरू की। उस दिन आरव ने

0: एक बात सिखाई, पैसे से बड़ा धन ईमानदारी और अच्छाई होती है। सच्चाई का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच की होती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।
1: नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम काव्या कपिल कामडी है और मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मैं बाल भारती पब्लिक स्कूल की हूँ। आज मैं आपको एक पोयम सुनाने जा रही हूँ। भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। गंगा यमुना की है धारा, जिससे है पवित्र जग सारा। अन्न फूल फल जल है प्यारे, तुझ में रतन जवाहर न्यारे। राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र है नामी। हम सदैव तेरा गुण गाए, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाए। धन्यवाद।
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ध्रुविका पेंसिया है और आज मैं आपके साथ AI के दौर में स्मार्ट कैसे बने, इस विषय पर बात करूंगी। आज के समय में हर काम AI से होने लगा है। चाहे काम छोटा हो या बड़ा, हम AI पर बहुत निर्भर होते जा रहे हैं। चाहे वो स्पीच हो, छोटी छोटी कैलकुलेशन हो या बच्चे का होमवर्क, हर काम में AI हमारी मदद कर रहा है। लेकिन जिसे हम अपना सब कुछ मान बैठे हैं, वह हमें अपाहिज बना रहा है। हमारी मानसिक जीवन की AI पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। पहले हम कुछ याद रखने के लिए हाथ से लिखकर डायरी में नोट करते थे, सफर के समय नक्शा लेकर चलते थे। ये चीजें काम को आसान बनाती थी, लेकिन औजार सोचने का काम नहीं करते थे। AI आने के बाद विश्लेषण, नए विचार, फैसले लेना इत्यादि भूल गए हैं। और तो और, बच्चों को जो कार्य क्रिएटिव बनाने के लिए स्कूल की तरफ से दिया जाता है, वो उसे स्वयं से ना करके AI की मदद से ही कर रहे हैं। तो अब सोचने की बात यह है कि उस कार्य से क्रिएटिविटी बढ़ी या फिर वह एक औपचारिकता बनकर रह गया। इससे बच्चों में यह प्रवृत्ति विकसित होती जा रही है कि AI जो सॉल्यूशन बताता है वही सही है और उसे हमें आंख बंद करके सच मान लेना चाहिए। इससे आने वाली पीढ़ी की सोचने की क्षमता पर कम भरोसा होने लगा है। यह सब देखकर लगता है कि आने वाले समय में AI ही सब चीजों का एक्सपर्ट होगा और इंसान मात्र उनकी आज्ञा अनुसार कार्य करेंगे। आइए जानते हैं कि AI का इस्तेमाल सही तरीके से कैसे करें, ताकि हमारा अस्तित्व हमारी सोच के साथ साथ बना रहे। अपने दिमाग से काम लें। AI की मदद लेने से पहले किसी भी कार्य को अपनी सोच के अनुसार करने की कोशिश करें। AI का कम से कम प्रयोग करें। अपनी मौलिकता बचा कर रखें। ध्यान रखें, AI से जो भी आता है वह हमारी पहचान नहीं है, इसलिए अपनी मौलिकता बनाए रखें। AI को बस एक टूल समझें। AI कभी हमारी मानसिक सोच और पहचान को पीछे नहीं छोड़ सकता, इसलिए उससे केवल सहायता लें। स्मार्ट बने और AI को मात्र एक टूल की तरह लें। ऐसा करने से हम AI के दौर में भी स्मार्ट बने रह सकते हैं। धन्यवाद।
3: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मानवी ढीमर है। मैं क्लास 4G में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेंट फ्रांसिस हायर सेकेंडरी स्कूल है। दोस्तों, मैं आप सभी को एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, जिसका नाम है मूर्ख शेर और खरगोश। एक समय की बात है दोस्तों, एक खूंखार शेर हर रोज जानवरों को मारकर खा जाता था। परेशान होकर जंगल के सभी जानवरों ने तय किया कि रोज एक जानवर खुद शेर के पास भोजन के रूप में जाएगा। एक दिन की बात है दोस्तों, एक छोटे खरगोश की जब बारी आई, तब वह जानबूझकर शेर के पास देरी से पहुंचा। यह देखकर दोस्तों शेर को गुस्सा आया, तो खरगोश ने कहा, महाराज, रास्ते में मुझे आपसे भी बड़ा एक शेर मिला और उसने मुझे रोक लिया। यह सुनकर उस अहंकारी शेर ने दहाड़ते हुए खरगोश से कहा, अच्छा ऐसी बात है, मुझे उस दूसरे शेर के पास ले चलो।

लो। तब दोस्तों खरगोश ने धीरे से आगे बढ़कर शेर को पास में ही एक गहरे कुएं के पास ले जाकर दिखाया, जहां पानी में अपनी ही परछाई को दूसरा शेर समझकर वो मूर्ख शेर कुएं में कूद गया और मर गया। तो सुना ना दोस्तों आप सभी ने, शारीरिक बल से अधिक बुद्धि और समझदारी का महत्व होता है। इसलिए दोस्तों बुद्धि के बल पर बड़े से बड़े परेशानी को

0: पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 14 नवंबर सन 1889 को प्रयागराज में हुआ था। जानते हैं, बच्चे उन्हें बहुत प्रिय थे और इसलिए सभी बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। दोस्तों, चाचा नेहरू मानते थे कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं और उनके जन्म दिन को हमारे देश भारत में चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। एक बार की बात है दोस्तों, चाचा नेहरू किसी कार्यक्रम में गए थे। वहाँ बहुत सारे बच्चे उनसे मिलने आए। सभी बच्चे उनसे हाथ मिलाना और बात करना चाहते थे। तभी एक छोटा बच्चा उदास होकर एक कोने में खड़ा था। जब चाचा नेहरू ने उसे देखा दोस्तों, तब उन्होंने प्यार से उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने पूछा, बेटा तुम क्यों उदास हो? तब उस बच्चे ने कहा, चाचा जी, मेरे पास आपको देने के लिए कोई फूल नहीं है। यह सुनकर चाचा नेहरू मुस्कुराए दोस्तों और बोले, बच्चे तुम्हारी प्यारी मुस्कान ही मेरे लिए सबसे सुंदर फूल है। यह सुनते ही वो बच्चा खुश हो गया। इस प्रकार से दोस्तों, चाचा नेहरू जी के जीवन से जुड़ी इस छोटी सी घटना से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा प्यार और अपनापन किसी उपहार से बड़ा होता है। चाचा नेहरू हम बच्चों से बहुत प्यार करते थे और हमेशा हमें खुश देखना चाहते थे। इसलिए दोस्तों, हमें भी कोशिश करनी चाहिए, उन्होंने जो भी अच्छी सीखें हमें दी, उन्हें हम अपने जीवन में अपनाएं और अच्छे बच्चे बने। थैंक यू।
1: हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदित्य तिंदाकर है। मैं क्लास 10 का स्टूडेंट हूँ। मैं आप सभी को पर्यावरण संरक्षण पर कविता सुनाऊंगा। आओ मिलकर शपथ ये ले, धरती माँ को स्वच्छ करे, पेड़ लगाएं, जल बचाएं, हरियाली फिर से लौटाएं, नदियाँ निर्मल, पर्वत प्यारे, ये है जीवन के उजियारे, धुआं धूल दूर भगाए, स्वच्छ हवा में सांसें पाए, पक्षी गाए मधुर तराने, फूल खिले फिर भगिया में, प्रकृति देती खुशियाँ हमको, रखता है इसे हृदय में, प्लास्टिक का कम उपयोग करे, कूड़ा कभी इधर उधर ना धरे, जल जंगल और धरती बचाए, आने वाला कल सुंदर बनाए, धरती माँ की यही पुकार, करो प्रकृति से सच्चा प्यार, पर्यावरण जब सुरक्षित होगा तभी हमारा जीवन सुखमय होगा, तभी हमारा जीवन सुखमय होगा। थैंक यू।
2: गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आर्यन पाटनवार कृष्णा पब्लिक स्कूल से हूँ। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। आज मैं सभी के सामने भारत के महान कवि, साहित्यकार और दार्शनिक रविंद्रनाथ टैगोर जी के जीवन से जुड़ा एक प्रसंग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका विषय है सच्ची शिक्षा का महत्व। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। उन्हें प्यार से गुरुदेव भी कहा जाता है। वे बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली थे। उन्होंने छोटी उम्र में ही कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने साहित्य से पहचान बनाई। उनकी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि के लिए उन्हें वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला और वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए शांति केतन नामक विद्यालय की स्थापना की, जहां प्रकृति के बीच पढ़ाई कराई जाती थी। उनका मानना था कि बच्चों को खुलकर सीखना चाहिए। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन भी दोस्तों उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। आइए दोस्तों, अब मैं आप सभी को उनके जीवन से जुड़ी एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। दोस्तों, एक बार की बात है, गुरुदेव टैगोर शांति निकेतन में बच्चों के साथ बैठे थे। एक विद्यार्थी बहुत उदास था क्योंकि परीक्षा में उसके कम अंक आए थे। वह सोच रहा था कि अब वही जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा। गुरुदेव ने उसे अपने पास बुलाया और बगीचे में लगे पेड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, बच्चों ये बताइए, क्या सभी पेड़ एक जैसे होते हैं? कोई बड़ा होता है तो कोई छोटा, कोई जल्दी फल देता है तो कोई देर से, फिर भी हर पेड़ का अपना महत्व होता है। उन्होंने बच्चों से कहा, अंकों से ज्यादा जरूरी है सीखने की इच्छा, मेहनत और अच्छा इंसान बनना। गुरुदेव की यह बात सुनकर बच्चे का आत्मविश्वास लौट आया। दोस्तों, उसने मेहनत जारी रखी और आगे चलकर बहुत अच्छा कार्य किया। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हम यह सीख ले सकते हैं कि हमें कभी भी कम अंकों से निराश नहीं होना चाहिए। हर बच्चे में कोई ना कोई विशेष प्रतिभा होती है। सच्ची शिक्षा वही है जो हमें अच्छा इंसान बनाए। मेहनत और आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। थैंक यू।
3: अ वेरी एनर्जेटिक एंड रिफ्रेशिंग मॉर्निंग टू ऑल माय फ्रेंड्स. मेरा नाम कृतिका अवस्थी है, मैं 7वीं कक्षा की छात्रा हूँ. मेरे स्कूल का नाम दिल्ली पब्लिक तिफरा बिलासपुर है. दोस्तों, क्या आपको मालूम है, बस कुछ ही दिनों

0: में 30 जून को हम सभी विश्व साइकिल दिवस मनाने वाले हैं। तो चलिए साइकिल से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी मैं आपके साथ साझा करती हूँ। दोस्तों हर वर्ष 30 जून को पूरे विश्व में विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को साइकिल के महत्व के बारे में जागरूक करना है। दोस्तों साइकिल एक ऐसा साधन है जो सस्ता, सरल, पर्यावरण के अनुकूल और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। दोस्तों विश्व साइकिल दिवस मनाने का उद्देश्य है लोगों को स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित करना, प्रदूषण कम करना, ईंधन की बचत करना, पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा करना और बच्चों और बड़ों में व्यायाम की आदत विकसित करना। दोस्तों हम सब बच्चों के लिए साइकिल चलाना बेहद फायदेमंद भी है क्योंकि हमारा शरीर साइकिल चलाने से मजबूत होता है और मांसपेशियां सक्रिय बनती हैं। मन खुश रहता है, साइकिल चलाने से तनाव कम होता है और मन प्रसन्न रहता है। इस प्रकार से यह साइकिल एक मजेदार व्यायाम है जिससे हम बच्चों की फिटनेस बढ़ती है। यही नहीं, साइकिल चलाते समय बच्चों का संतुलन बेहतर होता है और उनमें आत्मविश्वास भी आता है। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि साइकिल से धुआं नहीं निकलता, इसलिए वायु प्रदूषण भी कम होता है। आइए अब मैं आपको साइकिल से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां देती हूँ। दोस्तों क्या आप सभी जानते हैं साइकिल की शुरुआती आविष्कार का श्रेय? साइकिल की शुरुआती आविष्कार का श्रेय जर्मनी के वैज्ञानिक और आविष्कारक कार्ल ड्रेस को दिया जाता है। उन्होंने सन 1870 में दो पहियों वाली लकड़ी की एक गाड़ी बनाई थी जिसे ड्रेसीन कहते हैं या रनिंग मशीन भी कहा जा सकता है। इसे चलाने के लिए पैडल नहीं होते थे, लोग अपने पैरों से जमीन को धक्का देकर इसे आगे बढ़ाते थे। बाद में कई वैज्ञानिकों और कारीगरों ने इसमें सुधार किए, जैसे उसमें पैडल लगाए, चेन और टायर जोड़ दिए गए, सीट और ब्रेक बेहतर बना दिए गए और तभी धीरे धीरे आधुनिक साइकिल तैयार हुई जैसे कि हम सभी आज देखते हैं। क्या आप जानते हैं बाईसाइकिल का नाम बाईसाइकिल ही क्यों पड़ा? साइकिल को अंग्रेजी में बाईसाइकिल कहा जाता है। बी का अर्थ है दो और साइकिल का अर्थ है पहिया, इसीलिए दो पहियों वाली गाड़ी को बाईसाइकिल कहा गया। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं साइकिल चलाने से धुआं नहीं निकलता, इसलिए हवा प्रदूषित नहीं होती। यदि अधिक लोग साइकिल का उपयोग करें तो शहर साफ और स्वच्छ बन सकता है। दोस्तों क्या आप सब जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा साइकिल कहाँ चलाई जाती है? आप सभी को मैं बताना चाहूंगी, नीदरलैंड्स में। बहुत अधिक लोग साइकिल चलाते हैं, वहाँ अलग से साइकिल के रास्ते बने हुए हैं, बच्चे भी स्कूल वहाँ साइकिल से ही जाते हैं। सचमुच साइकिल चलाना एक बेहतरीन व्यायाम है। साइकिल चलाने से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हृदय स्वस्थ रहता है और शरीर भी चुस्त रहता है। दोस्तों डॉक्टर भी हम सभी को रोज थोड़ा साइकिल चलाने की सलाह देते हैं। इस प्रकार से दोस्तों जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तब हमारे शरीर का संतुलन और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। दोस्तों यही नहीं, खेलों में भी साइकिल का बड़ा महत्व है। दुनिया में साइकिल रेस बहुत लोकप्रिय खेल है। कई खिलाड़ी लंबी दूरी की साइकिल दौड़ में भाग लेते हैं। आपने तो अलग अलग प्रकार की साइकिलें भी देखी होंगी। आजकल कई तरह की साइकिलें बनाई जाती हैं। दोस्तों छोटे बच्चों के लिए छोटी साइकिल, पहाड़ों पर चलाने वाली माउंटेन बाइक, रेसिंग साइकिल, तीन पहियों वाली ट्राई साइकिल और भी बहुत कुछ। वैसे दोस्तों हमारे देश भारत में भी साइकिल का बहुत महत्व है। भारत में बहुत से लोग स्कूल, बाजार और कामों पर जाने के लिए साइकिल का ही उपयोग करते हैं। कई राज्यों में बच्चों को स्कूल जाने के लिए भी साइकिल ही दी जाती है। लेकिन दोस्तों कुछ बातों का हमें ध्यान भी रखना होगा, जैसे हमें हमेशा साइकिल चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए, सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए, बहुत तेज साइकिल भी नहीं चलानी चाहिए और साथ ही रात में रिफ्लेक्टर या लाइट का भी उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों आप सभी से अंत में यही कहना चाहूंगी, साइकिल चलाओ, स्वास्थ्य पाओ, धरती माँ को स्वच्छ बनाओ। धन्यवाद।
1: बच्चों आशा करते हैं कि हमारे इन बच्चों की प्रस्तुति और आज का कार्यक्रम आप सभी ने जरूर पसंद किया होगा। और बच्चों अब धीरे धीरे समय भी मुझे इशारा कर रही है कि कार्यक्रम समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है, तो दीजिए अनुमति आपकी दीदी लिंटा को कार्यक्रम समाप्त करने की। जय हिंद।
2: जय हिंद।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ बच्चों, प्रस्तुति लिंटा मनोज की थी। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह प्रसारण आकाशवाणी बिलासपुर का है। 10:30 हुए हैं। पेश है नए तराने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, अरिजीत सिंह की मीठी आवाज में। निकिता गांधी का साथ है, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत निर्देशन। फिल्म का नाम है केदारनाथ। गाय इन द स्काई।

0: पापा
1: लाइए
0: 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ,
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
5: नए तराने कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना निकिता गांधी और अरिजीत सिंह की आवाजों में फिल्म केदारनाथ से। आइए अगला गीत सुनते हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म पद्मावत से। इस गीत में आप सुनेंगे आवाज नीति मोहन की।

नीति मोहन की मीठी आवाज, संजय लीला बंसाली का संगीत निर्देशन और सिद्धार्थ गरिमा का लिखा हुआ गीत आप सुन रहे थे फिल्म पद्मावत के लिए। आइए कार्यक्रम में अगली सुरीली आवाज सुनते हैं श्रेया घोषाल की। कलंक फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं प्रीतम के संगीत निर्देशन में। बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने।

श्री आघोषाल और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे कार्यक्रम का गीत फिल्म कलंक से। नए तराने कार्यक्रम में अगला गीत सुनेंगे, आइए उसके पहले सुन लेते हैं आज के ट्रैफिक अपडेट्स।

0: नमस्कार, प्रस्तुत है बिलासपुर जिले की सड़कों में आज की यातायात व्यवस्था। दैनिक प्रसारण ट्रैफिक अपडेट साथ बिलासपुर में। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोता साथियों का स्वागत है। आज शहर के 14 परीक्षा केंद्रों में संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली के द्वारा दो पालियों में प्रतियोगी परीक्षा ली जा रही है। प्रथम पाली प्रातः 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी। इस परीक्षा में लगभग 5,000 परीक्षार्थी भाग लेंगे। सभी परीक्षार्थियों को बिलासपुर पुलिस के शुभकामनाएं। इस महत्वपूर्ण असाधारण परीक्षा में शामिल होने जा रहे सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है, यद्यपि आज अवकाश का दिन रविवार है, अन्य दिनों की तुलना में आज सड़कों में यातायात का दबाव अपेक्षाकृत कम होता है, फिर भी एक साथ एक ही समय में इतनी संख्या में लोगों के विभिन्न वाहनों से सड़कों में आ जाने से एकाएक यातायात प्रभावित होता है। इसलिए आप सभी अपने अपने घर से परीक्षा केंद्रों के लिए कुछ जल्दी ही निकलें। साथ ही यही स्थिति परीक्षा समाप्त होने पर भी होती है, अतः परीक्षा केंद्र से निकलकर जब आप सड़कों में हो, यदि भीड़ अधिक हो तो धीरे धीरे आगे बढ़ें और ओवरटेक बिल्कुल न करें, अन्यथा आप भी जाम में फंसेंगे और अन्य लोग भी। इसके साथ ही जिले की सभी सड़कों में सभी प्रकार के वाहनों का सुगम आवागमन बना हुआ है, अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, आज रविवार है। नई एवं पुरानी अरपा रिवरवी में संडे बाजार बड़े स्वरूप में लगता है। सड़क के दोनों किनारों में तो तमाम प्रकार की दुकानें लगती ही हैं, साथ ही अब लोग सड़क के बीच अर्थात डिवाइडर से सटाकर अपने ऑटो वैन आदि खड़ा कर दुकान लगाने लगे हैं, जिससे यहाँ खरीदारी करने वालों के साथ साथ इस मार्ग में आने जाने वाले लोग भी परेशान होते हैं। इन दोनों ही सड़कों में दुकानदारों के चलते लगभग जाम की स्थिति बन जाती है। इस संदेश को अंतिम चेतावनी समझते हुए ऐसे दुकानदार सतर्क हो जाएं, अन्यथा अतिक्रमण विरोधी दस्ते की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ये थे आज के ट्रैफिक अपडेट्स जो हमें प्राप्त हुए थे यातायात पुलिस बिलासपुर से। धन्यवाद करते हैं यातायात पुलिस का और बढ़ते हैं कार्यक्रम नए तराने के अगले गीत की ओर।

बजरंगी भाईजान। इस फिल्म का गीत आप सुनने जा रहे हैं जुबीन नौटियाल की आवाज में। नीलेश मिश्रा ने लिखे हैं इस गीत के बोल और प्रीतम ने संगीत तैयार किया है।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर। अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: नई चेतना आई है, बदलाव की बयार लाई है। हिंसा को ना कहें, सम्मान को हाँ कहें। महिलाओं की सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है, जीरो टॉलरेंस यही है हमारी तैयारी। लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ नई चेतना, नया भारत।
2: आकाशवाणी बिलासपुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने, पर लीजिए सुनिए आखिरी गीत जिसे हमने लिया है फिल्म केसरी से। आशीष कौर, अरिजीत सिंह की आवाजों में ये गीत आप सुनेंगे, जिसे तनिष्क बागची ने लिखा भी है और संगीत भी सजाया है।

ये गीत आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह आशीष कौर की युगल आवाजों में फिल्म केसरी से, जिसे तनिष्क बागची ने संगीत से सजाया भी था और इस गीत के बोल भी लिखे थे तनिष्क बागची ने। कार्यक्रम अब समाप्त होता है। पहले हम आपको एक सूचना दे दें, महिला सभा हेतु ये फोन करें गीत सुने कार्यक्रम प्रसारित होता है महीने के हर चौथे मंगलवार को। इस बार इसका प्रसारण 26 मई 2026 को शाम 5:35 से किया जाएगा, जिसकी रिकॉर्डिंग 25 मई 2026 सोमवार को 11 बजे से 11:30 बजे के बीच की जाएगी। बहनों से चर्चा का विषय होगा नई पीढ़ी की माँ, और जिन फिल्मों के गीत हम आपको सुनवाएंगे उनके नाम है फटा पोस्टर, निकला हीरो, यारियां, चक दे इंडिया और रंग दे बसंती। आप हमें फोन कर सकते हैं इन नंबरों पर 07752-266592, एक और नंबर है 310026। आपके फोन का हमें इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नए तराने, ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 11 बजे हैं, आइए जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा से।

0: एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती विचारा।

0: पिटारा में आज
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मंदाकिनी जोशी का
0: नमस्कार। मंदाकिनी जी, सन 2026 कुछ ऐसे शुरू हुआ है विविध भारती में कि उसकी बात ही कुछ और है। हर महीने एक आयोजन होता है जिसका नाम है सृजन भारती, और ये जो सृजनात्मकता की ये लहर चली है, इसमें रंगमंच दिवस के उपलक्ष्य में एक आयोजन हुआ था जहां दो नाट्य प्रस्तुतियां हम आमंत्रित श्रोताओं के सामने लेकर आए थे।
1: बिल्कुल।
0: और इसमें से पहली प्रस्तुति कौन सी थी?
1: सास बहू और हेलो फरमाइश।
0: जी हाँ, टाइटल से, शीर्षक से ही आपके समझ में आ गया होगा कि कितना मजेदार ये रहा होगा।
1: बिल्कुल, शीर्षक था सास बहू और हेलो फरमाइश। लेखक यूनुस खान, प्रतिभागी कलाकार ममता सिंह, मंदाकिनी जोशी, अनुश्री पाठक, यूनुस खान और जयंत पात्रीकर।
0: आइए सुनते।
2: हेलो
3: हेलो फरमाइश।

0: समझ में नहीं आता इन लोगों का कॉल कैसे लग जाता है। मैं तो 2 साल से कोशिश कर रही हूँ पर मुआ ये फोन लगता ही नहीं। जाने विविध भारती वालों ने क्या सेटिंग कर रखी है, देखना एक दिन मेरा फोन जरूर लगेगा। जरूर मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन तुम्हारी। अरे बहू बहू
1: हाँ।
0: मेरी डायरी कहाँ रख दी तूने? कितनी बार कहा है मेरे सामान को हाथ मत लगाया करो। बहू
1: हाँ।
0: डायरी ला कर दे मेरी।
1: माँ जी मैंने नहीं ली ना आपकी डायरी, हाथ भी नहीं लगाया मैंने। वैसे आपको बता दूं सासू माँ, जिस काम के लिए आप डायरी खोज रही है ना वो होगा नहीं। हाँ
0: अरे काली जबान, जब देखो उल्टा ही बोलती है।
1: हुँ?
0: अच्छा बता कौन सा काम है?
1: अरे वही हेलो फरमाइश में फोन लगाने का काम
0: है।
1: अब हम तो क्या, पूरा मोहल्ला जानता है कि सुनीता देवी किसके पीछे पड़ी है।
0: आग लगे तेरी जबान को। इस उम्र में मैं किसके पीछे पड़ूंगी? किसी ऐसे वैसे के पीछे नहीं पड़ी हूँ, ये हेलो फरमाइश है। विविध भारती का हेलो फरमाइश, बड़ी मुश्किल से फोन लगता है इसमें।
1: अरे मुश्किल से फोन लगता है मत बोलिए सासू माँ, ये बोलिए कि फोन लगता ही नहीं है। 3 साल से तो मैं आपको कोशिश करते हुए देख रही हूँ, आज तक तो लगा नहीं और न ही लगेगा, देख लेना। हाँ
0: बकवास बंद कर और मेरा नाश्ता ला। कितनी बार कहा है भारत की गूंज से पहले नाश्ता, विविध भारती की गीत माला से पहले लंच और हवा महल से पहले मेरा डिनर दे दिया कर, पर हमेशा देर कर देती है तू।
1: हाँ सासू माँ मैं देरी करती नहीं, देर हो जाती है आपके पुकारने से पहले।
0: दबा हो जा नौटंकी,
1: मेरी जल जाती है।
0: दबा हो जा और जल्दी से नाश्ता लिया। मैं जरा हेलो फरमाइश में कॉल लगा के देखती हूँ। 02225467।
1: आप जिस नंबर से संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं वो अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें।
2: द नंबर यू हैव डायल्ड इज बिजी, प्लीज कॉल आफ्टर सम टाइम।
1: कहा था ना हमने सासू माँ ये फोन लगेगा नहीं। वैसे अगर फोन लग भी गया तो आप कौन से गाने की फरमाइश करेंगी ये तो बताओ। अच्छा रुको रुको, सुनो आइडिया सासू माँ, एक आइडिया। एक काम करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, मैं बनती हूँ अनाउंसर और आप बनना कॉलर।
0: खामोश, तुम कैसे बनोगी अनाउंसर?
1: क्यों?
0: और मैं कैसे बनूंगी कॉलर?
1: क्यों क्यों क्यों क्यों
0: क्यों क्यों क्यों क्यों? बड़ा कौन?
1: आप।
0: सास कौन?
1: आप।
0: तो सुनीता कौन?
1: आप।
0: तो अनाउंसर बनेगा कौन?
1: ना ना ना ना ना ना ना, एक मिनट। हाँ एक मिनट, फिर से करते हैं। अच्छा बताइए सुनीता देवी कौन?
0: मैं।
1: और विविध भारती की फैन कौन?
0: मैं।
1: इतने दिलों से कॉल कौन लगा रहा है?
0: मैं।
1: तो कॉलर बनेगा कौन?
0: मैं।

0: मैं करम जली दास पीटी, ऐसा नहीं होगा। देख तू बहू है, बहू की तरह रह।
1: अरे बहू, क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने?
2: पिताजी देखिए ना, अम्मा फिर पगला गई है। वो कहती है उन्हें विविध भारती पर हेलो फरमाइश करना है।
0: न्यूज चैनल की तरह बात को तोड़ मरोड़ कर पेश मत किया कर। अम्मा को विविध भारती पर हेलो फरमाइश नहीं करना है, हेलो फरमाइश में फोन करना है, समझी?
1: तुम लोगों से तो बस बहस करवा लो
2: पिताजी। वही तो, बहस क्यों करना, चलिए ना पिताजी प्रैक्टिस करते हैं, करते हैं ना।
1: अरे वकालत की प्रैक्टिस तो हम कब की छोड़ चुके बहू।
2: अरे पिताजी वकालत की प्रैक्टिस थोड़ी करनी है, हेलो फरमाइश की प्रैक्टिस करनी है। प्लीज मान जाइए ना पिताजी, मान जाइए ना। तो चलिए आप दोनों बनिए कॉलर और हम बनते हैं अनाउंसर, ठीक है? हम बनेंगे टिम्मी मिश्रा। अच्छा शुरू करते हैं। फोन की घंटी बजी नहीं है अभी तक।
1: ट्रेन ट्रेन
0: ट्रेन ट्रेन ट्रेन ट्रेन ट्रेन।
2: हेलो हेलो, हाँ हेलो फरमाइश, नमस्ते, हम हैं टिम्मी मिश्रा। हम ना आज विविध भारती पर हेलो फरमाइश कर रहे हैं। बताइए आप कौन, कहाँ से बोल रहे हैं, आपको कौन सा गाना सुनना है, आपके शहर का मौसम कैसा है, आपके घर में कौन कौन है, आपको कौन कौन से कार्यक्रम पसंद है, आप अपने शहर में किन दोस्तों के नाम लेना चाहते हैं।
1: चुप, एकदम चुप, खामोश, एक भी शब्द बोला तो ठीक नहीं होगा।
2: पिताजी वो हेलो फरमाइश
1: ना पति को बोलने देती है ना ससुर को, ऐसे करते हैं हेलो फरमाइश, ऐसे करते हैं हेलो फरमाइश।
0: इसीलिए तो हम कह रहे थे कि हम बनेंगे अनाउंसर। इस घर में हमसे ज्यादा विविध भारती कौन सुनता है भला?
1: तुम बीच में कहाँ से टपकी? अरे जिंदगी भर तुमने बस फरमाइश की है और हमने पूरी की है, तो आज भी फरमाइश पूरे करने का काम हम करेंगे। ट्रेन ट्रेन
2: ट्रेन ट्रेन ट्रेन ट्रेन।
1: स्टूडियो में धीमी धीमी लाइट। मौसम कैसा है ये नहीं बता सकता क्योंकि कमेंट्री बॉक्स से बाहर का मौसम नहीं दिख रहा, स्टूडियो के बाहर का नजारा यहाँ से दिखता नहीं है। हाँ तो स्टूडियो में धीमी धीमी लाइट। अगले कॉल के लिए मैदान एकदम साफ, एक इंजीनियर फर्स्ट स्लिप में, एडिटर सेकंड स्लिप में और प्रोड्यूसर गली में खड़ा है और कुछ ही दर्शक मौजूद हैं जिनमें उत्साह की लहर नजर आ रही है। कॉलर नई बॉल के साथ तैयार। इस बीच रिंगटोन बजती है।
0: सुनो जी,
1: हेलो,
0: सुनो जी चुप रहो, बकवास बंद करो, ऐसे करते हैं हेलो फरमाइश, ऐसे करते हैं श्रोताओं से बात। अरे इसे क्रिकेट की कमेंट्री बना दिया है तुमने, सारा दिन बस क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, सारा जीवन क्रिकेट क्रिकेट। मैं तो तंग आ चुकी हूँ क्रिकेट के इस पागलपन से। इस घर में दो पागल हैं, एक ये है क्रिकेट प्रेमी,
1: एक शानदार बॉल और ये बल्लेबाज क्लीन बॉल,
0: और दूसरी है ये सिनेमा प्रेमी।
2: सौ सौ साल जियो हमारी सासू जी, हमको लागे मौ से प्यारी सासू जी, मेरी सासू माँ।
1: शट अप
0: शट अप। बहुत हो गया बहुत हो गया, इतने दिनों से कॉल लगा रही हूँ, हेलो फरमाइश में तो कॉल लगता ही नहीं है। मुझे ही पता लगाना होगा कि आखिर चक्कर क्या है, इसीलिए तो मुंबई आ गई हूँ। चुपके से चलती हूँ विविध भारती के अंदर, हेलो फरमाइश के स्टूडियो में, और पता लगाती हूँ कि आखिर चक्कर क्या है। लोग सोचेंगे कि आधी रात को ये बुढ़िया कहाँ चली आ रही है। अरे वाह अरे वाह, यहाँ तो फोन की रिंग लगातार बजे जा रही है। वाह वाह, उठाऊं क्या है? उठा लेती हूँ, चलो उठाती हूँ। हेलो हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश।
3: देवा देवा, मैं किती वेळ फोन करत आहे, अरे तुमचा फोन कधीच वाजत नाही, काय झालं, तुम्ही काय केलं तुमच्या मशीनला, तुम्हाला काय लोकांना त्रास द्यायलाच आवडत का?
0: नमस्ते नमस्ते, हेलो फरमाइश। अरे सुनिए, हेलो फरमाइश हिंदी कार्यक्रम है, समझिए आप, आपको हिंदी में बात करनी चाहिए। आप कौन बोल रही हैं और क्या कहना चाहती हैं आप?
3: अरे देवा, लो हिंदी में बोल देती है मैं, मी मृणमयी।

0: जाने की, मैं मृण्मयी बोल रही हूँ जलगांव से।
1: जलगांव से, पानी गांव से।
0: पहले पहले तो ये बोलो, तुम जब फोन कर दी स्वागत नहीं, यानी कि तुम्हारा फोन लगता काहे को नहीं?
1: क्या
0: मैं कितनी बार फोन कर रहा है?
1: अरे
0: अरे आने की मैं कितनी देर से फोन कर रही हूँ?
1: क्या
0: अरे तुझा मशीन लगाए के लो तू?
1: अरे
0: अरे यानी कि आपने अपने मशीन को क्या कर रखा है?
1: ये अनुवाद भी कर रही है?
0: अरे तुम्हारा लोकांना त्रास द्यायलाच आवडत का? यानी कि लोगों को चिढ़ाने में मजा आता है क्या तुमको?
1: अरे ये तो अनुवादक है। हे भगवान, हे भगवान, दो दो भाषाएं मत बोलिए ना प्लीज। देखिए देखिए, देश भर के श्रोता कॉल करते हैं ना, इसीलिए आपका कॉल नहीं लगता है ना।
0: अरे मेरा ही कॉल क्यों नहीं लगता, यानी कि बाकी सबका क्यों लगता है? क्यों क्यों क्यों?
1: वो क्या है ना,
0: बहाने बनाओ उनका।
1: क्या है ना,
0: यानी कि बहाने मत बनाओ।
1: हे भगवान, हे भगवान, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं।
0: अरे आधीच सांगितलं होतं मी।
1: फिर मराठी?
0: यानी कि मैंने तो पहले ही बताया था आपको।
1: अरे अनुवाद नहीं
0: करेगा। मी मृण्मयी, यानी कि मेरा नाम है मृण्मयी।
1: अरे
0: मृण्मयी, मई मैं जलगांव से बोलता है, यानी कि मैं जलगांव से बोल रही हूँ।
1: समझा समझा समझा। मृण्मयी, मृण्मयी कितना प्यारा नाम है ना।
0: अरे बाबा, मृण्मयी नहीं, मृण्मयी।
1: बापरे,
0: आया क्या समझ में? यानी कि मृण्मयी।
1: अरे सुनिए सुनिए, मृण्मयी मृण्मयी ही सही होता है, मृण्मयी नहीं।
0: आता तुम्हें माला शिकवाल, यानी कि तुम सिखाओगी मुझे मेरा नाम क्या है?
1: अरे अरे नहीं भाई, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है जी।
0: तो फिर कैसी बात है, यानी कि क्या बोलती है आप?
1: अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आपका दिन कैसा जा रहा है आज?
0: बहुत बकवास
1: है,
0: एकदम एकदम बकवास जा रहा
1: है।
0: एक तो मैं 2 साल से फोन लगा रही हूँ, फोन है कि लगता ही नहीं है। यानी कि आप लगा है तो तुम बकवास किए जा रही हो? कोई अच्छी बात करना नहीं आता क्या तुमको?
1: अरे
0: क्या नाम है तुम्हारा?
1: जी मेरा मेरा नाम है समता सिंह।
0: ओ अच्छा, तो तुम हो समता सिंह?
1: जी मैं हूँ समता सिंह।
0: जी जी, क्या लगा रखा है? अरे जब भी तुम फोन इन प्रोग्राम करती हो मेरा कॉल क्यों नहीं लगता? यानी कि तुम्ही ने कुछ कर रखा है मशीन में।
1: क्या?
0: अरे एक दिन मैं वहाँ आ जाऊंगी, यानी कि सर फोड़ दूंगी तुम्हारा वहाँ आके।
1: अरे बाप रे, अरे रे, सुनिए तो, ऐसी मारपीट की बात नहीं करते हैं। बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
0: अरे अरे गाना तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले बताओ यानी कि मेरा फोन लगता क्यों नहीं है?
1: मुझे क्या पता, मेरा मतलब मुझे नहीं मालूम।
0: अरे तुम्हें नहीं पता तो किसे पता होगा? चलो चलो अपने बॉस का नंबर दो।
1: बॉस का नंबर? बॉस का नंबर मतलब क्या मतलब?
0: बॉस का नंबर मतलब तुम्हारे बॉस का नंबर, यानी कि तुम्हारे साहब का नंबर।
1: ओ अरे अरे वो सिर्फ छोड़िए ना, असल में मैं जानना चाहती हूँ कि आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
0: आपने सुना नहीं, पहले अपने बॉस का नंबर दो। बॉस का नंबर?
1: बाप रे, ये तो बड़ी खतरनाक कॉलर है, फोन काट देती हूँ। बाप रे, कितने खतरनाक लोग कॉल करते हैं यहाँ, मैं तो सचमुच में फंस गई, बड़ा ही मुश्किल काम है ये सचमुच। हे भगवान, हे भगवान, क्या करूं? फिर फोन बजने लगा। एक काम करती हूँ, फिर उठा लेती हूँ फोन। हेलो हेलो हेलो, फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं?
2: आप बोलती हो तो मिठास घुलती है, आप बोलती हो तो सूरज चमकता है, आप बोलती हो तो हम सुनते हैं, आप बोलती हो तो बोलती ही रहती हो। आवाज की दुनिया

0: के दोस्त समता सिंह को इंदौर से सलीम आलिन वन का सलाम। अब बस एक कर दीजिए काम, हमको दे दीजिए इनाम, गाना सुनवा दीजिए जनाम।
1: जनाम जनाम, ये जनाम क्या होता है?
0: जी वो तो बस तुक मिलाने के लिए जनाम कर दिया। जी जनाब हैगा असल में। हाँ
1: और ये सलीम ऑल इन वन का क्या मतलब है?
0: जी, मैं हूँ ऑल इन वन, यानी मैं ही टेलर, मैं ही प्लम्बर, मैं ही मैकेनिक और मैं ही ड्राइवर।
1: अच्छा,
0: करवा लो जो भी करवाना हो काम, गाना सुनवा दो जनाब।
1: है फिर जनाब? हद है जी, अरे कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: हाजी सुनना तो बाद में चाहते हैं, पहले तो सुनवाना चाहते हैं। हाँ बोलो। हाँ
1: हाँ
0: सुनवाओ।
1: हाँ
0: अच्छा सीला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सीला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, अशको की माला मेरे गले पहना के, खुश है वो घर किसी और का बसा के, कर दिया खून देखो मेरे एतबार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, अच्छा सीला दिया। अच्छा लगा?
1: हाँ बहुत अच्छा लगा, अच्छा सीला दिया तूने मेरे प्यार का। पूरा गाना तो आपने सुनवा दिया, अब हम क्या सुनवाएं आपको?
0: हाजी हाजी ऐसा कीजिए, मुझे आप कुछ मत सुनवाइए, हमें एक और गाना सुनवा देते हैं आपको। हाँ तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, याद आता है आज का अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है,
1: नाता
0: ये
1: है।
0: नाता है।
1: अरे मिस्टर ऑल इन वन, अरे मिस्टर ऑल इन वन,
0: हाजी हाजी हाजी
1: सुनिए तो, सुनिए।
0: कितनी
1: तो,
0: मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे दिखाऊं उसे, कैसे दिखाऊं उसे, दीवानगी ने पागल किया है, कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे। अजी वाह वाह तो कीजिए, मिटाने।

0: प्यार
1: काट दिया इसका फोन, जिसे मैं प्यार करता था। गाना सुनना चाहते हैं कि सुनवाना चाहते हैं, ये तक क्लियर नहीं है इसका। ये पता नहीं कहाँ से आ गया ये गायक। ये विविध भारती वालों का काम तो सचमुच बहुत मुश्किल है यार। मुझे तो जरा सी देर में समझ में आ गया कि कैसे कैसे संभालना पड़ता है।
2: ट्रेन ट्रेन ट्रेन ट्रेन,
1: अरे फिर बजने लगी घंटे। अब क्या करूं? फिर लेती हूँ, फिर लेती हूँ, एक कॉल फिर लेती हूँ। हेलो हेलो फरमाइश। हेलो जी, मैं समता सिंह बोल रही हूँ, आप कौन बोल रहे हैं जी?
3: बोल नहीं रहे हैं, है? बोल रही हूँ।
1: अरे बाप रे, जी हाँ जी हाँ। हेलो फरमाइश, बताइए आपको कौन सा गाना सुनना है, कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
3: आप हेलो फरमाइश से बोल रही हैं क्या?
1: हाँ
3: हेलो, गाना तो हम बाद में सुनेंगे, पहले तो हमें आपसे कुछ बात करनी है।
1: बात? हाँ हाँ कीजिए कीजिए, जरूर कीजिए।
3: मैं पूना से मनीषा बोल रही हूँ, मुझे अपनी सास की शिकायत करनी है आपके यहाँ।
1: है, सास की शिकायत?
3: हाँ,
1: पर ये कोई सास शिकायत केंद्र नहीं है, ये तो हेलो फरमाइश है।
3: तो क्या हुआ, आप लोग हमेशा कहते हैं ना कहीं अपने दिल की बात
1: है,
3: तो आप सुनिए, यही है मेरे दिल की बात। मेरी सास ने मेरे दिल की वाट लगा रखी है खड़ूस कहीं की।
1: अरे अरे अरे अरे, ऐसा नहीं बोलते, हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हुई हो, आपकी सास आपका भला चाहती हो।
3: गलत फहमी? अच्छा बताओ किसकी सास है, आपकी या मेरी?
1: आपकी।
3: तो सच किसे पता होगा?
1: आपको।
3: तो कौन बोलेगा?
1: आप।
3: और सुनेगा कौन?
1: आप। वो मेरा मतलब मैं सुनूंगी।

0: सुनना नहीं है, हर बात पर हाँ हाँ भी करना है आपको।
1: कहाँ से आ गई है कॉलर? हाँ
0: देखो अब मुकर नहीं सकती आप।
1: हाँ
0: मेरी सास खड़ूस है, बोलो हाँ।
1: अरे हम हाँ कैसे कह सकते हैं, हमें क्या पता?
0: अभी अभी आपने कबूल किया कि हमें सब पता है, तो बोलो हाँ।
1: हाँ
0: मेरी सास खड़ूस है।
1: हाँ

0: देखिए, अब मेरी सास करेगी, बोलो हाँ।
1: अरे ये मैं कैसे कह दूँ?
0: देखो मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है, आपने एक्सेप्ट किया है कि आपको हाँ बोलनी है।
1: हाँ।
0: तो अब सारे काम सास से करवाने चाहिए।
1: हाँ हाँ।
0: और उनके हर काम में मीन मेख निकालनी चाहिए कि नहीं?
1: अरे पर ये तो हेलो फरमाइश है बाबा।
0: बकवास मत करो, सीधे बोलो, समझी तुम?
1: अरे हाँ,
0: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हर वक्त सास को कोसना भी चाहिए।
1: हाँ,
0: बोलो पर, हाँ
1: नहीं पर हाँ।
0: सास से हमेशा डांट कर बात करनी चाहिए।
1: अरे बाप रे, मैं कहाँ फंस गई। अरे बाबा हाँ।
0: और उन्हें घर से निकाल देना चाहिए ना।
1: अरे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
0: हेलो
1: भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम ना से रोग हरे से पीरा जपत निरंतर हनुमान वीरा, ना से रोग हरे से पीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन नाम जो लावे। फोन काटने देती हूँ। बड़ी खतरनाक कॉलर थी, कहाँ से आगे चिल्लाती हुई है। मर्ज करम जड़ी नास पीटी, मर गए। ये मैं कहाँ फंस गई थी। ओफो, मैंने तो सोचा था कि हेलो फरमाइश बड़ा ही मजेदार प्रोग्राम है, पर यहाँ तो अरे बाप रे, ये कॉल लूँ कि नहीं लूँ। लेती हूँ। हेलो हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं?
0: सासू जी, 8 बज गए हैं, उठ जाइए ना।
1: मैं समता सिंह बोल रही हूँ।
0: समता सिंह, अरे तबीयत तो ठीक है आपकी सासू माँ?
1: आप कौन बोल रही हैं?
0: हे भगवान, क्या हुआ है इन्हें? बताइए कौन सा गाना, अरे क्या कह रही है ये?
1: बताइए, मैं समता सिंह बोल रही हूँ। आप बताइए कि आपको कौन सा गाना सुनना है?
0: हे भगवान, लगता है पानी डालकर जगाना होगा सासू माँ को। ये लो
2: छपा।
1: अरे ये क्या क्या डाला? करप्ट जड़ी नाथ पीटी, ये क्या क्या? मेरे ऊपर पानी क्यों डाला तूने?
0: अरे तो क्या करती सासू माँ? हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रही हैं? समता सिंह है, ये क्या था सब?
1: अरे लगता है मैं कोई सपना देख रही थी।
0: हेलो फरमाइश का सपना?
1: पता नहीं मेरा ये सपना कब सच होगा।
3: सौ सौ साल पगलाओ
0: हमारी सासू जी।
3: हेलो फरमाइश में फोन लगाओ
0: सासू जी।
3: सौ सौ साल पगलाओ
0: हमारी सासू जी।
3: हेलो फरमाइश में फोन लगाओ
0: सासू जी।
1: हेलो फरमाइश, मैं समता सिंह।
4: हेलो फरमाइश।
5: था प्रहसन सास बहु और हेलो फरमाइश, जिसे यूनुस खान ने लिखा था और उसमें हम और आप शामिल थे। उसके साथ मनुश्री पाठक जी थी, ममता सिंह जी भी थी और यूनुस खान खुद भी थे इसमें। और इस दिन एक और प्रस्तुति हुई थी। हम जानते हैं कि नाट्य प्रस्तुतियां केवल नाटक से नहीं होती, कई बार किसी कोई लेख हो, कोई कविता हो, इससे प्रेरणा लेकर भी नाटक लिखे जाते हैं।
6: बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी दिन एक और नाट्य प्रस्तुति हुई थी जो दिनेश चौधरी के लेख का नाट्य रूपांतरण था।
5: जी हाँ।
6: और जिसे प्रस्तुत किया था जाने माने अभिनेता नरोत्तम बेन ने,
5: और उसका शीर्षक था ये उन दिनों की बात है। तो मंदाग्नि जी, ये जो शीर्षक है ये उन दिनों की बात है। असल में उन दिनों की बात है जब हम केवल और केवल सिनेमा देखा करते थे।
6: बिल्कुल
5: हाँ। और सिनेमा देखने के लिए किस तरह से प्लानिंग होती थी, कैसे टिकट निकाला जाता था, और फिर सिनेमा देखने के बाद में कैसे आकर के उसकी बड़ी वर्णनात्मक शैली में हम उसकी कहानी सुनाया करते थे।
6: बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ जयंत जी कि ये उन दिनों की बात है जब तांगे में बैठकर कोई व्यक्ति जोर जोर से अनाउंसमेंट किया करता था, आइए फिल्म देखने आइए, इस तरह की उद्घोषणाएं होती थी। और हम उसको सुना करते थे और उससे प्रेरित होकर फिल्में देखने जाया भी करते थे।
5: चलिए इसका मजा लेते हैं।

चंदे वहीदा रहमान शानदार संगीत से भरपूर ज्वेल थी। पहली बार देखी अशोक कुमार को गद्दार के रोल में, आखिरी तक आपको पता नहीं चलेगा कि पिक्चर के गद्दार है अशोक कुमार। तो देखना नहीं भूलिए ज्वेल थी, आपकी विशेष फरमाइश पे ब्रांड न्यू प्रिंट में कल्पना एयर कूल्ड में ज्वेल थी, ज्वेल थी, ज्वेल थी। ये उन दिनों की बात है जब कोई शहर या कस्बा कितना बड़ा है इस बात का अंदाजा इससे लगाया जाता था कि वहां कितने सिनेमा हॉल हैं। जिनके पास 8-10 होते वो मेट्रो वाली ठसन मारते, एक से एक सिनेमा हॉल का ऐसा खाका खींचते थे जैसे ताजमहल के प्रोफेशनल टूरिस्ट गाइड भी ना कर पाते हों। गप गोष्ठियों के वो शान होते थे और अमूमन हमेशा ही महफिल लूट ले जाते थे। जिनके पास इतनी ना हो उन्हें बड़ा कॉम्प्लेक्स रहता, वो जब तब कहते कि भाई हमारे यहां तो बस एक ही टॉकीज है, और उनके भीगे हुए स्वरों से ऐसा प्रतीत होता कि मानो वो मूलतः उन्हीं का कसूर हो। और कुछ बे औलाद किस्म के भी होते जिनके नसीब में एक भी सिनेमा हॉल नहीं बदा होता। लोग दिलासा देते कि फिक्र ना करो भाई, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी दुआ जरूर कबूल होगी। अलबत्ता इसके लिए किसी ने कोई झाड़ फूंक करवाई हो ऐसी कोई इत्तला मेरे पास अभी तक तो नहीं है। अपने यहां क्या था कि अपने यहां तो दो थी, अपने यहां दो टॉकीज थी और एक बंद पड़ी थी। कोई पूछता कि तुम्हारे यहां कितनी टॉकीज हैं तो अपन कहते तीन है, एक बंद पड़ी है लेकिन जल्दी शुरू हो जाएगी। दोनों सिनेमा हॉल एक दूसरे के अगल बगल में थे और उनमें जबरदस्त प्रतिस्पर्धा होती थी। ऐसी कड़ी और सीधी टक्कर कभी कोई भी ठंडा पीने वाली कंपनी हो उनके बीच में नहीं रही होगी। तो कई बार दुश्मन खेमों को झांसा देने के लिए आगामी फिल्म वाले बक्से में पोस्टर किसी और फिल्म का लगाया जाता और खटाक से घोषित दिन से एक रोज पहले ही कोई और फिल्म चला दी जाती। इस छापामार कार्रवाई से शत्रु भौचक रह जाता और नगर में कई दिनों तक इसकी चर्चा बनी रहती। और कई बार तो फिल्म को जबरन हिट कराने के लिए कृपया फिल्म के गानों और डायलॉग पर पैसे ना फेंकें ऐसी उद्घोषणाएं भी चलाई जाती, जिससे यह साबित होता है कि जुमला संस्कृति कोई आज की विधा नहीं है और इसकी जड़ें अपने महान देश में आदिकाल से मौजूद रही हैं। तो दोनों टॉकीज के सामने की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं तो बाईं ओर जो थी वो मुकुट टॉकीज थी और दाईं ओर विष्णु टॉकीज थी। नाम से जाहिर होता कि मतलब लोग धार्मिक होते थे, धार्मिक भावना से अपने काम करते थे, तो यही नाम भी वो उस तरह से रख लिया जाता था। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि उस समय फिल्म देखना भी अपने आप में धर्म होता था, बड़ी शिद्दत से देखा करते थे फिल्म। इसीलिए फिल्म शुरू होने से पहले आरती बजती थी, मुकुट टॉकीज में बजती थी वो। ओ

पूरे करें। और विष्णु में बसती थी अंबे, तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मतलब क्या माहौल होता था फिल्मों का, आप खुद सोचिए। अच्छा, सामान्यतः मुकुट टॉकीज में ओल्ड क्लासिकल टाइप की फिल्म रखती थी और विष्णु में नई। टॉकीजों की भी होती ना कैटेगरी, भाई यहाँ ऐसी देखेंगे वहां वैसी देखेंगे, तो लोगों की मानसिकता वैसी बन जाती है। तो सकल वार्षिक घरेलू आय परिवार के वयस्क अवयस्क सदस्यों की संख्या और तत्कालीन थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर तब घरों में सिनेमा देखने का अलग से बजट होता था। हम लोगों को आमतौर पर महीने में एक बार फिल्म देखने की अनुमति होती थी, एक बार देख लिया करते थे, जिनमें से किसी भी प्रकार का संशोधन सामान्य प्रक्रियाओं के द्वारा संभव नहीं था। मेहमान के रूप में जब कभी जीजा फूफा चाचा ताऊ वगैरह आ जाते थे ना, तब बच्चे बड़े खुश होते थे कि अतिरिक्त फिल्म देखने का सुयोग बनेगा और ये राशि जो है अमूमन उन्हीं की जेब से खर्च करवाई जाती थी। अच्छा, जेब खर्च के चोचले तब नहीं होते थे, लौट कर आई हुए खुले पैसों में से कभी मतलब 5-10 पैसे मिल जाए तो उन्हें जतन से संभाल कर रख लिया जाता था। तब थर्ड क्लास की टिकट जो थी वो 60 पैसे में मिल जाती।

जाती थी। बात वालों ने शायद मेरे ख्याल से 1 रुपए 60 पैसे इस तरह का भी देखा होगा, तो 60 पैसे में मिल जाती थी। 50 या 55 पैसे इकट्ठे होते न होते सब्र का बांध टूट जाता। सिनेमा हॉल पहुंचकर किसी दयालु मित्र की तलाश की जाती, जो खुद भी दीगर मौकों पर जरूरतमंद हो सकता था या जिस पर अपना कोई पुराना एहसान होता था, है ना। उसे कहा जाता कि भाई यार दस्सी कम पड़ रही है, मिला दे भाई, मिला दे यार, सुन तो समझना, दस्सी कम पड़ रही है, मिला दे यार। और वो क्या करता, वो जो है मान जाता था और इस तरह से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना के प्रचार का वाहक बन जाता था। हम लोग आमतौर पर सबसे आगे वाली सीट हथियाते थे और इस बात पर हैरानी जाहिर करते थे कि यार लोग ज्यादा पैसे देकर पीछे क्यों बैठते हैं। बड़ा अजीब सा मामला था। तो आरती के तुरंत बाद 16 कुदरती जड़ी बूटियों से युक्त वीको वज्रदंती वाला एड शुरू हो जाता। फिर फिल्म डिवीजन की कोई फिल्म चलती जिसे न्यूज रील कहा जाता था। कई लोग मजा लेते थे, कई लोग बोर होते थे, लेकिन अपन को तो सिनेमा हॉल में ज्यादा से ज्यादा देर रहना होता था ना, तो हम तो भाई मजा ही लेते, समझ आए या ना आए कोई बात नहीं है। तो न्यूज रील की लंबाई हॉल में भरने वाले दर्शकों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती थी, और जब हॉल भरने पर भी फिल्म शुरू ना हो तो कोई ना कोई व्याकुल दर्शक ऑपरेटर के चरणों में कोई मोटी सी वजनदार गाली सादर अर्पित कर देता, जिसका अनुमोदन शेष दर्शक सीटियां बजाकर या रोष ध्वनि के साथ करते थे। फिल्म शुरू होने पर पहला दृश्य जब आता था तब सब सांस रोककर उसे देखते थे। यह होता था सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट जिसमें फिल्म की लंबाई दर्ज होती थी। अगर 16-17 रील की फिल्म होती तो वो छोटी मानी जाती थी और आमतौर पर दर्शकों की आह निकल जाती। 21-22 रील की फिल्म होने पर उसका स्वागत सीटियों के साथ किया जाता। कभी कभी मुझे लगता है कि ये सीटी बजाने की कला का आविष्कार हिंदी सिनेमा के मद्देनजर ही किया गया होगा। इसके उद्भव और विकास की प्रक्रिया पर कोई ठोस अध्ययन हो तो इस तथ्य की पुष्टि मतलब की जा सकती है। तो फिल्म शुरू होने के बाद सबके सब किसी सम्मोहन से बंधे एक अलग दुनिया में प्रवेश कर जाते। ये वो चिरपरिचित दुनिया होती जिसे हम केवल अपने सपनों में देख पाते थे। यहां हवा में उड़ते बादल होते, बादलों को चीरकर सफेद अश्व आते, अश्वों के बाजुओं में पंख लगे होते और उस पर बैठे नायक का चेहरा सबको अपना लगता। सिर्फ 60 पैसों में यह दुनिया 3 घंटों के लिए किराए पर मिल जाए तो इससे सस्ता सौदा और क्या हो सकता था। अच्छा, उस समय हर सिनेमा हॉल में ना 2 प्रोजेक्टर नहीं होते थे, कईयों में एक होते थे, तो हर पार्ट के बाद एक इंटरवल होता था, जिसमें 2 होते तो वैसा तो सामान्य इंटरवल होता था। तब सिनेमा हॉल में एक ही प्रोजेक्टर मशीन हुआ करती थी, इसीलिए इंटरवल के पहले और बाद में एक शॉर्ट इंटरवल हुआ करता था। पहले शॉर्ट इंटरवल में गेट पास नहीं दिया जाता था। कभी कभी कोई पुरानी फिल्म लगी हो और ज्यादा भीड़ ना हो तो गेट पास भी नहीं दिया जाता। पक्की खबर होने पर हम ऐसे मौकों का लाभ उठा लेते और इंटरवल के बाद आधी फिल्म अधिकार पूर्वक देख लेते। गुलजार साहब की आंधी मैंने ऐसे ही इंटरवल के बाद देखी थी और पता नहीं किस मुहूर्त में देखी थी कि पहले वाली आधी फिल्म आज तक नहीं देख पाया। हाँ, वो कमलेश्वर जी वाला नॉवेल जो है वो पूरा पढ़ लिया है। अच्छा, इंटरवल की कालावधि के 2 मुख्य प्रयोजन होते थे। पहला लघु शंका वाला, कई बार इंटरवल के बाद जब कोई गाना आता तो टॉकीज के बगल वाली गलियों में उन मकानों के पिछवाड़े हिस्से में जहां थोड़ा अंधेरा और थोड़ी ओट होती, ये काम अधिकार पूर्वक निपटा दिया जाता। और दूसरा प्रयोजन होता था अपने लिए ठेले वाले से गरम चने या मूंगफली हासिल करना। इसकी गुंजाइश तभी बनती जब फिल्म देखने के लिए पैसे आधिकारिक रूप से घर से स्वीकृत किए गए हों। जेब में पैसे कुछ ज्यादा हों तो जैन होटल के समोसे बड़े मशहूर हुआ करते थे। तो जिस दिन फिल्म के साथ समोसों का भी स्वाद हासिल हो जाए वो अपने लिए बड़ा दिन हुआ करता था भाई, और उसकी याद तब तक बनी रहती जब तक अगला सुअवसर हाथ ना आए। जैन होटल का जिक्र के साथ एक भीड़ भरी इंटरवल से कुछ पहले का किस्सा याद आ गया, पर इस मूल कथा से पहले मतलब एक सहायक कथा पर भी थोड़ी सी नजर डाल देते हैं। ये कथा यूनियन मीटिंग के दौरान कॉमरेड MN प्रसाद सुनाया करते थे। सोवियत क्रांति से पहले जारशाही के दिनों में जब वहां गंभीर खाद्यान्न संकट था, लोगों को परखने के लिए लेनिन चौराहों पर टोकरी लेकर बैठ जाते। टोकरी में रोटियां होती, कोई इंसान आकर रोटियां उठा ले तो उसे कुछ नहीं कहते, जो रोटियां मांगता उसे मना कर देते, चल। उनके एक साथी ने इसका सबब पूछा कि भाई क्यों यार तुम ऐसा क्यों करते हो, तो उन्होंने जवाब दिया, जो खुद आकर रोटियां उठा रहा है वो अपने अधिकारों को समझता है, मांगने वाला जो है वो अपने काम का नहीं है। तो मूल कथा यह है कि इंटरवल से ठीक पहले जैन होटल में एक देहाती किस्म के इंसान का प्रवेश होता है। बंदा आता है, बढ़िया 2-3 किस्म की मिठाइयां खाता है, फिर 2 समोसे मंगाए जाते हैं।

एक समोसा और मंगाया जाता है। आखिरी में चाय आती है। चाय भी बड़ी इत्मीनान से सुर्र सुर्र करके पी जाती है। जब तक कि इंटरवल की घंटी ना बज जाए तब तक। घंटी बजते हुए बंदा उठता है और कितने हुए कितने हुए कहते हुए काउंटर तक पहुंचता है। इधर बेरा अपना हिसाब लगा रहा है, उधर सिनेमा वाली भीड़ टूटने को है। बस यही संक्रमण काल है। ठीक इसी क्षण वो पूरे आत्मविश्वास के साथ 200 मीटर की लंबी दौड़ लगाकर आंखों से ओझल हो जाता है। सिनेमा वाली भीड़ काउंटर पर पहुंच चुकी है और काउंटर पर बैठे चश्मे वाले सेठ को सूझ भी नहीं पाता कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। भागने वाले ने गालियां तक बकने का मौका नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था कि जैन होटल का सेठ लेनिनवादी नहीं है। अच्छा, इंटरवल से हॉल में लौटने की भी कुछ तयशुदा परंपराएं थीं। सिने पर्दे की मायावी रंग बिरंगी रोशनी बालकनी वाली सीटों से कुछ ही ऊपर से आती थी। नाचती खेलती कई रंगों वाली रोशनी मुझे बहुत आकर्षित करती थी और कई बार सिनेमा देखना छोड़कर इन्हीं रंगों में खो जाया करता था। रोशनी के निकास के लिए दीवार पर कुछ छिद्र बने होते थे। छिद्र के उस पार की दुनिया मेरे लिए बड़े कौतूहल का विषय थी। मैं सोचता था कि यार वो कौन सा जादू है जो पर्दे पर ऐसी दुनिया रच देता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं पाते। उस कमरे के दरवाजे पर अंदर आना मना है, ऐसी इबारत होती। और मुझे अफसोस है कि मैं अपने जीवन में बड़ी बड़ी चक्रियों पर चलती फिल्मों की रील की उस तेज गति की नंगी आंखों से नहीं देख पाया जो पर्दे पर जीवन रचते थे। तो यहां से फैलने वाली रोशनी और पर्दे के बीच जब किसी दर्शक का सिर आ जाता तो एक बड़ी सी काली छाया उभर आती। कोई विनोदी दर्शक हॉल में मौजूद होता तो चिल्ला कर कहता, अबे बैठ जा। बेचारा अनजान छाया निर्माता झेप सा हो जाता, पर वो मट्ठर हुआ तो सिर हटाकर रोशनी के आगे थोड़ी देर के बाद अपना पंजा फैला देता और उसकी उंगलियां पर्दे पर नाचने लगती। इस कार्रवाई के जवाब में अक्सर मां की गाली आती और कभी कभी जवाब में दुगनी आवाज के साथ सूद सहित वापस भी लौटाया जाता। ये संपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम एक समृद्ध परंपरा के तहत आम जनता के मनोरंजन के लिए होता और तनाव में आने के बदले लोग हंसने लगते। फिर हंसी की आवाज सीटियों के शोर में खो जाती और लोग वापस फिल्म पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगते। अच्छा, फिल्म देखने वालों में कुछ दर्शक ऐसे भी होते थे जो फिल्म देख चुके होते थे। वो अपने साथी को आगे की कहानी सुनाने का प्रयास करते और बदले में अगल बगल वाले की डांट भी खाते रहते थे। ए चुप बे, ए लेके जा इसको, समझ नहीं आ रहा क्या उसको। मगर उन बेचारों से रहा नहीं जाता और थोड़ी देर में फिर इसी काम में लिप्त हो जाते। अच्छा, कुछ अमजद खान साहब की जहमत से बचाने के लिए तेरा क्या होगा कालिया, या फिर अब गोली खा, जैसे संवाद गब्बर सिंह से पहले ही कह डालते। एक दर्शक तो ऐसा था जो सस्पेंस वाली फिल्म में लोगों का मजा खराब करने के लिए पहले ही जोर से चिल्लाकर मर्डरर का ऐलान कर देता। एक बार इसी वजह से उसकी अच्छे से कुटाई भी हुई। अच्छा, शोले एक बार दिवाली के समय लगी, इधर डाकुओं के बंदूक से गोली निकलती और उधर बालकनी में बम पटक फूट, मतलब यहां बंदूक से गोली निकली वहां बालकनी में बम फूटा। गेट कीपर दौड़कर अंदर आता पर अंधेरे में किसे पकड़ता भाई। कुछ दर्शक बड़े पिन्ने किस्म के होते और जरा सा सीरियस सीन आने पर सुबकने लगते, और कुछ कंटिन्यूटी फॉल्ट पकड़ने के एक्सपर्ट होते और चिल्लाकर कहते, अबे समुद्र में कूदा तो शर्ट लाल थी, अब नीली कैसे हो गई। कुछ दर्शक जो होते वो जंप और जर्क पकड़ने के विशेषज्ञ होते और ऐसा होने पर फौरन चिल्लाकर कहते, अबे काट दिया। उधर से रहस्यमय रोशनी वाले छिद्रों के पीछे से आवाज आती, अबे रील ही ऐसी आई है साले, हा? मुझे क्या बोल रहा है, चुपचाप देख। सिनेमा देखने के लिए टिकट लेना जरूरी होता था और टिकट लेने के लिए लाइन लगाना कोई आसान काम नहीं होता था। बचपन में देखा भाई, वो सिनेमा की लाइन जो हुआ करती थी बड़ी खतरनाक होती थी, और साइकिल स्टैंड से साइकिल निकालना तो और भी कितना मुश्किल हम होता था। तो जो कभी सिनेमा की लाइन में नहीं लगा समझो उसका जीवन अकारक चला गया। कुछ लोग जो थे मतलब पहला दिन और पहला शो इस सिद्धांत पे यकीन रखते थे, भैया सिर पर कफन बांध कर निकल पड़ते थे। उचित सूचना के अभाव में माए ऐसे वीर बालकों की आरती भी नहीं उतार पाती थी, मतलब कि बेटा जा रहा है शहनशाह की टिकट लेने या उसकी टिकट लेने, रुक जा तिलक लगवा जा, है ना, आएगा भी या नहीं आएगा, दबकर निकल ना ले कहीं, बड़ा रिस्क रहता है ना। आरती भी नहीं उतार पाती थी, और यह काम कभी कभी सुबह सवेरे भी हो जाता था जब किसी बहुप्रतीक्षित फिल्म के रोजाना 5-6 खेल होते थे। सिनेमा की लाइन के लिए ठंड गर्मी और बारिश सभी मौसमों का बहादुरी से मुकाबला किया जाता। गर्मी की छुट्टियों में भीड़ कुछ ज्यादा होती,
पहला दिन पहला शो वाला नौजवान कतार बनाने के लिए लगी हुई रेलिंग पर सबसे पहले सवार हो

जाता था। इतनी सकरी गली होती थी, मतलब थर्ड क्लास वाले जो है ना, मतलब उसमें तो एक ही एक आदमी जाएगा, उस पे चार चार लगते थे भाई साहब। ऊपर से तैर के जा रहे हैं और जाकर जो है टिकट ले ले। बाकी बालकनी वालकनी का तो अपने अलग माहौल था, वो फैल के जाओ अमीर आदमी है भाई, कार से आए हैं, नहीं स्कूटर से, उस समय कार बड़ी चीज थी। तो सिनेमा की लाइन के लिए ठंड, गर्मी और बारिश सभी मौसमों को बहादुरी से मुकाबला किया जाता। गर्मी की छुट्टियों में कुछ ज्यादा ही होती। पहला दिन पहला शो वाला नौजवान कतार बनाने की लगी हुई रेलिंग पर सबसे पहले सवार हो जाता था। उसका एक पैर बुकिंग विंडो पर और दूसरा सामने वाली रेलिंग पर होता। एक हाथ से वो रेलिंग का सहारा लिया होता और कमीज को उतार कर दूसरे हाथों पर ऐसा कंधे पर लटका लेता। अंदर बनियान हो भी सकती थी और नहीं भी, मतलब कुछ तय नहीं होता था। बनियान न होने पर भी वो बीच बीच में शर्ट से बदन को पोंछ लेता था, जिसके दो फायदे होते थे। पसीने से शर्ट के भीग जाने के कारण पंखा करते हुए वो ठंडी हवा फेंकता था और अंदर हॉल की सीलन भरी गर्मी में इत्र फुलेन का काम करता था। तब आज के समय वाला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता तो इसके रिपोर्टर आ आकर लोगों के मुंह में माइक ठूंस कर और पूछते कि आपको लाइन में लग रहा है, कैसा लग रहा है? नहीं नहीं आपको कैसा महसूस हो रहा है? शर्ट का पंखा हिलाता हुआ नौजवान कैमरे के आगे हिलाता हुआ कहता, जी तकलीफ तो है पर कोई बात नहीं, आगे सब ठीक हो जाएगा। और हो भी गया। अगर सिनेमा की लंबी लाइन देखकर कुछ कमजोर लोगों के दिल टूट जाया करते थे, कुछ ऐसे नाजुक दिल भी होते थे जो परिस्थितियों का बहादुरी पूर्वक मुकाबला करने के बदले कायरता पूर्वक ढंग से पिक्चर देखे बगैर लौट जाते। कुछ लोग ऐसे मौकों पर नारी शक्ति की उपयोगिता को रेखांकित करते और घर से आई महिलाओं को लेडीज वाली छोटी लाइन में लगा देते। अच्छा, महिलाओं की लड़ाइयां देखी आप लोगों ने कभी टिकट के लिए? मतलब पुरुष क्या लड़ते होंगे बाल पकड़ के, जिसको हमें एमपी में कहते झोतरा। सिनेमा देखने की इस जंग में सब जायज था और कभी कभी नए आविष्कारिक उपायों का सहारा लिया जाता। एक बार जब विलंब से पहुंचने के कारण लंबी लाइन देखकर अपन ने रणभूमि से लौटने का मन बना लिया तो अपने एक मित्र ने इस बुजदिली के लिए खूब दुत्कारा। उसने मुझसे मेरे हिस्से के पैसे मांगे और जाकर लाइन के आसपास खड़ा हो गया। खिड़की खुल चुकी थी। थोड़ी देर में मैंने अपने मित्र को सज्जन से बातचीत करते हुए पाया और पता नहीं उसने ऐसा क्या मंत्र फूंक दिया कि हड़बड़ाए हुए लाइन से अलग हुए और उनका स्थान मित्र ने ले लिया। टिकट लेकर हम अंदर हो गए। मित्र ने कुटिल मुस्कुराहट के साथ बताया कि वो सज्जन ग्यारसी लाल हैं, कोऑपरेटिव में बाबू हैं, मैं उन्हें जानता हूं, वो मुझे नहीं जानते। मैंने जाकर उनसे कहा कि चचा आपका नाम ग्यारसी लाल है ना? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा कि आपको कोई ढूंढने आया था, घर में किसी की तबीयत बिगड़ रही है। ठाके लगाते हुए मैंने कहा कि अभी ये पलट कर आएंगे और तुम्हारी तबीयत बिगाड़ देंगे। तब तक 16-17 जड़ी बूटियों वाला वीको वज्रदंती वाला एड शुरू हो चुका था। अच्छा, कुछ भ्रष्टाचार का सहारा लेकर ब्लैक में टिकट लेते थे। उन दिनों ब्लैक टिकट की चर्चा ब्लैक मनी से ज्यादा होती थी, जैसे इन दोनों चुनावों के रुझानों का आकलन सट्टा बाजार से किया जाता है। उन दोनों बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन इस बात से पता चलता था कि टिकट कितने में ब्लैक हो रही है। कई बार सिने मालिकों पर ब्लैक करने वाले इसमें मिली भगत करने का आरोप लगते थे। आत्मनिर्भरता की दिशा में ये उन दिनों वैसा ही मशहूर रोजगार हुआ करता था जैसा इन दिनों पकौड़े बेचना। नागपुर की लक्ष्मी टॉकीज में जब मैंने चाचा भतीजा फिल्म देखी थी तो उसमें नायक धर्मेंद्र भी इस सम्मानित पेशे में लिप्त हुआ करते थे। ब्लैक से लोगों ने बिल्डिंगें खड़ी की हैं, एक एक फिल्म से लोगों ने बिल्डिंग खड़ी की हैं, वो दौर हुआ करता था। सबसे बड़ा धक्का तब लगता था जब आप लाइन में खड़े हों और अचानक हाउसफुल की तख्ती के साथ खिड़की बंद हो जाए। शायर ने शायद इसी मौके के लिए कहा होगा कि किस्मत की खूबी देखिए टूटी कहां कमंद, दो चार हाथ जबकि लबे बाम रह गया। कभी कभी ऐसे मौकों पर गेट कीपर से दोस्ती बड़ी काम आती थी। राजा हुआ करते थे भाई गेट कीपर, बात नहीं करते थे किसी से सीधे मुंह, भले ही आपके मोहल्ले में रह रहे हों, पता है कल पहुंचेगा बोलेगा टिकट चाहिए। गेट कीपर से दोस्ती ही बड़ी काम आती थी। तब के गेट कीपर का रुतबा आज के एडिशनल कलेक्टर से ज्यादा होता था। थर्ड क्लास में सीट नंबर नहीं होता था, भीड़ ज्यादा होने पर लकड़ी की अतिरिक्त बेंच लगा दी जाती थी। गेट कीपर इनमें हितग्राही को समायोजित कर लेता था, बदले में हितग्राही उसे कम से कम टिकट दर से आधी और अधिकतम श्रद्धानुसार किंतु विज्ञापित मूल्य से कम की मुद्राएं अर्पित करता था। इससे परस्पर सामाजिक सौहार्द में वृद्धि भी होती थी। तो हमारी शहर का जबलपुर का ये वाक्य है, गेट कीपर ऐसा जो है अपना टॉर्च लेकर आता था, अब बेंच पर बैठने की व्यवस्था है, बैठा दिया है, चार ही बैठ सकते हैं, पांचवा नहीं बैठ सकता, लेकिन वो बैठाएगा। अब जो है वो टॉर्च लेकर पहुंचा है वहां पे, हाँ चल खिसक खिसक खिसक, अरे कहाँ खिसके यार भैया, बैठ तो गए यार, अब कहाँ बैठेंगे यहाँ पे, अरे क्या बैठने दे, अरे कहाँ बैठा, पैसा तो दे दिया, बैठने दो ना, अरे जगह का दिया, देखो हम एक उस पर बैठे हैं यार, अरे खिसक खिसक, नहीं खिसकता था तो गेट कीपर क्या करता था, वो खिसकाने के बाद
कितने टेक्निक वाले होते थे, गेट कीपर पर जाता था खेसक।

पाने की जगह। अरे नहीं बनेगी यार भैया, गेट कीपर जो होता था वो बेंच में, ये बेंच है तो बेंच के उसमें ऐसा बैठता था, दीवार से अपने दोनों पैर सटाता था, उसमें ताकत लगती थी, सबसे साइड वाला जो है वो नीचे जिसको लेकर आया उसको यहां पर बैठा दिया। तो ये वाले मामले हुआ करते थे। तो इन पंक्तियों के लेखक का सौभाग्य यह रहा कि वो सिनेमा के पोस्टर लिखने वाले पेंटर का शागिर्द था, उस्ताद जो मूलतः क्रिएटिव आर्टिस्ट थे, और 30 रुपए मासिक वेतन के साथ जब कभी मन हो मैं शागिर्द फिल्म देख लेते थे, लेने की शर्त पर पोस्टर बनाने का काम करते थे, मूडी थे, जब तक 5-6 बार बुलाया नहीं आता हॉल की ओर रवाना नहीं होते थे, पर एक बार निकल गए तो मन लगाकर पोस्टर बनाते थे। कभी कभी फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन के सिर के पीछे तख्ती लगाकर कटआउट जैसा बना दिया था, जिसकी नगर में उस समय बड़ी चर्चा थी। बॉबी के लिए उन्होंने गजब की कैलियोग्राफी की थी। उनके साथ हम लोगों ने बहुत सारी फिल्में उस्ताद शागिर्द कोटे में देखी। आधी अधूरी मिलाकर जितेंद्र की लोक परलोक मैंने कम से कम 12 बार देखी होगी। फिल्म देखने के लिए हम 9 से 12 वाला सेकंड शो चुनते थे, क्योंकि भीड़ इसमें कदरन कम होती थी। 6 से 9 वाला फर्स्ट शो प्राइम टाइम होता था। महिलाएं दोपहर के भोजन के बाद रात को खाने की तैयारी के बीच 3 से 6 वाला मैटिनी शो चुनती थीं। 4 खेल होने पर स्कूल छोड़कर आने वाले प्रतिभाशाली बालक गुरुवार को 12 से 3 वाला शो भी देखते थे। इस दिन के चयन का यह कारण होता था कि स्कूल में इस दिन आम कपड़ों में आया जा सकता था। यह योजना खास तौर पर उन गरीब छात्रों के लिए थी जिनके पास यूनिफॉर्म की एक ही जोड़ी हो और वो उसे धो ना सकें। पर जैसा कि दीगर सरकारी योजनाओं में होता है, इस योजना का लाभ भी समान रूप से सभी उठाते थे, और सिविल ड्रेस में होने के कारण होनहार छात्र सिनेमा के टिकट से वंचित होने से बच जाते। आन मिलो सजना, धड़कन, एक फूल दो माली फिल्मों के नाम मुझे अच्छी तरह से याद है। 7-8 बरस की उम्र में देखा होगा या शायद इससे पहले। फिल्म का कोई दृश्य याद करने की कोशिश करता हूं तो कुछ याद नहीं आता, कहां देखा यह भी याद नहीं। एक तो दृश्य आंखें बंद करने के बाद थोड़ी देर को लहराते हैं फिर गुम हो जाते हैं। ब्रीफकेस से निकलने हुए नोट को छोड़ते हुए दिखाई देते हैं, कहीं कोई गहरे कुएं में गिर गया है, सब कुछ बस धुंधला सा है। आंखों के आगे कोई साफ तस्वीर नहीं झलकती, जो साफ दिखता है वो संपूर्ण रामायण का दृश्य है। हनुमान की भूमिका में दारा सिंह है, रावण के दरबार में आसन नहीं मिलता तो अपनी पूंछ से गुंबद जैसा बनाकर उसी में बैठ जाते हैं। अशोक वाटिका में मचाए उत्पात से रावण क्रोधित है। अच्छा, ये मैंने नोट किया है कि वानर जो है फल खाते कम है, उत्पात ज्यादा मचाते हैं। मित्र राजेंद्र चंद्रकांत रॉय कहते हैं कि जिसे हम उत्पात कहते हैं वो वानरों की सदाशयता है। बंदरों की हिरण से अच्छी दोस्ती होती है, कोई जानवर शिकार पर आए तो वे हिरणों को आगाह कर देते हैं। उनकी उछल कूद इसलिए होती है कि पत्ते झरे और हिरण उसे चरें, यह उनकी आदत हो जाती है। बहरहाल बात संपूर्ण रामायण फिल्म की हो रही थी, जो मेरे जहन में स्पष्ट रूप से अंकित है। यह 70 के मध्य काल होगा। उन दिनों चंबल के बिहड़ों में डाकू काफी मात्रा में पाए जाते थे, इसलिए वह स्वभावतः फिल्मों में भी प्रचुर मात्रा में दिखते थे। पान सिंह तोमर के आते आते डाकुओं ने अपना ठिकाना बदल लिया और वो दिल्ली मुंबई में शिफ्ट हो गए, कुछ NRI किस्म हो गए और सरहद पार ठिकाने बदलने लगे। जाहिर है कि डकैतों के घिसे पिटे प्राचीन तरीकों से चिपटे हुए नहीं रह सकते थे। 70 के दशक वाले पुराने डाकू 2 किस्म के थे, जैसे कि हिंदी पट्टी में रंगकर्मी कलाकार वगैरह होते हैं, एक प्रोफेशनल और दूसरे एमेच्योर। प्रोफेशनल डाकू है वो गांव या शहर आकर डकैती करते थे, अपनी ड्यूटी करने के बाद चुपचाप बिहड़ लौट जाते थे। वो थोड़ा संजीदा किस्म के होते थे और अपने पेशे की गरिमा को बनाए रखते थे। और एमेच्योर डाकू जो होते थे उनकी दिलचस्पी डकैती में कम, नायिकाओं को छेड़ने में ज्यादा होती थी। वो थोड़े छिछोरे किस्म के होते थे और जंगल, बाग, पनघट, बावड़ी, नदियां इन तरह के आसपास में मंडराते रहते थे। ऐसा मालूम होता था कि डकैती इनका अंशकालिक कार्य है। अलबत्ता दोनों ही किस्म के डाकुओं का यूनिफॉर्म एक ही होता था, नुकीले जूते, सफेद धोती, गहरे रंग का कुर्ता और कुर्ते पर कारतूसों वाली आड़ी बेल्ट, हाथ में दुनाली। अच्छा, कुछ शौकीन मिजाज डाकू रंगीन पगड़ियों या साफे का भी शौक फरमाते थे। ये आवागमन के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। इनके अलावा घोड़ों की सवारी करते हुए आम जीवन में मैंने सिर्फ बारात के साथ दूल्हों में देखा है। कारण शायद ये हो कि प्रकारांतर में वो भी डाकू ही होते हैं और दहेज के रूप में मोटी रकम और माल असबाब की डकैती करते रहते हैं। लेकिन डाकुओं की एक बात है भाई, डाकुओं की जितनी फिल्म देखो हर फिल्म में भाई संगीत प्रेमी मिलते हैं। ये मतलब क्लासिकल सुनते हैं, मतलब अगर सही

0: सही दिशा इनको मिली होती तो सोचो, मतलब संगीत की दुनिया में अच्छा खासा नाम कमाते वो लोग, अच्छे ट्रेंड सिंगर म्यूजिक फील्ड का कुछ ना कुछ होते। मतलब म्यूजिक के कितने अच्छे अच्छे गाने हैं ना, जब तक है जहां जाने जहां, मैं नाचूंगी, है ना, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ, दर्शन भी है और दुआ दे के परेशान भी हो जाती हूँ, क्या बात है। चलो तो जंजीर फिल्म के जरिए अमिताभ बच्चन जी नाम, उनके बिना तो नाम इंडस्ट्री का कैसे। इसके बारे में भी एक बात बड़ी वो है, हम जब छोटे थे, जब फिल्में नहीं भी देखते थे, कोई पूछता था फेवरेट एक्टर कौन है, तो बोलते थे अमिताभ बच्चन। ये नाम इतना बृहत हो गया है, हम बोलते थे अमिताभ बच्चन। जिसने फिल्म नहीं भी देखी है, मनोरंजन जगत से सिनेमा से नहीं भी मामला हो जिनको, वो नाम लेता था अमिताभ बच्चन। तो जंजीर फिल्म के जरिए अमिताभ बच्चन के आगमन ने अपनी छोटी छोटी फिल्मों में डाकुओं की मोनोपाली को तोड़ा। अमिताभ युवाओं के क्रोध और गुस्से के प्रतीक थे। जंजीर के बाद दीवार में उनका गुस्सा और गाढ़ा हो जाता है और वो कभी कभी और सिलसिला में रोमांटिक हो जाते हैं। नटवरलाल और याराना में कॉमेडी भी करते हैं। उसके बाद फिर सिनेमा की एक नई धारा उभरकर सामने आती है, अर्धसत्य का पुलिस इंस्पेक्टर। जंजीर के पुलिस इंस्पेक्टर से ज्यादा तार्किक और वास्तविक लगता है और गुस्सा इतना है कि रामा शेट्टी का गला दबोच लेता है। जाने भी दो यारो जैसी क्लासिक फिल्म आती है जो संभवतः हिंदी की एकमात्र सटायर फिल्म है, बाद में और बनी होंगी लेकिन है ये फिल्म दर्ज फिल्म है। ये हिंदी सिनेमा के राग दरबारी के रूप में सामने आती है। गोविंद निहलानी, सई परांजपे, केतन मेहता, एम एस सथ्यू, सुधीर मिश्रा, आनंद पटवर्धन, नसीर, ओम पुरी, पंकज कपूर, फारूक शेख, स्मिता पाटिल, शवाना आजमी वगैरह, ये सब मिलकर कुछ ऐसा रचने लगते हैं कि हिंदी सिनेमा की बनी बनाई स्थापनाएं अवधारणाएं धराशायी होने लगती हैं। पर ये लंबे समय तक नहीं चल पाता, टेक्नोलॉजी उधर घात लगाए बैठी होती है। टेलीविजन और VCD का आगमन बॉक्स ऑफिस की कमर तोड़कर रख देता है। सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल जो हैं वो सूने होने लगते हैं। हाउसफुल वाली खिड़कियों पर काई जमने लगती है। सिनेमा हॉल के मालिक कोई कला प्रेमी तो है नहीं कि वो धरोहर को बचाने की फिक्र करें, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मौके की जगह है।
1: FML 103.2 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बिलासपुर का प्रसारण। 11:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से, उसके बाद विविध भारती प्रसारण सेवा 12 बजे से हम अनुप्रसारित करेंगे। पहले आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी रायपुर से।

ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। डीजीसीए ने नई गाइडलाइन जारी की, अब एयरपोर्ट पर रील बनाने पर प्रतिबंध। प्रदेश के सभी डाकघरों में कल और परसों अल्प बचत खाता खोलने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। और मौसम विभाग ने प्रदेश के अनेक जिलों में अगले 48 घंटों के दौरान लू चलने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने नियमों में सख्ती करते हुए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार अब हवाई यात्री एयरपोर्ट के सुरक्षा होल्ड एरिया पर रील बनाना पूरी तरह से बैन रहेगा। साथ ही हवाई जहाज के खड़े होने वाली जगह और बस से यात्रियों को विमान ले जाने तक वाले स्थान पर रुक रुक कर रील बनाने, फोटो या वीडियो बनाना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल नई दिल्ली प्रवास पर रवाना हो गए हैं। अपने दिल्ली प्रवास के दौरान वे केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के विकास और समन्वय से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी 7 जून को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व के 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस उपलक्ष्य में देशभर के साथ छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ शासन को विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 2 महीने में पूरे करने के लिए निर्देश दिए हैं। एक याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि राज्य में 49,000 से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए करीब 4,000 विशेष शिक्षकों की जरूरत है। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि 848 स्वीकृत पदों में से 62 शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 155 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और 85

0: संबंधी विशेष शिक्षकों को स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत होने का अवसर दिया जाए। छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल द्वारा प्रदेश के सभी डाकघरों में कल और परसों यानी 25 और 26 मई को अल्प बचत खाता खोलने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान कोई भी नागरिक अपने नजदीकी डाकघर जाकर या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकृत एजेंटों के माध्यम से अल्प बचत योजनाएं जैसे मासिक आय योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि में निवेश कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव कार्यक्रम का आज ऐलान होगा। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, युवा कांग्रेस के प्रभारी अमित पठानिया सहित युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। और अपेक्ष मौसम का हाल, प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद सहित प्रदेश के 18 जिलों में एक दो स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान गर्म हवा चलने और अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। कल प्रदेश में सबसे अधिक 46 डिग्री सेल्सियस तापमान राजनांदगांव में दर्ज किया गया। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और आम लोगों को घबराकर अतिरिक्त खरीदी करने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के स्कैन कॉपी प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। रायपुर पुलिस ने पंजाब से ड्रग की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 56 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है। जांजगीर के करही गांव में करीब एक महीने पहले हुए गोलीकांड के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और बलौदाबाजार भाटापारा जिले में जिला शिक्षा अधिकारी ने 2 सहायक शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। दोनों पर कर्तव्य पालन में लापरवाही बरतने का आरोप है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। डीजीसीए ने नई गाइडलाइन जारी की, अब एयरपोर्ट पर रेल बनाने पर प्रतिबंध। प्रदेश के सभी डाकघरों में कल और परसों अल्प बचत खाता खोलने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। और मौसम विभाग ने प्रदेश के अनेक जिलों में अगले 48 घंटों के दौरान लू चलने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आप सुनेंगे समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों और दुनिया के कई हिस्सों पर दोनों देशों के हित एक समान है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि मौजूदा जटिल समय में भी बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चर्चा खुले मन से की जाएगी और सार्थक रहेगी। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 8वें चरण में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 31,065 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रजाक मोल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्ज़ियोंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्ज़ियोंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति और सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिचके ने बताया कि चार आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके इलाज के लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसीजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई किया। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा यादों की महफिल। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

धरती कहे पुकार के इस फिल्म का दो गाना आपने सुना, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजें थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मजरू सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी, अभिमान फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर और मनहर की आवाजों में। आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

वो चांद मुस्काया बेचारे शर्माए, हमारा भी जीना मचलने लगे जो हाथ

आप सुन रहे थे आकाशदीप फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को शुरू में ढाला चित्रगुप्त ने। गंगा की लहरें इस फिल्म का गीत है। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में।

0: एसडी वर्मन की तर्ज थी आशा भोसले की आवाज। बंबई का बाबू फिल्म का ये गीत था, रचना मजरू सुल्तानपुरी की थी।
1: सुनिए
2: कहिए
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

रेडियो सुल्तानपुरी के बोल थे लता मंगेशकर की आवाज़। ममता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, रोशन की तर्ज थी। और इस गीत के पहले श्रोताओं, हमने आपको सुनवाया बाबू फिल्म का गीत, किशोर कुमार अलका याग्निक की आवाज़ें थी। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, राजेश रोशन का संगीत था।

0: बाहर आने तक इस फिल्म का गीत आपने सुना, अनुराधा पौडवाल, पंकज उदास और साथियों की आवाजें थी, राजेश रोशन की तर्ज थी। और श्रोताओं, यही थी हमारे आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। तो अपने रेडियो सेट को श्रोताओं जरा करीब लाइए, सुनिए कि आपको पुकारता है विविध भारती पर प्यारे प्यारे गीतों का कार्यक्रम सुरीला सफर, जहां होती हैं हमारी इबारतें और आपकी बातें, थोड़ी थोड़ी सी तलखी, कुछ कुछ प्यार, थोड़ा तकरार और बेशक हम और आप मिलकर तय करते हैं सुरीला सफर। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में। साथियों, एक मौसम दिल का भी होता है, इसी की बात हमने आज की इबारत में की है। तो आपके लिए पढ़ देते हैं आज की इबारत। वैसे हमारे जो फेसबुक के साथी हैं वो तो देख ही चुके हैं कि आज की क्या इबारत है, और जो साथी नए जुड़ने वाले हैं उनसे हम बता दें कि आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.facebook.com/vbsmumbai और इस पते पर भेज सकते हैं।

हैं अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं। और अब ये है आज की इबारत, दिल का मौसम खुशगवार हुआ और कहने लगा मेरे दिल जरा लहरा के चल। आशिकाना मौसम कहता है इनसे शायद पहले सपनों में मिले थे, ये बिंदिया जब जब चमकती है दिल से एक आवाज आती है कि ये तो तस्वीर है और तस्वीर में वो बात कहाँ, कायनात को देखो तो जीने की तमन्ना जाग उठती है, काश कुदरत भी बोलती और कहती कि हमें भी तुमसे कितना प्यार है, खोलती ऐसे राज दिल जिन्हें छुपाना मुश्किल होता है, ऐसे में मुमकिन है कोई खफा हो जाए, फिर मिलने के बहाने कुछ सूझे और घर से निकल पड़े, दीवाना बनकर ढूंढा उनको जो बादलों की तरह बेकरार कर जाते हैं और कहते हैं अच्छा तो चलते हैं। साथियों, एक मौसम दिल का भी होता है जो जरूरी नहीं कि इस मौसम के साथ साथ चले, ये तो दिल का मौसम है, कभी खुशियों में लहराता है तो कभी रूठों को मनाता है, मन के फूल खिलाता है और सबको प्यार सिखाता है। तो चलिए चलते हैं आज इस अलबेले सफर पर, देखते हैं कि इस सफर पर आज किस किस से मुलाकात होती है। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है सुनने वालों को, संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

और देखा भी नहीं जाता था कि भाई फासला कितना है, यानी फासला थोड़ा भी हो सकता था, ज्यादा भी हो सकता था। तो साइकिल के बारे में आपका क्या कहना है, साइकिल से जुड़ी हुई बातें अगर आप चाहें तो हमसे जरूर साझा करें। आप सुन रहे थे जॉय मुखर्जी पर फिल्माया ये गीत, जो हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है, इशारा फिल्म का ये गीत था। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी की तरह आप सुन रहे थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, आज खुशगवार मौसम में प्रकृति की खूबसूरती के दिलों की बात होने वाली है। ये बिल्कुल सही है, इसलिए तो कहा गया है कि अगर मन चंगा हो तो कठौती में भी गंगा बसती हैं। यही कारण है कि उदास मौसम आज की इबारत में ढूंढते रह जाओगे वाली बात नजर आती नहीं आ रही। आपने इशारों इशारों में सब कुछ लिख दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने कुछ गीत भी सुझाए हैं। वैसे हमारे सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो अपना कीमती समय हमारे कार्यक्रम को देते हैं। और हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि दिल, मौसम, आशिकाना, बिंदिया, आवाज, तस्वीर, शायद, कायनात, तरन्नुम, तमन्ना, कुदरत, प्यार, राज, मुश्किल, मुमकिन, खफा, बहाना, घर, दीवाना, बादल, बेकरार, अच्छा, चलते, और कुछ गीतों की सूची भी इन्होंने दी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सभी श्रोता मित्रों को प्रणाम, आइए चलते हैं विविध भारती के सुरीले सफर में कुछ रोमांटिक, कुछ ठंडे गीतों से इस दोपहरी को यादगार बनाते हैं। वैसे तो सूर्य देवता अपनी तपिश से सारी दुनिया को जलाने की ठान कर बैठे हैं, हमारी विविध भारती ने भी ठान रखा है अपने गीतों की ठंडक से सबका मनोरंजन करने का। बस इंतजार है 1 बजे का। जी हाँ, तो कार्यक्रम शुरू हो चुका है, और अगर आप नहीं सुन रहे तो बस फटाफट आ जाइए रेडियो के पास, और कार्यक्रम तो शुरू हो चुका है। और एक और श्रोता लिखती हैं, आपकी जो पंक्तियां प्रेम के उस अनंत सफर का दर्पण है, जहां हर मौसम एक नई दास्तान सुनाता है, आंखों में सजे सपने, बिंदिया की चमक और कायनात की खूबसूरती मिलकर एक ऐसी गूंज पैदा करते हैं जो सीधे दिल को छू लेती है, बादलों की तरह बेकरार करके जाने। और अच्छा, तो हम चलते हैं का वो आखिरी मोड़ दिल को एक खूबसूरत की कसक और उम्मीद से भर देता है। ये एहसास दिलाता है कि भले ही दूरियां हों, लेकिन इंतजार का ये सफर अपने आप में कितना हसीन है। जी हाँ, और बिल्कुल इस तरह हसीन है दिल का सफर, जब मन होता है दिल किसी और भी निकल लेता है, जहाँ दिल को सुकून मिलता है। और ऐसा ही सफर आज कुछ हम तय कर रहे हैं।

शादीशुदा साइकिल की यादें तो आपको बतानी ही हैं, साथ साथ आप ये भी बताइए कि ये जो गीत है वो एक टेंट के पास फिल्माया गया है, ऐसी कोई याद आपकी है क्या? क्योंकि टेंट में भी आपने कभी न कभी रात या दिन जरूर बिताए होंगे।

ये जो आखिर में आप सुन रहे थे संगीत, ये पंछी की उड़ान यानी उसके पंख की आवाज थी श्रोता। और ऐसा शायद कभी आपके साथ भी हुआ हो कि आपने भी टेंट में रात बिताई हो या दिन बिताया हो या कहीं गए हो, खासकर अगर आपने पहाड़ों की सैर की है तो आप हमें ऐसे अनुभव बता सकते हैं, साझा कर सकते हैं। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि खुशनुमा मौसम मन को सुकून देता है, हल्की ठंडी हवा, खिलते फूल और बादलों की छांव दिल को नई उमंग से भर देती है। ऐसे मौसम में पुरानी यादें और दिल में बसी कोई खास तस्वीर बार बार मुस्कुरा उठती है। दिल में बसी तस्वीर केवल किसी चेहरे की नहीं होती बल्कि उन प्यारे लम्हों की भी होती है जो जिंदगी को खास बना देते हैं। प्रकृति का सुंदर रूप इंसान को जीवन की भागदौड़ से कुछ पल राहत के देता है और मन को शांति का एहसास कराता है, और खुशगवार मौसम उन यादों को और भी खूबसूरत बना देता है। जी हाँ, और तभी तो हम ऐसे मौसम में खास प्रकृति की ओर चल देते हैं, और तब हम ये नहीं देखते कि मौसम कौन सा है, क्योंकि हमारे दिल का मौसम जो कह रहा होता है कि भाई अब चलिए कहीं और चलें। एक हमारी और श्रोता बताती हैं, जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा के पास एक साइकिल थी, उसे साइकिल पर बैठकर हमारे पापा सभी को स्कूल छोड़ देते थे। मुझे और मेरे दो भाइयों को मेरे पापा साइकिल पर ले जाया करते थे, और पूरी फैमिली 5 जने साइकिल पर ही जाया करते थे, कहीं भी जाते थे। और फिर जब मैं 12वीं कक्षा में आई तब मुझे स्कूल की साइकिल मिली थी, तब मैं साइकिल चलाया इन्होंने, और इन्हें बहुत खुशी हुई। क्या बात है। एक और श्रोता लिखती हैं कि जब पैर पैडल पर होते हैं और ठंडी हवा चेहरे को छूती है तो ऐसा लगता है कि मानो हम वक्त से थोड़ा आगे निकल आए हैं। साइकिल की सवारी सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया मात्र नहीं बल्कि ये अपने आप में एक एहसास है। बचपन की पहली आजादी के एहसास से लेकर आधुनिक दौर में पर्यावरण को बचाने के आंदोलन तक साइकिल हमेशा से इंसानी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा रही है। एक और श्रोता लिखती है, सुंदरता आईने में नहीं इंसान के स्वभाव में दिखाई देती है। चेहरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर दिल खूबसूरत ना हो तो सुंदरता अधूरी लगती है। असल खूबसूरती मुस्कान, सच्चाई और अच्छे व्यवहार में छुपी होती है जो दूसरों के दिलों में जगह बना लेती है, वही सच में सबसे सुंदर होता है। सुंदरता रंग या चेहरे से नहीं, इंसान की सोच और

उसकी सादगी से पहचानी जाती है। और कुछ लोग साधारण दिखकर भी बहुत खूबसूरत लगते हैं क्योंकि उनकी रूह बहुत सुंदर होती है। जी हाँ, जब रूह सुंदर होती है तो ज्यादातर देखने में ऐसा आता है कि मौसम चाहे जो भी हो, लोग चाहे जैसे भी मिले, बातें चाहे कोई भी कहीं जाए, लेकिन सुंदर लगता है और सब कुछ अच्छा लगता है। मन अच्छा है तो सब अच्छा लगता है और यही है दिल का मौसम। एक और श्रोता लिखते हैं, वाकई में दिल का मौसम खुशगवार हुआ था जब मैं स्वयं परिवार सहित जून 2024 में कश्मीर गया था। मौसम तो आशिकाना था ही और धर्मपत्नी की बिंदिया जब चमकती थी और मेरे दिल की आवाज भी लहरा कर कहने लगती, हर पल मजबूर था कि कश्मीर कुदरत का नायाब करिश्मा है। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। जी हाँ, अगर फिरदौस बर्रोए ज़मीं अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो।

इस गीत के संगीतकार आपको बताने हैं श्रोताओं, और पाकीज़ा फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था, मीना कुमारी पर फिल्म आया गया, उस गीत के संगीतकार अगर आप बता दें तो क्या ही बात है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, क्या बात है, आपने जिस खूबसूरती से पुराने सदाबहार गीतों की पंक्तियों उनके भावों और उनके मुखड़ों को एक धागे में पिरोया है, उसे पढ़कर दिल सच में बाग बाग हो गया। ये सिर्फ एक पैराग्राफ नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर गुल्जन एरा का एक म्यूजिकल सफरनामा। आपके इस खूबसूरत पैराग्राफ को खंगालने के बाद आज के मुख्य शब्द जो हैं और उन पर आधारित सदाबहार गाने कुछ इस तरह निकल कर आते हैं, और बहुत सारे गीतों की बात इन्होंने लिखी है उसमें से बहुत

सारे गीत जो हैं वो मिलते भी हैं। जी हाँ, इनमें ये गीत भी है, मौसम है आशिकाना। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि बचपन में खूब साइकिल चलाई, बहुत बार साइकिल से गिरा, चोट खाई, पर साइकिल की सवारी नहीं छोड़ी, अब साइकिल की जगह स्कूटर ने ले ली है। एक और हमारी श्रोता ने लिखा है कि हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी पहली साइकिल मुझे 1974 में मिली, जब कक्षा 8वीं में था, वो भी सेकंड हैंड 75 रुपए में खरीदी गई थी। जी हाँ श्रोताओं, और आगे लिखते हैं कि उस समय लगा जैसे मुझे

जब आती हैं तो कुछ ऐसा ही होता है, और खासकर जो साइकिल थी उसका क्रेज तो कुछ अलग ही था। एक और श्रोता लिखते हैं कि इस गीत में कलाकार जॉय मुखर्जी, यानी पहले गीत की इन्होंने बात करी है, मुखर्जी साइकिल पर सवार हैं, और जिन लोगों को पेट्रोल डीजल की कीमत ज्यादा लग रही है वो साइकिल पर सवार हो सकते हैं। जी हाँ, जहां तक कीमत की बात है, वो प्रकृति से तो उसकी तुलना नहीं की जा सकती। साइकिल पर सवारी प्रकृति को पूरी तरह से महफूज रखती है, तो अक्सर जब हम साइकिल चलाते हैं तो इस बात का जरूर हमें ख्याल रखना चाहिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि सपनों की दुनिया और खुशगवार मौसम में प्रीतम से मिलन अत्यंत भावपूर्ण मिलन श्रृंगार होता है, जहां प्रकृति और प्रेम का अद्भुत सामंजस्य होता है। ठंडी हवाओं का चलना, बादलों का अदखेलियां करना, एक संगीतमय मादकता वातावरण में घुली सी जाती है। प्रिय का स्वप्न में आना प्रेमियों के मन में विरह की पीड़ा को मिटाकर एक अलौकिक आनंद की अनुभूति से भर देता है। एक और श्रोता लिखते हैं, कुछ गीत सुनकर ऐसा लगता है जैसे दिल को सुकून की बारिश मिल गई हो। कुछ गाने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और दिल में ढेर सारी शांति छोड़ देते हैं। कुछ धुनें सुनते ही पुरानी यादें धीरे से सामने आ बैठती हैं। ऐसे गीत सुनकर लगता है जैसे कोई बहुत अपना पास बैठा हो। कुछ गाने दिल को इतना अच्छा लगता है कुछ गाने इतने अच्छे लगते हैं कि उन्हें बार बार सुनने का मन करता है। जैसे नीले गगन के तले जिस पथ पर चला, छोड़ दे सारी दुनिया, और ये सारे गीत इन्होंने लिखे हैं, जो गीत इन्होंने अंदाज लगाए। वैसे हमारे आज जो श्रोता लोगों ने गीतों की जो लिस्ट भेजी है वो जबरदस्त है, और उसमें बहुत सारे गीत जो हैं आज के कार्यक्रम से मिलते हैं।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज आप सुन रहे थे दो रास्ते फिल्म का ये गीत। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं को लिखना बाकी है कि हमने पूछा था इस जोड़ी की आखिरी फिल्म कौन सी है। कुछ एक श्रोताओं ने प्रेम कहानी के बारे में लिखा है, देखते हैं क्या है। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं कल से एक लंबी यात्रा पर हूँ, गाड़ी की चाल तो सीधी रखे हूँ पर दिल लहरा के ही चल रहा है। कुदरत के हसीन नजारों को देखकर दिल का मौसम भी आशिकाना सा हो गया है। हम सबकी तरह कुदरत भी सबसे बोलती है कि हमें तुमसे प्यार है, मगर उसकी ये आवाज कानों में भले सुनाई नहीं देती तो उसे दिल की गहराइयों से महसूस करने पर ही समझा जा सकता है। और ये उसी को महसूस हो सकती है जो प्रकृति को प्यार करे। जी हाँ, तो आप बताइए कि प्रकृति के लिए आप क्या करते हैं? क्या आपने पेड़ लगाए हैं? अगर लगाए हैं तो वो कितना बड़ा हुआ है हमें बताइए, और किस चीज का पेड़ है। एक इन्होंने ही, जिनका अभी मैंने जिनकी बात पढ़ी, उन्होंने बहुत सारे गीतों की बात करी है। पहले मिले थे सपनों में, दिल लहरा के चल, बिंदिया चमकेगी, जो बात तुझ में है, देखते हैं कौन सा गीत आता है। तो एक और श्रोता लिखती हैं, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, लेकिन दिल का सफर तो सभी जान लेते हैं, सभी समझ लेते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैडम जी, आज के सुरीले सफर में सभी फेसबुक साथियों के साथ पुष्पमाला पहनकर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। 10 बजे के तापमान 31 डिग्री पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्य स्थल पर तैनात होकर शाम अवकाश होने तक अपना कार्य पूर्ण कर सकुशल अपने परिवार के साथ खुशियां मनाएं, और शुभकामनाएं लिखी हैं इन्होंने। एक और श्रोता लिखती हैं कि 2 दिन से सच में दिल का मौसम खुशगवार बना हुआ है, हालांकि गर्मी का कहर बना हुआ है, लेकिन अपने परिवार के साथ धार्मिक यात्रा करना एक आत्मिक शांति देता है और दिल कहल उठता है, मौसम है आशिकाना। भाई, हमारे तमाम श्रोताओं ने बहुत सारी अपने दिल की बातें लिखी हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में स्कूल की तरफ से एनसीसी कैंप राजगीर में लगा था, उस दौरान एक रात टेंट में गुजारनी पड़ी थी, बहुत मजा आया था। जब अपने दोस्तों के साथ पहली बार घर से बाहर एक टेंट में रात गुजारी, वो दिन आज भी बहुत याद आता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सपनों में आना, दिल में समाना, प्यार किया है तुम बताना। और इन्होंने और भी बहुत सारे गीत लिखे हैं, और वैसे आप कोशिश करिए कोई ना कोई गीत तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें से तो कोई गीत नहीं मिलता। अपनी कोई यादगार तस्वीर आप बता सकते हैं।

रोशन की तर्ज थी फिल्म ताजमहल का ये गीत आप सुन रहे थे। प्रदीप कुमार पर फिल्माया गया, साहिल उद्यानवी की रचना थी। हमारी श्रोता ने लिखा है कि तस्वीर कभी पुरानी नहीं होती, जब देखो उतनी ही नई नकोर लगती है, मगर तस्वीर में वो बात कहाँ जो तुम में है। ये सारी प्रकृति को देखो तो जीने की तमन्ना बरबस सिर उठाने लगती है। काश ये पेड़ पौधे भी बोलते, हमसे कुछ कहते, हम सब नहीं जानते कुदरत अपने कितने अंदर कितने राज समेटे हैं। आप चाहे जितना सोच लीजिए इस जीवन के बारे में, मगर बिना प्रकृति से जुड़े कुछ भी संपूर्ण नहीं है। ये बादल, ये दीवानापन, ये बेकरारी और कुछ अंतहीन सपनों के साथ आज चलते हैं एक और सुरीले सफर पर। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आपकी सुगम और सुंदर लिखावट देखकर मौसम के साथ दिल भी आशिकाना बन गया है। कुदरत का प्यार, जन्नत की तस्वीर जीने की तमन्ना बढ़ा रही है। यही आस नाराज बादलों का छुपा हुआ राज जानकर उन्हें सपनों में नहीं तो धरती पर सचमुच का सुरीला सफर करने को कह रही है। और कुछ गीत भी इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता लिखती हैं, ये मौसम रंगीन समा, और कुछ गीत इन्होंने लिखे हैं, बिंदिया चमकेगी वगैरह। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज तो दिल का मौसम खुशगवार हो जाएगा, दिल भी झूम उठेगा और कहेगा लहरा कर चल दिल्ली में, क्योंकि गाना ही दिल्ली में फिल्माया गया है। खैर, पैराग्राफ को पढ़कर ही पैर थिरकने लग गए हैं कि कौन से गीत बजेंगे। मौसम तो बहुत गर्म हो रहा है, लेकिन इन्होंने और भी अपनी बातें लिखी हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं और दिल का मौसम जैसे गीत आज की इबारत में शामिल हो सकते हैं। जी अभी चलने का समय नहीं हुआ है श्रोताओं, तो आप चलिए नहीं बल्कि कार्यक्रम से जुड़े रहिए। एक और हमारे श्रोताओं के बहुत सारे कमेंट्स हैं।

वहीदा रहमान जी पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म गाइड से, और आपको बताना है कि इसका जो आखिरी अंतरा है वो किस ऐतिहासिक किले में फिल्माया गया है। और एक और हमने आपसे पूछा था कि क्या आपके दिल का मौसम कभी ये कहता है कि राजस्थान चलें और ऊंट की सवारी करें। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी लिखी हुई इबारत के चौथे नंबर का लिखा हुआ गीत भी शामिल, जो बात तुझ में है, और मेरी इबारत के बैक टू बैक दो गीत शामिल हुए, तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि जी हमने कई पेड़ लगाए हैं और अभी जरूर लगेंगे। हमारे घर में हमने गमलों में भी बहुत सारे पौधे लगाए हैं। सुबह सुबह जब उठकर फूलों को खिला हुआ देखते हैं तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और रोज मन भावन को भी अपने जो है घर का फूल चढ़ाते हैं, भगवान को भी। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मैंने आम का पौधा लगाया था, 5 साल हो गए, आज बहुत बड़ा हो गया है, मालदा आम भी लगाए हुए हैं। जी हाँ, आम का तो मौसम। और एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत सुंदर है, खूबसूरत गानों की तरफ इशारे भी कर रही है, समझ में तो आ रहे हैं पर मैं लिख नहीं रही हूं, सुनने का ही मजा लूंगी।

ऐसा मत कीजिए, आप लिखिए भी जरूर। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं, लाहौर जाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ और निकलने वाला हूँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और श्रोता लिखते हैं, मौसम खुशगवार हो ना हो सपनों में मिलेंगे, तस्वीरों से बात करेंगे तो आशिकाना दिल लहरा के चलेगा, कुदरत के ललाट पर सूरज रूपी बिंदिया चमकती है, कायनात के इस रूप को देख जीने की तमन्ना उठती है, राज दिल छुपाना मुश्किल होगा तो बहाने से बताएंगे कि बादल बेकरार होके दीवाना होकर बरसेगा। और बहुत लंबी इबारत है।

सुरीला सफर कार्यक्रम का ये गीत आप सुन रहे थे कुदरत फिल्म से। किशोर कुमार की आवाज में हेमा मालिनी और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया ये गीत था। मजरू सुल्तानपुरी के बोलते राहुल देव बर्मन की तर्ज थी। एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि हमारे यहाँ का मौसम बड़ा खुशगवार है, गर्मी भी है और धूप भी और मंद मंद हवा के झोंके भी आ रहे हैं, क्या पता शाम तक बारिश भी हो जाए। कुल मिलाकर सफर गीतों के साथ

जिंदगी का भी सुहावना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि कोरोना काल में ली गई साइकिल जैसे जीवन का हिस्सा ही बन गई। सुबह शाम एक दो घंटे जब तक साइकिल न चलाऊं चैन ही नहीं आता। सेवानिवृत्ति के बाद टाइम पास करने के लिए बहुत अच्छा साधन है। जी हाँ, टाइम पास की जहां तक बात है वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इससे जो एक एक्सरसाइज होती है वो बड़ी अच्छी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि वैसे अभी मौसम तो खुशगवार नहीं है, लेकिन दिल का मौसम तो हमारे हाथ में है। सुरीला सफर में गाने सुनकर मौसम खुशनुमा हो जाएगा। आज ऐसे भारत में बहुत से गाने नजर आ रहे हैं और कुछ गीतों को भी इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं, साइकिल चलाना मैंने कभी नहीं छोड़ा, आज भी साइकिल से बाजार घूमने जाता हूँ, घुटनों का व्यायाम हो जाता है। एक और श्रोता लिखते हैं, पाकीज़ा फिल्म के संगीतकार गुलाम मोहम्मद थे और इस फिल्म के रिलीज होने से पहले जो थी वो मीना कुमारी नहीं रही। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैंने बहुत साइकिल दौड़ाई है दिल्ली में, पूरा रिंग रोड नाप दिया जो पूरे दिल्ली के क्षेत्र को जोड़ता है।

श्रोताओ, आप फिल्म पहचाने और संगीतकार बताएं, और ये भी बताएं कि आपको कभी ऐसा लगा कि किसी खास जगह को ढूंढने में आपको काफी मशक्कत करनी पड़ी।

हमारे श्रोताओं ने इस गीत के बारे में भी लिखा है। सूरज और चंदा फिल्म का गीत है, मोहम्मद रफी की आवाज में, और रीता अक्सर और संजीव कुमार पर फिल्माया गया ये गीत था।

आपको भी कभी ऐसी मशक्कत करनी पड़ी श्रोताओं क्या, किसी खास जगह को ढूंढने में, किसी जगह पर जब आप पहली बार गए? एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऊंट की सवारी तो प्रायः सभी समुद्री तट पर उपलब्ध है और पूरी मेरे घर से 80 किलोमीटर दूरी पर है, बच्चे भी तो ऊंट की सवारी किए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि बिल्कुल आपने जैसा पूछा, मौसम तो होते ही हैं प्यारे, हर मौसम की अपनी अलग विशेषता है और पकवान भी। सर्दियों की प्रतीक्षा रहती है हमें, क्योंकि हमारे लखनऊ में निमिष सर्दियों में ही तो मिलता है। एक और श्रोता लिखते हैं, राजस्थान में ऊंट की सवारी यहाँ के पर्यटन का एक मुख्य और बेहद खूबसूरत आकर्षण है। थार मरुस्थल के सुनहरे रेतीले टीलों के बीच ऊंट पर बैठकर सूर्यास्त या सूर्योदय देखना एक जीवन भर न भूलने वाला अनुभव होता है। ऊंट पर बैठते और उतरते समय थोड़ा सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि जब ऊंट अपने पैरों पर खड़ा होता है या बैठता है तो आगे और पीछे की तरफ एक जोरदार झटका लगता है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मौसम किसे प्यारे नहीं लगते, हमें तो नवंबर और फरवरी के महीने का मौसम बड़ा प्यारा लगता है जब सर्दी थोड़ी सी कम रहती है। ऐसे मौसम में हाथ डाले दूर तक चलने में आनंद आता है, जब चांदनी रात हो।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है, राजस्थान तो नहीं गई लेकिन अभी हाल में गुजरात के दीव में हमने ऊंट की सवारी की, थोड़ा डर भी लगा जब वो खड़ा होता और फिर बैठता है। एक और श्रोता लिखते हैं, फिल्म गाइड का गीत मेरी लिस्ट का पांचवा गीत है। एक लिखते हैं कि चित्तौड़गढ़ फिल्म में किले में फिल्माया गया ये गीत है। एक और श्रोता ने लिखा है, बचपन के दिनों में हमारे पास ऊंट होता था जो कुएं से पानी निकालने का काम के काम आता था और हम उस पर बैठकर घर से खेतों में और वहां से फिर घर आते थे। एक और श्रोता लिखती हैं कि हाँ, मेरा जाने का मन तो करता है राजस्थान, कभी शायद जा पाऊं। एक और श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर और पुष्कर में हुआ था गाइड फिल्म का फिल्मांकन।

मिलो सजना इस फिल्म का गीत राजेश खन्ना और आशा पारेख पर फिल्माया गया। आपके सभी कमेंट्स, सभी प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: मित्रों, हम सभी अपनी जिंदगी में एक ऐसी जगह बना लेते हैं जहां हमें डर नहीं लगता, जहां सब कुछ आसान लगता है, जहां कोई जोखिम नहीं होता। उसी जगह को हम कंफर्ट जोन कहते हैं। लेकिन सच ये है कि जहां आराम शुरू होता है वहां तरक्की रुक जाती है। जरा सोचिए, अगर एक छात्र सिर्फ वही पढ़े जो उसे आसान लगता है तो वो कभी नई चीजें नहीं सीख पाएगा। अगर कोई खिलाड़ी सिर्फ आसान अभ्यास करे तो वो कभी महान खिलाड़ी नहीं बन सकता। अगर कोई इंसान हमेशा डर के कारण नए अवसर छोड़ता रहे तो वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। याद रहे, सफलता, आत्मविश्वास और बड़े सपने हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलते हैं।
1: सुनो तो जरा, हमको है ये कहना, वक्त है क्या?

अगर जिंदगी में हमें कुछ बड़ा हासिल करना है तो डर और आराम दोनों को छोड़ना पड़ेगा। बेशक कंफर्ट जोन एक खूबसूरत जगह है, लेकिन वहां कभी ग्रोथ नहीं होती। तमाम उदाहरण हैं सफल लोगों के, जिन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ही सफलता हासिल की है, अपनी काबिलियत से देश दुनिया में इतिहास रचा है, संघर्ष किया है। अगर ये लोग डर जाते, मेहनत से बचते या आराम चुनते, तो शायद आज पूरी दुनिया इन्हें नहीं जानती। सच तो ये है कि डर हमेशा कंफर्ट जोन के दरवाजे पर खड़ा रहता है। हमें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे अगर हम असफल हो गए तो, अगर हमसे गलती हो गई तो। लेकिन हमें याद रखना होगा, गलतियां इस बात का सबूत हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं। असफलता बुरी नहीं होती, कोशिश छोड़ देना बुरा होता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें गिरना भी पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा और खुद को बदलना भी पड़ेगा। अगर उड़ना है ऊंचा तो घोंसले की आरामदायक दुनिया छोड़नी ही पड़ेगी।

मित्रों, जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धियां हमेशा डर के दूसरी तरफ मिलती हैं। कहते हैं, आराम इंसान को कमजोर बना देता है और संघर्ष इंसान को महान बनाता है। सफलता कभी भी आरामदायक बिस्तर पर लेटे हुए लोगों को नहीं मिलती। सफलता उन्हें मिलती है जो रातों को जागते हैं, गिरते हैं, हारते हैं, लेकिन फिर उठकर लड़ते हैं। हमें खुद को पहचानना होगा और अपने सपनों के पीछे पूरी ताकत से दौड़ना होगा, क्योंकि जो अपने डर पर जीत हासिल कर लेता है, दुनिया पर वही राज करता है। अगर तूफानों से लड़ने का जुनून हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। साथियों, जिंदगी में बदलाव तभी आता है जब हम खुद को चुनौती देते हैं। एक बीज अगर मिट्टी के अंदर सुरक्षित रहना चाहे तो वो कभी पेड़ नहीं बन सकता। पेड़ बनने के लिए उसे मिट्टी फोड़नी पड़ती है, अंधेरे से बाहर आना पड़ता है, बारिश और धूप सहनी पड़ती है। उसी तरह इंसान को भी संघर्ष से गुजरना ही पड़ता है। तो आप भी बड़े सपने देखिए, खूब मेहनत कीजिए, हिम्मत के साथ डर का सामना कीजिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाइए।

साथियों, जिंदगी आसान रास्तों से नहीं, चुनौतियों से महान बनती है। इसी के साथ संपन्न होती है आज की त्रिवेणी।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
4: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
3: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में हैं कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
4: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में।

0: और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहाँ के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
2: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमरीका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमेरिकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करस्योंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। करस्योंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करस्योंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। सीबीएसई के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष

दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि चार आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे

0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। यह धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शानशी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच 3 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्ज आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के यूकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
2: आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्र कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए।

0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले पांच दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। खुशी पलों में होगा कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: तलत महमूद की आवाज में सुजाता फिल्म का गीत था, मशहूर सुल्तानपुरी का लिखा, संगीत सचिन देव बर्मन का था।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला राहुल देव बर्मन ने। किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल सुरों में आप सुन रहे थे दो चोर फिल्म का गीत।

मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला चित्रगुप्त ने। लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म थी ऊंचे लोग। विविध भारती से आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

0: ये तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब।
1: पेइंग गेस्ट फिल्म में किशोर कुमार की आवाज आपने सुनी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी।
2: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता, घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
3: तुम इसको खेल समझे हो मगर एक

0: मोहब्बत इसको कहते हैं इस फिल्म का गीत था, मुकेश और आशा भोसले का गाया, मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला खयाम ने।
1: तस्वीर तेरे दिल में जिस

फिल्म माया का दोगाना था मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया, मजनू सुल्तानपुरी के बोलों को सुर में ढाला सलील चौधरी ने। यही थी आज के सदाबहार कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। श्रोताओं,

नमस्कार श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 और 30 सेकंड हुए हैं। हम हाजिर हैं लेकर आपका पसंदीदा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत। तमाम व्यस्तता के बीच कहीं दोपहर में ठंडे शरबत की ताजगी है और खस की खुशबू और ऐसी ही ताजी हवा के झोंके सा आपके चुने हुए गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत आ चुका है आपके रेडियो सेट पर। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आज मनचाहे गीत कार्यक्रम में किन किन श्रोताओं के मनचाहे गीत शामिल हो रहे हैं। मनचाहे गीत प्रोग्राम में अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

नाम सोमनाथ कालिया और इस गीत को सुना चाहते थे जिला अहमदनगर बालम टाकली से नंद कुमार अदवंत, उर्मिला अदवंत, नीलेश अदवंत, मयूरी अदवंत, कल्पेश अदवंत और संगीता अदवंत।

एक बार मुस्कुरा दो इस फिल्म में आशा भोसले मुकेश की आवाजें आपने सुनी। एसएच बिहारी के बोलों को सुर में ढाला ओपी नैयर ने। इस गीत को सुनना चाहा दारागंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश से गंगाराम पांडे, तीर्थराज पांडे, दिलीप शर्मा, ध्रुवराज पांडे और इनके बहुत से साथी। इसी गीत को सुनना चाहा सिकंदर अली खान, बदुद्दीन शमसुद्दीन की बाड़ी के पास से, और ये पत्र आया बीकानेर राजस्थान से। एक और श्रोता ने इस गीत की फरमाइश की जिला अमरावती से, प्रवीण नगर से। ये हैं चंदू हातोले, सीमा हातोले, गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से, बीपी गौतम, सरिता, अनन्या, कुश, रिंकू टिंकू, रीना, ऐश्वर्या, श्रेय, आप सभी की फरमाइश थी।

खयाम की बनाई तर्ज पर इस गीत को गाया लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यशदास ने। त्रिशूल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। शाहिर लुधियानवी का लिखा। रामलीला मैदान सचिंदी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, मीनू त्रिपाठी और शिवांश अनूप सिंह और अभिजीत सिंह की ये फरमाइश थी। हेतु रांची से प्रवीण कुमार और इसी गीत को सुनना चाहा गुरई बुरीवली वेस्ट मुंबई से अंशिका ने। आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम मनचाहे गीत।

चोर मचाए शोर इस फिल्म का दो गाना था मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के। गणेश कुमार की फरमाइश है ये पुणे से, और भरत यादव काजल शर्मा विकास

लीलाबेन, स्मिताबेन, भारती, निधि, सेजल, मनाली ने, ये हमारे श्रोता थे तेलहारा महाराष्ट्र से। और अब आज के मंच है गीत कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

ये गीत आप सुन रहे थे द ट्रेन फिल्म से, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी, और इस गीत की फरमाइश की हंडीखेड़ा सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, कलाना राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी, आसमानाज अंसारी, और इसी गीत की फरमाइश की।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग आज के प्रोग्राम में सुनिए उषा सक्सेना का लिखा नाटक चंदन वृक्ष।

0: बाहर जल्दी कीजिए, हमें भी बाहर जाना है।
1: मेरी भी कॉल लगने वाली है।
2: हाय फ्रेंड्स।
1: हाय,
2: क्या चल रहा है?
1: फिलहाल तो चाय और समोसे चल रहे हैं। अब आप आ गए हैं तो
2: चलो सुमित, उधर बैठते हैं खिड़की के पास।
3: वहाँ क्यों?
2: अरे भाई, आज शनिवार की शाम है, कोई डिनर के लिए जाएगा, कोई लोकल गार्जियन के यहाँ, कोई पिक्चर जाएगा और कोई शॉपिंग के लिए। तरह तरह की ड्रेसेस और साज सज्जा देखने को मिलेगी। आया जी।
4: हाँ बिटिया,
2: हमारी चाय यही दे देंगे ना?
4: लाई है बिटिया।
2: चल बैठ सुन।
3: अरे यार, तुम्हारी बकबक से तो मेरा सिर दर्द करने लगता है।
2: तो ले चाय पी, एकदम गरम है।
5: अरे सुमी, जरा रेशमा का जूड़ा तो देख।
3: कहाँ? जूड़ा? अरे ये तो एकदम अजंता की मूर्तियों जैसा केश विन्यास है।
2: वो दिन तू
3: कहाँ?
5: तूने शायद शैम्पू किया है।
2: वाह, कितने खूबसूरत बाल हैं।
3: एकदम वर्षा की घनघोर घटाओं की तरह।
2: सुमन, सुमी वो देख, वो देख, सुमन देखो
3: कहाँ।
2: अरे कितनी अच्छी लग रही है
3: सच में।
2: सफेद शरारा सूट और हवा में लहराती सफेद चुन्नी, क्या बात है।
3: अरे यार, ऐसे लग रहा है जैसे कोई हंसनी धीरे धीरे तैरती हुई चली जा रही है।
2: तंग आ गई मैं तुम्हारी कविता से। न कोई थ्रिल है, न कोई एक्साइटमेंट
3: है। क्यों नहीं? अरे तुम तो हो थ्रिल एक्साइटमेंट का जीता जागता रूप। गोरी गोरी दुबली पतली प्यारी सी बालिका, जैसे
2: कटनार की गली, यही कहेगी ना। ले समोसा का।
3: गरम गरम खिला रही हो।
2: हाँ तो फ्रेंड, मिस सुमी आपको अपनी एक नई कविता सुनाने जा रही है। ये कविता इन्होंने अपने प्रिय दोस्त चंदन के लिए लिखी है। वैसे ये भी चंदन जैसी है। पर जरा सांप से बच कर है ना माय डियर फ्रेंड।
3: रीमा तू नहीं सुधरेगी।
2: तो सुनिए आप सब इनकी नई रचना। तो शुरू हो जाइए मिस सुमी।
3: अरे यार समोसा खाने दो।
2: कोई नखरा वखरा नहीं चलेगा, कम ऑन।
3: ओ रीमा, अच्छा अच्छा तो सुन बस। खुशबू बिखेरता महकाता पवित्र करता नंदन, कितना प्यारा कितना सुंदर है ये वृक्ष चंदन। जी चाहता है इसे आंखों में आंज लूं, शब्दों में बांध लूं, मन में समेट लूं, कल्पना से संवार दूं, कर लूं वंदन हे वृक्ष चंदन।
2: लो मेरी तो गाड़ी आ गई भाई, मैं तो चली। चलेगी समी?
3: आज नहीं, भैया आते होंगे, उनका इंतजार करूंगी।
2: ओके बाय बाय फ्रेंड्स।
1: बाय।

0: संगत का असर आ गया है। हाय हेलो नहीं, नमस्ते। आज वो तुम्हारी कबूतरी नहीं आई?
1: कबूतरी? व्हाट डू यू मीन? यू मीन सुमी? देखिए भाई साहब, आप मेरी दोस्त का अपमान कर रहे हैं। अरे थोड़ी भावुक है बस, बच्चों जैसी मासूम है। हंसती है तो सुरीले तार झंकृत होते हैं, बोलती है तो जैसे कोयल कुहकुटती है, और चलती है तो
0: लगता है कोई हाथी झूम झूम कर चल रहा है।
1: अच्छा भैया, फिर आपने उसकी बेइज्जती की?
0: अरे भाई, गजगामनी कहा, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट।
1: अच्छा भाई, तो आप उसकी इतनी बातें क्यों करते हैं? कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है?
0: चक्कर और उससे? अरे बाबा, डर लगता है। आती है तो कहती है, डॉक्टर साहब एक नया गीत लिखा है, सुनिए। क्या करूं, तुम्हारी दोस्त है, झेलना पड़ता है उसे। लिखती है, कितना मोहक कितना सुंदर है इन फूलों का जीवन, हंसना खिलना और शर्माना, महकाना धरती का कड़कण।
1: अच्छा, और क्या कहती है?
0: कहती है, खिलती कलियां झूमती लताएं, तपस्वी से चंदन वृक्ष, सब मुझे बहुत अपने लगते हैं, जिस दिन बाग में न जाऊं वे उदास हो जाते हैं।
1: और आप कहिए तो प्रपोज कर दूं?
0: नहीं रीमा, बहुत भोली है वो, अधखिली अनछुई ओस में नहाई पावन कली की तरह, जिसकी पलकों में न जाने कितने सपने हैं। मैं इंतजार करूंगा।
1: समझ गई भाई साहब, मौका देखकर मैं जरूर बात करूंगी। अभी तो वो भी मगन होगी अपने भैया के साथ।
2: स्वामी बिटिया जी, वो भैया जी आए हैं।
3: अरे भैया, आप घर में सब लोग ठीक तो हैं? और डैडी की तबीयत?
4: बहुत अच्छी, घर में सब लोग अच्छी तरह से। वो तुझे मेरा तार नहीं मिला था क्या?
3: तार वो तो नहीं मिला। खैर अब तो आप खुद ही आ गए हैं, बता दीजिए क्या लिखा था तार में।
4: यही कि रात की ट्रेन से हम लोगों का रिजर्वेशन है।
3: रिजर्वेशन?
4: हाँ, हमें आज ही बांदा जाना।
3: लेकिन क्यों, अभी तो मेरी छुट्टियों में एक महीना बाकी है, और फिर मुझे परमिशन भी नहीं मिलेगी।
4: मैं तुम्हारी वार्डन से बात कर चुका हूँ, तुम जाकर अपनी पैकिंग कर लो, ठीक 8 बजे मैं टैक्सी लेकर आऊंगा।
3: लेकिन भैया अचानक ये सब क्या हो रहा है, मैं इतने दिन क्लासेस कैसे मिस करूंगी? साफ बताओ ना भैया, क्या बात है?
4: तो सच कह दूं? तो सुन, पापा ने तेरे ब्याह की तारीख पक्की कर दी।
3: ब्याह?
4: इसी माह की 25 तारीख को तेरी शादी, और इसीलिए मैं तुझे लेने आया।
3: ये तुम क्या कह रहे हो भैया? देखो भैया, मुझे ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता।
4: ये मजाक नहीं सुनी, सच है, घर में मेहमान भी आने शुरू हो गए।
3: वाह भैया, मुझसे पूछा भी नहीं और सब कुछ तय कर लिया।
4: देख सुमी, परेशान मत हो, तू तो जानती है पापा रिटायर होने से पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेना चाहते हैं। अरे आखिरी का रईस घराना है, लड़का मैकेनिकल इंजीनियर है, 2 बार बाहर भी हुआ है।
3: ओ भैया,
4: सब ठीक ही है। और देख, रही तुझसे पूछने की बात, तो अपने खानदान में ऐसी परंपरा नहीं है, बड़े बूढ़े जो भी ठीक समझते हैं वही करते हैं।
3: हाँ, तभी तो आप भुगत रहे हैं, रईस घराने की लाडली बेटी से पापा ने आपका ब्याह कर दिया, और आपकी जिंदगी।
4: सुमी बस प्लीज, दुख तिरक मत छेड़, सब अपना मुकद्दर है। पर तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उनके घर वालों से मिल चुका हूं, बहुत अच्छे लोग हैं, और लड़के की बहन मंजू वो तो बहुत ही प्यारी। अच्छा सुन, मैं चलता हूं, तू तैयार है ना?
3: सामान बांध लो, सब लाट साहब हैं, मुझसे बिना पूछे ही सब कुछ तय हो गया। कहते थे एमए कराएंगे, और अब भी अभी नहीं कर पाऊंगी, लड़का इंजीनियर है। अरे तो कोई और लड़की नहीं मिली, मेरा ही करियर खराब करना था। चल बेटा, चढ़ जा सूली पर, एक खत तो लिख दूं रीमा को। प्यारी रीमा, तेरे चंदन वृक्ष को सर्प घेरने वाले हैं, मतलब मेरा ब्याह हो रहा है इसी 25 को, पहले से आ जाना, नहीं तो जिंदगी भर नहीं बोलूंगी और नहीं ब्याह करूंगी। सुनी
2: विजया जी, चलिए भैया जी आ गए हैं।

0: अरे सुमित सुमित, देख तेरे बारात आ गई। सुमित, मैं भी तेरा दूल्हा देखा।
1: नहीं रीमा, मुझे छोड़कर मत जा।
0: क्यों?
1: मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
0: अरे घबराहट कैसा? सभी का ब्याह होता है। अरे शीशे में एक बार अपनी छवि तो देख ले, बिल्कुल अप्सरा लग रही है।
1: रीमा छोड़ मुझे। रीमा, शीशे में भी मुझे वही चंदन वृक्ष और उससे लिपटे हुए सांप दिखाई दे रहे हैं। मेरा क्या होगा रीमा?
0: सब बढ़िया होगा। अरे कुछ दिनों के लिए बस अपनी कविताएं भूल जा। अब तू एक नई जिंदगी में कदम रखने जा रही है ना।
1: ठीक है।

0: मैं भी चलूं?
1: अरे बेटा इतनी जल्दी क्यों? शोमी के आने तक रुक जाती बेटी।
0: नहीं अंकल, रुक तो जरूर जाती, पर आज का रिजर्वेशन है और भैया स्टेशन आएंगे।
1: अच्छा बेटी ये बताओ, अंकल शोमी का दूल्हा तुम्हें कैसा लगा?
0: अंकल ये सब ब्याह से पहले पूछा जाता है, जो बिंद गया वही मोती। सुमी खुश रहे, बस यही कामना है मेरी। अच्छा चलती हूँ, सुमी की यात्रा शुभ हो और वो अपनी एक नई जिंदगी में खो जाए।

0: भाभी घूंघट हटा दीजिए और पीछे टिक कर बैठिए। अरे अभी तो कई दिनों तक झुक कर बैठना होगा, है ना भैया? वैसे भाभी है बहुत खूबसूरत। भैया पापा की पसंद की दाद देनी पड़ेगी।
1: खूबसूरत है ये लड़की, वाह क्या कहना है, पारुल दीदी के पैरों की धूल भी नहीं है ये। इसे कह दो मंजू इसे आईएस बनना है, आईएस समझी?
0: जरूर बनेगी भैया, भला तुम्हारा कहना कौन टाल सकता है, है ना भाभी?
2: अरे सुनो सुनो ना मिले ना मिले ना, अरे तार आताई आती दीजिए ना, जोड़ी की आती तार है जोड़ी है, देखो जरा सा।
0: आइए भाभी अब उधर बैठते हैं, आइए भैया
2: तुम भी चलो।
1: नहीं मैं आंगन में जा रहा हूँ भाभी, ताई जी और बुआ जी के पास।
3: मुबारक हो लल्ला जी।
4: अरे भैया दुल्हन है कि एकदम चांद का टुकड़ा,
2: किस्मत वाले हैं हमारे भी भैया।
4: अच्छी हो जी,
0: चाय पी लीजिए भैया, थक गई हूँ।
2: आप लोग अरे
0: आप लोग भी चाय पीजिए।
1: क्या कहा, मैं थक गया हूँ, इतनी जरूरी मीटिंग बुला रखी है मैंने, ऑफिस का सारा काम पड़ा है, ये कितनी सारी फाइलें निपटानी है और तुम कहती हो मैं थक गया हूँ। ये चाय ले जाओ और उस लड़की को पिला दो जो मेरे कमरे में बैठी है।
0: वो भाभी है भैया, अभी परसों ही तो तुम्हारे साथ उनका ब्याह हुआ है, हम लोग ही तो उन्हें विदा करा कर लाए हैं, कितनी प्यारी है भाभी।
1: भाभी अच्छा मजाक है, किसी को भी सजा कर बैठा दिया और वो तुम्हारी भाभी हो गई। ये भी भाभी है, ये भी भाभी है, कितनी सारी भाभियां हैं चारों तरफ, भाभी भाभी भाभी, वाह। लो लो चाय पियो, लो लो भाभी तुम भी पीलो, तुम भी पीलो, तुम भी पीलो।
4: अरे इसकी शादी क्यों कर दी गई, हे भगवान और बहू का क्या होगा। डॉक्टर ने कहा बीमारी के चांद सी बहू आते ही ग्रहण लग गया, हाय अब क्या होगा।
5: अरे बंदी भी तो पागल के साथ।
1: क्या कहा, अरे मैं पागल हूँ? तुम पागल हो, तुम पागल हो, तुम भी पागल हो, तुम भी सब पागल हो, पागल हो, ये पागलों की बारात है, पागलों

0: मैं पागल, मेरा मनुआ पागल, पागल मेरी प्रीत रे।
1: और ये मुझे क्या पहना दिया? हार, अंगूठी, ये लो ये लो ये लो, लूटो लूटो, पागल का ब्याह हुआ है, झूमो नाचो गाओ।
2: भैया भैया, ये क्या कर रहे हो भैया? भाभी बुआ पकड़िए ने, मैं बाबूजी को बुलाती हूँ।
1: छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मुझे मुझे छोड़ दो छोड़ दो। देखो देखो, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, तुम सब पागल हो, तुम सब पागल हो। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं
3: हूँ, क्या
1: मैं पागल नहीं?
2: बाबूजी बाबूजी बाबूजी बाबूजी,
3: क्या है मंजू बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों हो?
2: भैया को फिर दौरा पड़ा है बाबूजी, अनशन बोल रही हैं।
3: क्या कह रही?
2: कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, कपड़े फाड़ रही हैं, चाची बुआ साबुनी पकड़े हुए हैं।
3: घबरा मत बेटी, मैं अभी गाड़ी निकलवाता हूँ, उसे डॉक्टर क्या तुरंत ले जाना होगा। ऐसा कर, तू जल्दी डॉक्टर वर्मा को फोन कर दे।
2: अच्छा।
3: भाभी, राहुल, विकी, तुम लोग इसे लेकर पीछे बैठो। मंजू, तुम बेटे बहू को संभालना।
2: अच्छा बाबूजी।
3: घबरा गई होगी, हम लोग इसे लेकर अस्पताल तुरंत जा रहे हैं।
2: ठीक है बाबूजी। भाभी, ताई जी संभालिए भैया को। भाभी भाभी, ये क्या आप रो रही हैं? भैया ठीक हो जाएंगी, घबराने की कोई बात नहीं है। भाभी ये लीजिए, पानी पी लीजिए।
4: नई जिंदगी की शुरुआत, वो भी इस ढंग से। मंजू जी, क्या हो गया आपके भैया को? क्या इसकी वजह मैं हूं, या फिर ऐसे दौरे इन्हें पहले भी पड़ चुके हैं? सच बताइएगा मंजू जी, आपको मेरी कसम।
2: सच ही बोलती हूँ भाभी, मेरे भैया जन्म से ऐसे नहीं हैं।
4: तो फिर?
2: बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे, हर इम्तिहान में टॉप करते थे, इतनी छोटी उम्र में अच्छी नौकरी भी मिल गई, बाहर भी घूम आई हैं। लेकिन अचानक ही हमारी परिवार में एक ट्रेजेडी हो गई।
4: ट्रेजेडी?
2: हाँ भाभी, मेरे सबसे बड़े भैया का स्कूटर दुर्घटना में देहांत हो गया। भैया उन्हें बहुत प्यार करते थे और ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। 10 दिनों तक ना सोए और ना ही किसी से बात की। उसके बाद ही पहला अटैक पड़ा, इलाज किया गया, ठीक हो गए, मेहनत की और नौकरी भी मिल गई।
4: वहां ठीक रहते हैं?
2: हाँ भाभी, ऑफिस में बड़ी तारीफ करते हैं लोग उनकी, काम भी बहुत करते हैं।
4: और डॉक्टर्स क्या कहते हैं?
2: उम्मीद दिलाते रहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। वैसे ठीक रहते हैं, तभी तो उनका ब्याह किया गया है। भाभी आप क्यों चिंता करती हैं? अरे अचानक ही दौरा पड़ गया होगा, 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा अब आप आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ।
4: नहीं मंजू जी, अभी भूख नहीं।
2: तो लेट कर सोने की कोशिश कीजिए, मैं अभी आती हूँ। शायद बाबू जी आ गए हैं।
4: कितनी सुंदर जगह ब्याह किया है अपनी लाडली बेटी का। रईस घराना, शानदार हवेली, 4-5 गाड़ियां, ढेरों नौकर चाकर और एक प्यारा सा पागल पति। अरे टेटी, इससे अच्छा होता अगर आप मेरा गला घोट देती। जीते जी मुझे मारने की क्या जरूरत थी डैडी? रीमा, रीमा तो सच कहती थी, इस चंदन वृक्ष से संघर्षों के सर्प लिपट गए हैं।

0: भाभी सो गई मेरी भाभी, कैसा निश्चल भूला चेहरा है, कुछ घंटों में ही कुंबला गया है। किस सम्मोहन में बांध दिया है मुझे इस मासूम ने, मुझे ही कुछ करना होगा। लगता है बाबूजी आ गए हैं। भगवान, भैया ठीक हो गए हूं। बाबूजी, क्या हाल है भैया का?
1: क्या बताऊं बेटे, बहुत ही वायलेंट हो गया था।
0: हैं?
1: हाँ, अगर सावधानी न बरती जाती तो शायद शायद वो नस का कला ही खोल देता।
0: बाबूजी।
1: हाँ, उसे इंजेक्शन देने जा रही थी और वो इंजेक्शन बड़ा ही कष्टदायक था बेटा। हे भगवान, ये किस पाप की सजा दे रहा है मुझे?
0: क्या होगा बाबूजी?
1: क्या कह सकता हूँ मैं, फिलहाल तो इंजेक्शन देकर सुला दिया गया है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा।
0: नहीं।
1: राजेश बेटा।
2: जी बाबूजी।
1: कल सुबह सब जगह फोन करके डिनर कैंसिल करने की सूचना दे देना।
0: लेकिन बाबूजी, भाभी के मायके वाले ट्रेन से आ रहे हैं, चल ही दिए होंगे। बाबूजी, भैया की शादी करके आपने ठीक नहीं किया।
1: उस समय तो ठीक था बेटा, डॉक्टर की राय से ही तो सब कुछ हुआ था।
0: उन्होंने तो ये भी कहा था कि शादी से ठीक भी हो सकती है और बीमारी बढ़ भी सकती है, इसमें रिस्क है। हम सब ने आपसे मना भी किया था बाबूजी।
1: अरे बेटे की मोहब्बत को तुम लोग क्या समझोगे?
0: ठीक कह रहे हैं आप, उसके लिए एक क्या कई सुमी की जिंदगी दांव पर लगाई जा सकती है।
1: मंजू, मंजू,
0: अगर आपकी बेटी के साथ भी यही होता तो?
1: चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। चुप में आता है पढ़ देती है।
0: सच कह रही हूँ, इसलिए आप सहन नहीं कर सकती। कितनी मासूम लड़की है, उम्र में भी मुझसे छोटी, उसकी सिसकियां, उसका रोना, उसका दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसके लिए भी तो कुछ सोचिए बाबूजी।
1: अब तो बस एक ही उपाय है बेटी, शाम को उसके मायके वाले आ रहे हैं, सोचता हूं उसे उनके साथ भेज दूंगा, शायद उसका वहां मन बहल जाए। जब रितेश ठीक हो जाएगा तो उसे बुलवा लूंगा।
0: ठीक है, मैं भाभी को मायके जाने के लिए राजी कर लूंगी। अब आप भी आराम कीजिए।
1: ठीक।
3: अरे आ गए आप लोग, सुमी भी आई है। डिनर कैसा रहा? सुमी, तू कुछ बोलती क्यों नहीं? रितेश कहाँ है?
4: मम्मी प्लीज, के सब बातें एक ही साथ पूछ लेंगे। सुमी बहुत थक गई है, उसे आराम करने दीजिए।
3: अरे क्या हुआ सुमी? अरे तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? देखूं तो? हाँ, अरे तुझे तो बड़ा तेज बुखार है, जल्दी से डॉक्टर को बुला ला। सुमी चल तू अंदर लेट जा बेटा। अरे जाना जल्दी से डॉक्टर को ले आ।
4: अरे हाँ बुलाता हूँ, आप उसके पास बैठिए।
5: बेटा
3: सोया बेटा, क्या हो गया मेरी सुनी बेटी?
4: हाय डॉक्टर साहब, देखिए कितनी तेज बुखार है।
3: हाँ देखिए डॉक्टर साहब, कितना तेज बुखार है।
6: इत्मीनान रखिए, इत्मीनान रखिए, मैं देख लेता हूँ। अरे भाई इसको तो बुखार है। ऐसा करता हूँ मैं इसे एक इंजेक्शन फिलहाल लगा देता हूँ और ये दवाएं आप बाजार से मंगवा लीजिएगा, चार चार घंटे पर देते रहिएगा, सुबह तक बुखार उतर जाएगा।
3: ठीक है ठीक है,
6: और घबराने की कोई बात नहीं है।
3: ठीक है, जा बेटा दवाएं ले आ।
4: थैंक यू डॉक्टर साहब, आइए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ दे।

0: सुनी सो गई है मम्मी, आप उस कमरे में चलिए, डैडी यहाँ बैठ जाएंगे। हाँ
1: ठीक है,
0: आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, आइए।
1: हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है?
0: मम्मी हमें धोखा दिया गया है।
1: धोखा? कैसा धोखा?
0: हाँ मम्मी धोखा, वो बात यह है कि रितेश को पागलपन के दौरे पड़ते हैं। कई महीनों तक वो मेंटल हॉस्पिटल में भी रहा। वो तो कल शाम को ही फिर से उसे दौरा पड़ा, अब हॉस्पिटल में।
1: अच्छा,
0: उसके ड्राइवर ने हमें सब कुछ बता दिया मम्मी, नहीं तो हम तो धोखे में रहते।
1: नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये भगवान, ये सब क्या हो गया? अब क्या होगा राकेश? मेरी मासूम बच्ची सोमी, ये क्या?
0: देखिए मम्मी, इस तरह घबराने से कुछ काम नहीं चलेगा। मैंने और डैडी ने तय कर लिया।
1: क्या?
0: कि सुमी अब वहां नहीं जाएगी। रितेश वायलेंट हो जाता है ममा, तो जान पर भी हमला करता है। अब हम सुमी को नहीं खोना चाहते। अमित, एक बार सुमी ठीक हो जाए तो उसे पढ़ाई पूरी करने के लिए भेज देंगे, रीमा उसकी केयर करेगी, और रही ससुराल वालों की बात तो उनसे हम निपट लेंगे।
1: अच्छा,
0: अब ठीक है ममा, आप सुमी के पास जाइए।
1: ठीक है। वर्ष बीत गए अपने आप से लड़ते हुए। वाह सुमी चौधरी वाह, बाहर मुखौटा पहन रखा है एक गंभीर प्राध्यापिका का, लेकिन अंदर अंदर छटपटाती है भोली भाली सुमी। क्या अपराध था मेरा, क्या अपराध था? भाग्य ने दुख भोगने के लिए मुझे ही क्यों चुना? अगर रीमा और डॉक्टर राजन न होते तो क्या होता मेरा? मैं तो टूट चुकी थी, और मैंने उन्हें बदले में क्या दिया? रीमा को दुख और डॉक्टर साहब को तड़प। आखिर आखिर वो क्यों तप रहे हैं एक टूटे हुए इंसान के लिए? मुझे मुझे हर वक्त समझाते रहते हैं, मैं क्या करूं, क्या करूं मैं?
2: अंदर आ सकता हूं?
1: ओ आप आइए आइए, बैठिए ना। रीमा का कोई खत आया? कैसी है वो? और जीजा जी और बच्चे तो ठीक है ना?
2: सब ठीक है, तुम कैसी हो सुमी?
1: अच्छी हूँ। सुना है आप बाहर जाने वाले हैं।
2: यहाँ रहकर भी क्या करूंगा सुमी, एक बात कहूं सुमी, जिंदगी अनिच्छा से जी जाए तो बोझ बन जाती है, हर लम्हा बोझिल हो जाता है। अभी वक्त है सुमी, ये घेरा जो तुमने अपने चारों ओर बना रखा है उसे तोड़ दो, तोड़ दो सुमी, आज आखिरी बार कह रहा हूं।
1: कैसे तोड़ दूं? ये दुनिया, ये समाज मुझे जीने देगा?
2: समाज, समाज, फिर वही समाज। क्या दिया है समाज ने तुम्हें? घुटन, तनाव और दुख, तिल तिल कर जलने के लिए छोड़ दिया है तुम्हें, और लोग भी जल रहे हैं, लेकिन तुम्हें इससे क्या? हार गए हैं हम भी, क्या मिलेगा शिलाओं से टकराने से? चलता हूं, गुड बाय सुमी।
1: राजन,
2: सुमी
1: रुक जाओ प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं बहुत थक गई हूं
2: सुमी।
1: और अर्जुन,
2: ओ सुमी, मैं जीत गया सुमी, मैं जीत गया, शायद चंदन वृक्ष से सांप हट गए हैं
1: और बिखर गई है मादक गंध।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक चंदन वृक्ष। इसकी लेखिका थीं उषा सक्सेना, निर्देशिका रमा अरुण त्रिवेदी। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती बेचारा।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की, एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज आप सुनेंगे इस बातचीत का पांचवां भाग। बीते चार हफ्तों में रमेश तलवार ने एक से बढ़कर एक घटनाएं सुनवाई हैं। जाहिर है कई श्रोता भूल गए होंगे या कई नए श्रोता शामिल हुए होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि पहले एपिसोड में रमेश तलवार ने कौन सी रोचक घटना सुनाई थी। तो चलिए बीते चारों एपिसोड्स में से कुछ दिलचस्प वाक्य दोहराते हैं और उसके बाद सुनते हैं आगे की बातचीत। ये है रीकैप एपिसोड वन।
1: जब पार्टीशन हुआ तो हम आए श्रीनगर में। उसके बाद जो है कुछ दिन सेट होने के बाद कुछ रिश्तेदार बम्बई आ गए थे ऑलरेडी, तो उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को फोन किया कि आपके लिए भी एक ट्रक खरीद लिया है। यहाँ कोलीवाड़ा में जहाँ हम थे
2: जी,
1: तो वहाँ पे ये मिलिट्री के क्वार्टर्स थे कुछ
2: साइन में,
1: साइन कोलीवाड़ा। तो हमारा जो कमरा था उसका नाम था T-157
2: जी।
1: तो टी मतलब होता है टट्टी,
2: अरे
1: ओरिजिनल टट्टी थी वो।
2: ओ गॉड।
1: तो उसको लेवल करके सीमेंट करके घर बनाया गया और कुलदीप जी शुरू से ही म्यूजिक के माहिर थे, गाते बहुत अच्छा थे, हमेशा कुछ ना कुछ ट्रॉफी जीत के आ जाते थे। कोलीवाड़ा में भी कोई प्रोग्राम होता था, दिवाली आई, होली आई, कुछ आया, ये गाते थे।

0: और खूब रंग जमाते थे। मैं जब नाटक वाटक करने लग गया, छोटे छोटे रोल मिलने, तो मैं अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा करता था
1: जी
0: कि फलाना नाटक, किसी नाटक का नाम लिखता था, डायरेक्टर बाय रमेश तलवार, म्यूजिक बाय कुलदीप सिंह, ऐसा लिखता था।
1: जब ऐसा कुछ हो नहीं रहा है
0: ना, ना वो कुछ करते नहीं थे वो, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता था। उन्होंने भी कई बार नाम पढ़ा और वो कहते हैं कि ऐसा था उनके दिल में, उनके दिल में ये आ गया कि यार ये मैं, मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बनाना चाहता है। और इसी दौर में एक फिल्म की है, पता चला कि एक फिल्म बन रही है डेविड कॉपरफील्ड के ऊपर, वो है उसका नाम है सौतेला, तो मुझे उसके रोल के लिए ले जाया गया। कुछ छोटा मोटा टेस्ट लिया और मैं सेलेक्ट हो गया और मद्रास एवीएम में जो है उसकी शूटिंग थी।
2: एपिसोड 2 में रमेश तलवार ने ये दिलचस्प घटना बताई थी।
0: तो मैंने पढ़ा कुछ दिनों के बाद कि इत्तेफाक एक फिल्म बनेगी, एक महीने में कंप्लीट हो जाएगी और राजेश खन्ना उसका हीरो होगा। राजेश खन्ना तो मेरा स्टेज का दोस्त,
1: बिल्कुल।
0: तो मैं मनमोहन जी से फिर कहा, मनमोहन कृषि साहब से, कि वहाँ चलते हैं, ये पिक्चर है और मुझे असिस्टेंट रख लेंगे। एक महीने में सारी एक पिक्चर सामने से गुजरी आंख से, तो मैं काफी
1: आगे
0: चाहूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। गए तो बी आर चोपड़ा सर ने कहा हाँ भाई आ जाओ रमेश बैठो। मनमोहन जी, यश को बुलाओ भाई, यश जी आए भाई। उन्होंने कहा इसको असिस्टेंट रख लो यश अपनी पिक्चर में। भाई साहब मेरे पास ऑलरेडी 4 असिस्टेंट हैं, अगली बार बुलाइए जब अगली पिक्चर शुरू करेंगे। तो फिर बी आर चोपड़ा ने कहा 5वां असिस्टेंट बना लीजिए, बैठा रहेगा कोने में, देखेगा सब
1: जी।
0: तो यश जी मान गए बड़े भाई की बात। मैं ड्रामे का डायरेक्टर हूँ,
1: Yes.
0: मैं सिनेमा, मैंने हर फिल्म, अच्छी फिल्म देखी हुई है 5 आने में। फ्रंट रो में बैठ के आकाश कुरला पे जाके, कोलीवाड़ा से आकाश कुरला, 1 आने का टिकट, वहां जाता 5 आने की पिक्चर, 1 आने का खाना और 1 आना वापस आना। ठन्नी में पिक्चर
1: काम बन जाता था,
0: काम बन जाता था।
1: कौन कौन सी फिल्में देखी
0: सब होगी? कोई भी आप अच्छी पिक्चर का नाम लो, मैंने देखी है बिमल राय की सारी फिल्में, सत्यजीत रे की सारी फिल्में, गुरुदत्त की सारी फिल्में। अब था वो चलते हुए एक आध बार ऐसी चीज आई, रुक गई शूटिंग, सब राइटर डिस्कस कर रहे थे, कुछ पॉइंट पूछा गया और मैंने कहा ये क्यों ना कर लें। तो सब राइटर ने बोला हाँ ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो बिल्कुल आसान है, ये जाएगा इफ्तिखार करेगा, करेक्ट है। अब साहब वो चीज की गई, अब मेरी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस जगह पे, यश चोपड़ा में नोट किया, उन्होंने प्ले भी देखा था शतरंज मोरे, यहाँ ये नोट कर लिया कि इसको जबरदस्ती 5 बार से रखकर कोने में बैठा। साहब आगे चले तो इन्होंने मुझे कहा कि आप आइए हमसे मिलिए। मैं गया मिलने,
1: जावेद साहब ने,
0: जावेद साहब और सलीम साहब दोनों बैठे थे। तो मैं गया, बोलने लगे भाई एक प्रोजेक्ट है, करेंगे आप? मैंने कहा जी आप कमाल कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूँगा। देखिए कमर्शियल सब्जेक्ट है, आप सुन लीजिए
1: हाँ
0: फिर बोलिए, और हम आपको कास्टिंग भी बताते हैं। आपका दोस्त ऋषि कपूर इसमें होगा, मैं ऋषि कपूर के साथ उन दिनों बहुत फिल्में कर रहा था।
1: हाँ बिल्कुल,
0: ऋषि कपूर इसमें होगा और साथ में होंगे राजेश खन्ना,
1: वो भी आपके दोस्त।
0: तो अब उसी टाइम पे एक्चुअली डिम्पल की शादी राजेश खन्ना के साथ हो गई थी
1: जी जी,
0: और कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वो हीरोइन थी बॉबी में,
1: हाँ
0: तो पिक्चर को बिल्टअप मिलता है, ये उनके जहन में था। और रमेश तलवार के दोनों हीरो दोस्त हैं। तो साहब वो फिल्म मैंने कहानी सुनी, मेरा बसेरा करने के बाद और दूसरा आदमी करने के बाद दिमाग जो है खराब हो चुका था, खराब मतलब सीरियस हो गया था। ये पिक्चर बिल्कुल कमर्शियल पिक्चर थी। मैंने कहा यार वही स्मगलिंग, वही पुलिस और सिपाही, और तो देखिए मुझे मेरे लायक नहीं है, कोई और करे तो बेटर है आपके लिए।
2: तीसरे एपिसोड में रमेश तलवार ने सुनाई थी ये घटना।
0: करते करते 1 साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में। वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त अरेस्ट हो गया।
1: बाप रे,
0: उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लालबाग में, और उनका बहुत जबरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में। और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को यह कहा था साले इसमें तेरे को अवार्ड मिलेगा तू ये रोल कर। और मैं जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साइन करने के।
1: हाँ हाँ,
0: तो उसके बाद संजय दत्त के साथ मेरी बहुत दोस्ती।

0: होगी। अब ये सोचो, कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म जो एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
1: और सलमान खान ड्रॉप हो गए,
0: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं, लगाई मतलब लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए ना।
1: लेकिन आज उस फिल्म को लोग बहुत
0: याद देखते हैं, नहीं करते भी हैं, देखते भी हैं, याद भी करते हैं, सब है, गाने भी इतने हैं, सब कुछ है। लेकिन देखिए, जब हमने बनाई थी, ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म, अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही हैं, ये सब चाट के होगी,
1: बिल्कुल,
0: और थी भी वो उस तरह की है। तो माधुरी दीक्षित, संजय दत्त, ऋषि कपूर के साथ
1: बड़ी स्टार कास्ट,
0: बड़ी स्टार कास्ट, अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े प्यार से बनाई।

0: राजेश तलवार से आपके दोस्त यूनुस खान की बातचीत के चौथे एपिसोड में ये हिस्सा बड़ा ही दिलचस्प था।
1: तो मुझे ऋषि कपूर का एक दोस्त है, उसने आइडिया सुनाया। उसमें ऋषि कपूर है, नीतू सिंह वाला रोल है और बाप और माँ है वो है, उसमें राखी का रोल नहीं था। तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि भाई तेरी स्टोरी में लेता हूँ, लेकिन इसमें चेंजेस वेंजेस होंगे। नया न्यू कमर राइटर,
0: जी जी जी,
1: उन्हीं का नाम है, राइटर है, राइटर स्टोरी राइटर उनका नाम ही है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ जो भी है। तो मैंने चिंटू से कहा, मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा है, सागर सरदी साहब से कहें करने के लिए। बोला बहुत अच्छा, अगर सागर सरदी कर ले तो सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे 3-4 साल, वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले। और इलिस्ट्रेटेड वीकली में किसी का फोटो आया था, एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग में, उसका फेस बहुत आता था, उनका फेस आया, उन्होंने वो मुझे दिखाया, ऐसी कोई औरत। और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की वो और 20 साल का लड़का,
0: हाँ।
1: तो हमको एक विलन का नया नेगेटिव कैरेक्टर मिल गया।

0: तो चलिए अब सुनते हैं आगे की बातचीत, जिसमें हमने रमेश जी से रंगमंच की उनकी गतिविधियों के बारे में पूछा है।
1: अच्छा, अभी आखिर में कुछ ऐसे नाटकों की बातें करना चाहता हूँ जो आपने सेलिब्रिटीज के साथ किए हैं, जैसे शबान आजमी के साथ नाटक किया है, जया भादुड़ी के साथ, जया बच्चन के साथ नाटक है, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ है, जीनत अमान के साथ है।
2: जी, सबसे पहले मैंने पूजा भट्ट के साथ किया नाटक।
1: खूबसूरत
2: खूबसूरत। पूजा भट्ट के साथ क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि भाई प्ले कर रही है वो, और कोई और डायरेक्टर डर कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था, कोई कर रहे थे। तो वो डायरेक्टर गुरु टाइप के थे, तो उन्होंने डांटा वांटा ये किया, तो ये कुछ आपस में अनबन हो गई उनकी। तो मेरे ख्याल में बोनी कपूर ने कहा रमेश जी को पूछ लूँ, तो मेरे पास कोई आया जो भी ऐसा है करोगे, बाहर अमेरिका में टूर है ऐसा। तो मैंने कहा कौन सा प्ले है, उन्होंने प्ले बताया, प्ले स्क्रिप्ट बताई और मैंने वो सुनी और मुझे लगा कि प्ले बहुत अच्छा है, अच्छा है प्ले तो बहुत अच्छा था। और उसमें कोई और आर्टिस्ट कर रहा था रोल पहले, जो मुझे लगा मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा, पूजा भट्ट के संग बाप का रोल कोई और कर रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका।

0: जी जी
1: मैंने कहा ये जो इधर टेंटम दिखा रहे हैं हमको, जो कुछ बातें वो करते थे ऐसी, ये नहीं हो रही होगा, ये नहीं होगा, मैंने
0: जी
1: नाटक में नहीं होता,
0: जी जी जी
1: मैं आपके सिनेमा में बात सुन सकता हूँ।
0: जी
1: नाटक में हम अमेरिका में बैठे हैं तो मैं क्या करूँगा। तो वो मैंने कहा भरत कपूर को ले लेते, मेरे नाटकों में सब में काम करता है वो, और तुम्हारा फादर बिल्कुल लगेगा और मेरे कंट्रोल में। तो उस आर्टिस्ट को मैंने कह दिया भाई तुम्हारे ऐसी प्रॉब्लम है, शूटिंग डेट्स होती हैं, फलां होता है, ये होता है, वो होता है, नाटक में ऐसा नहीं होता, तो तुम अगर ना करना चाहो तो। उन्होंने कहा हाँ मैं नहीं करूँगा, मेरे पास टाइम जितना है मैं वही दूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ। वो तो भरत कपूर को मैंने सुनाया सब्जेक्ट, उसने कहा मैं कर लेता हूँ। फिर पूजा भट्ट के साथ हम वहाँ गए, वहाँ उसके 5-6 शो हुए अमेरिका में, यहाँ आके 4-5, फिर 5-6 शो यहाँ पे किए, मतलब मेरे ख्याल में मुश्किल से 10-12 ही शो किए थे हमने उसके।

0: शबन आजमी वाला प्ले
1: नहीं, इसके बाद हमने पहले ये, इनके बाद जिया जी के पास गए हम।
0: जी जी,
1: मेरे पास मेरा दोस्त संजय गोराडिया आया।
0: जी,
1: संजय गोराडिया गुजराती का बहुत फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर है और एक्टर भी है, और वो मेरे साथ शुरू में मेरी फिल्मों में प्रोडक्शन भी करता रहा। सागर साहब के साथ बाजार में प्रोडक्शन असिस्टेंट था सागर साहब का। और फिर वो मैंने एक बनाई थी NFDC के लिए पिक्चर, तेरा नाम मेरा नाम, न्यू कमर्स को लेके, उसमें भी प्रोडक्शन कर रहा था और एक आध रोल भी किया था। तो वो आया, उसने कहा मैं तुम जैसे पूजा भट्ट के साथ प्ले करके आए हो वैसा अगर मेरे लिए प्ले करो तो मुझे अमेरिका का टूर मिल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, तो कौन सा प्ले करना चाहते हो? उसने प्ले का नाम बताया, ये वाला, ये स्क्रिप्ट। मैंने कहा ये स्क्रिप्ट किसको शूट करती है, किसको करती है? जिया जी को करती है। और कौन है
0: जी
1: जो इसमें ठीक रहेगा? पहले जिया जी के पास पूछते हैं, अगर वो करने के लिए हाँ कर दें। और जिया जी के साथ मैं सीरियल कर चुका था उन दिनों, उनकी कंपनी का ABCL के लिए मैंने आरजू एक सीरियल किया था, 50 एपिसोड किए थे उसके। तो बड़े अच्छा रिलेशनशिप थी, बहुत इज्जत करती थी, मैं भी बहुत इज्जत उनकी करता था। मैंने उनको बताया कि ऐसा मैं कर रहे, अगर आप फ्री हैं और आप करना चाहती हैं अमित जी से भी बात कर लीजिए, महीने का टूर होगा कहीं अमेरिका का अलग अलग सिटीज़ में। बोले सब्जेक्ट सुनाओ, मैंने सब्जेक्ट सुना, सब्जेक्ट उनको बहुत पसंद आ गया। और उन्होंने मुझे कहा ऑलमोस्ट हाँ है, फिर भी मैं एक बार अमित जी से बात कर। फिर उन्होंने एक शर्त रखी कि हम रिहर्सल कितने दिन करेंगे। मैंने कहा ऐसे 6 हफ्ते होती है या 45 दिन होती है। बोले उसके बाद आप मेरी फैमिली को दिखाएंगे प्ले, ओपिनियन लीजिए आप। मैंने कहा बिल्कुल, अमित जी को बुलाऊंगा, बच्चों को बुलाऊंगा, सब जो भी देखना चाहें, और भी ऑडियंस में जिसको आप बुलाना चाहती हैं, मैं भी अपने लोगों को भी बुलाऊंगा, हम देख लेंगे। कमिट करने से पहले मैंने कहा डेटे कमिट नहीं हो तब तक मैं बेचूंगा नहीं, फिर वेट थोड़ा सा करना पड़ेगा डेटों का, टूर का। बोले ठीक है। रेसलिंग हुई, हमने शो रखा भाईदास में, प्राइवेट शो, जिसमें अमित जी भी आए और भी बच्चे भी आए, सब सब ने, हमारे भी दोस्त फैमिलीज आई, सब ने देखा, लोगों को प्ले बहुत पसंद आया। जब प्ले होने लगा था तो मेरे ख्याल में था कि इनके सामने हस्बैंड जो है अनुपम खेर टाइप का कोई आदमी हो, या अनुपम हो या कोई और इस तरह का आदमी होना चाहिए। उनका रमेश जी आप ही करिए।
2: अरे वाह।

0: ने मुझे थिएटर करते हुए देखा होता, मेरे प्लेस देखे हुए जब दिन में मैं एक्टर था, ये आप ही करी कोई बात नहीं। मुझे थोड़ा सा वो झटका लगा कि जिया जी के सामने मैं नहीं करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे आप, करिए आपने जैसा सुनाया ना वैसा ही करिए। तो जब पढ़ा था मैंने उनके सामने प्ले, तो मेरे रसने करनी शुरू हो गया और फिर हमने अमेरिका टूर किया और बहुत अच्छा हुआ। और इधर जो ट्रायल हुआ उसमें भी लोगों ने मुझे अप्रूव किया।
1: वाह वाह वाह,
0: उन्होंने कहा रोल मेन जय जी का लेकिन आपका रोल

0: ट्रायल हुआ उसमें भी लोगों ने मुझे अप्रूव किया।
1: वाह वाह वाह,
0: उन्होंने कहा रोल मेन जया जी का, लेकिन आपका रोल भी बहुत अच्छा है, आप एकदम रिलीफ है प्ले में। आप जब जब आप आते हैं आपके एंट्री का इंतजार होता है, क्योंकि वो जया जी थ्रू आउट प्ले में है और मेरा कभी कभी बीच में आता था, मैं तीन चार, तो सबने अप्रिशिएट किया और मैंने वो रोल कर डाला।

और फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब हुआ, अब जिया जी को भी पसंद आ गया थिएटर करना, वो प्ले सुपर डुपर हिट हुआ और इन लोगों को फीस जो उन्होंने मांगी वो मिली थी। उसके बाद दूसरा प्ले आया, वो मैंने इनको डॉक्टर मुक्ता प्ले सुनाया, उसमें भी वो मेन रोल था लेकिन सीरियस प्ले था। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप ये रोल करिए जो हस्बैंड का रोल है। अगेन मेरा रोल बीच में ही है लेकिन लाफ्टर लाफ्टर आते हैं मेरे आने पर, ऑल्दो मैं कॉमेडियन नहीं हूँ लेकिन वो रोल ऐसा होता है कि मुझे लाफ्टर तो मिलते हैं। वो रोल भी, वो प्ले, फिर हम दोनों प्ले साथ लेके फिर अमेरिका टूर पे गए। अमेरिका से फिर गल्फ कंट्रीज भी गए, पहले लंदन गए, लंदन से गल्फ कंट्रीज भी गए। इस तरह हमारा 40 दिन का टूर हुआ, बहुत अच्छा रहा और सबको फीस अच्छी मिली क्योंकि बाहर प्ले में आपको मुंह का दाम, जब आप स्टार प्ले करते हैं तो जो प्राइस स्टार बोलेगा उस हिसाब से पैसे मिल जाते हैं, फिर डायरेक्टर को भी उस तरह मिल जाते हैं। इस तरह से हमको जब ये प्ले चल रहे थे तो एक दिन शत्रु जी से मुलाकात हुई। तो उन दिनों कुछ दिल्ली जाते थे और ये सब, तो उन्होंने कहा यार मैं तेरा प्ले देखा बहुत अच्छा था। मैंने कहा आप करेंगे प्ले? नहीं करूँगा, जरूर करूँगा। कब करना चाहोगे? कौन सी है स्क्रिप्ट सुनाओ। और उनको स्क्रिप्ट सुनाई और वो मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड प्ले था जो उन्होंने सुना और वो प्ले अच्छा है, आज तक चल रहा है वो भी। और उसमें राकेश बेदी और ये और लड़की एक है और संजय गोरडिया एज प्रोड्यूसर, वो एंट्री भी मारता है कुछ शुरू में। तो चार ही कैरेक्टर है, मैं उसमें रोल नहीं करता हूँ। वो प्ले भी हिट हुआ, आज तक चल रहा है। उसके बाद जीनत जी किसी शो पे आई थी, अमित जी के ना इनके शत्रु जी के, उन्होंने दो तीन बार अटेंड किया था प्ले। उन्होंने कहा आपका मेरे लिए स्क्रिप्ट है? मैंने कहा हाँ है। मैंने कहा वो देखिए बात यह है कि संजय गोरडिया से आप कमर्शियल बातें कर लीजिए, मैं आपको स्क्रिप्ट पर मैं बाद में सुनाऊंगा। क्योंकि होता है ना कि बात कर लें फिर स्क्रिप्ट भी आप तक पहुंच गई, फिर उसके बाद मैं किसी और को सुनाऊंगा, आपको लगेगा आपका सब्जेक्ट किसी और को सुना दिया। उन्होंने कहा हाँ मैं कर लेती हूँ। उन्होंने बात जो भी मिशन प्रोड्यूसर हो गया, उन्होंने हाँ कर दी। अब जब आया तो उन्होंने कहा आप रोल करेंगे, मैंने जया जी के साथ आपको रोल करते दोनों प्लेस में देखा है। मैंने कहा जी वहाँ जया जी की हाइट कम है, आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है। बोले आप चेंज के जूते पहन लो। और मैंने वैसे जूते बनाए, उनके ऑपोजिट रोल किया, वो हो गया। इतने में एक प्ले था शीशों का मसीहा, फैज अहमद फैज की पोइट्री के ऊपर उनकी कहानी, लाइफ कहानी थी, तो उसको जोड़ा हुआ था और वो हमने प्ले खेला। शबाना जी ने हाँ कर दिया। मैंने पूछा जावेद साहब करेंगे? बोले तुम पूछो भाई, मैं नहीं बोलूँगी। मैंने उनको सुनाया, उन्होंने कहा हाँ मैं करूँगा, पढ़ना है खाली ना, याद तो नहीं करने डाले, मैं पढ़ूँगा और पोएट लगूँगा मैं। तो उन्होंने भी ओके कर दिया। तो वो लेके हमने 5-6 शो इधर ही किए। लेकिन जो फिर तो उनके राइटर्स उस प्ले के, वो चाहते थे कि वो रोल करें खुद। तो मैंने कहा भाई अब ये तो प्ले चल गया है, अब तो वो करते हैं, मैं उनको थोड़ा बोलूँगा तो आप छोड़ दीजिए प्ले। शबाना जी को ये थोड़ा करूँगा कि अब आपके साथ ये करेंगे। तो उन्होंने कहा फिर मैं आपको स्क्रिप्ट नहीं दे सकता, समथिंग राइटर ने। ठीक है, शौकत भाभी ने अपनी आप बीती लिखी, तो टाटा एक्सपेरिमेंटल थिएटर में उन्होंने पहला चैप्टर पढ़ा उसका स्टेज पे, पढ़ा तालियां बज रही हैं, ये और बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आप वो किताब पढ़िएगा। तो जैसे ही खत्म हुआ चैप्टर, मैंने कहा शबाना इस पर हम प्ले करेंगे, क्या बात करते हो? मैंने कहा आप उसमें रोल करेंगे यही वाला जो शौकत भाभी ने किया है, और अगर जावेद साहब करना चाहें कैफी साहब का रोल तो जावेद साहब को दे दे, आप दोनों का पेयर भी हो जाएगा सेम, आप लोगों ने दोनों साथ में किया हुआ है, तो कैसे तुमको लगता है कि ये सब्जेक्ट हो जाएगा अच्छा बनेगा? मैंने कहा उसमें बीज सारे हैं, मैंने आपका तुम्हारी अमृता भी देखा है, उसमें भी आप बैठ के दोनों पढ़ते थे फारूक और आप, शीशों का मसीहा भी किया है हमने और ये भी है, बहुत अच्छा बनेगा। तो फिर एक काम करिए जावेद साहब से कहिए लिखे। मैंने कहा जावेद साहब को आप कहिए। बोले मैं नहीं कहूँगी, मुझसे ना करेंगे तो फिर मैं क्या करूँगी, आप अपने ढंग से आपने काम किया हुआ है ना उनके साथ, तो आप उनकी स्क्रिप्ट फिल्में बना चुके हो, कहिए

मैंने जावेद साहब से कहा कि आप ये स्क्रिप्ट लिखिए, तो जावेद साहब ने स्क्रिप्ट लिखी और रोल किया और प्ले तब से लेकर आज तक चलता है। अभी जावेद साहब ने खुद बिजी हो गए तो उन्होंने कहा रमेश जी अभी आप ना मुझे रोल के लिए मत बोलिए, क्या होता है मुझे आप लोगों के साथ डेटें मैच करने पड़ती है छवाना की और वो, तो आप किसी और तो आप कंवलजीत सिंह करते हैं रोल, वो सेम रोल, और अभी हम टूर करते रहते हैं, अभी भी ऑफर आई हुई है, जाएंगे बाहर।

0: रमेश जी, बहुत बरस तक फिल्में डायरेक्शन किया आपने, टेलीविजन पर काम किया, और उसके बाद फिर एक बहुत लंबा अरसा है जहां आप वापस थिएटर की तरफ लौट रहे हैं, और मैं आपके प्लेस देखता रहा हूं। आप थिएटर को जीते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, वो एक जुनून है आपका। अपने सबसे लंबे समय से चले आ रहे प्लेस और इन दिनों जो कुछ नाटक आप कर रहे हैं उनके बारे में बताइए।
1: देखिए साहब, पहली बात तो यह है कि मैंने फिल्में करना बंद नहीं किया। मैंने लास्ट फिल्म बनाई है शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए, जिसमें रेखा जी और शत्रुघ्न सिन्हा है, उन्होंने प्रोड्यूस किया है, उनकी मिसेज और एक उनकी पार्टनर है कोई, दोनों ने मिल के, और फिल्म बहुत अच्छी बनी हुई है। अब वो कैसे रिलीज करेंगे वो अब देखते हैं, OTT पे करते हैं या क्या करना चाहते हैं। और उनके साथ नाटक भी मेरा चल रहा है, उसके भी शोज करते रहते हैं। तो इप्टा में जो नाटक मेरे हैं जो बहुत देर से चल रहे हैं, एक तो शतरंज के मोहरे
0: सबसे पुराना है।
1: पुराना है मतलब ये था कि मैं जब पहली बार शतरंज के मोहरे करने लगा था, उसमें मैं बच्चा था और चेहरे से लगता था कि 14-15 साल का है, और मुझे लव सीन करना होता था। 20 साल का रोल है श्याम का, उसमें कैरेक्टर का नाम श्याम है, तो मैं मुंह चुगाता था रोल करने के लिए कि मैं बड़ा लगूं, और मेरे सामने जो एक्ट्रेस होती थी वो अपना सुलवार या हिंदी में या कहीं और दूसरी जगह कोई नॉन एक्ट्रेस ऐसा रोल करती थी, तो मैं बड़ा लगना चाहिए। और उस वक्त जब मैंने पंजाबी में पहले प्ले किया, उस वक्त मनमोहन कृष्ण जी एक मेन काका जी का बुजुर्ग का रोल कर रहे थे, चाचा का, और हंगल साहब करते थे रोल आचार्य का उसमें, और मैं शाम जो लड़का है उसका करता था, और बाकी साथ में नितिन सेठी उस वक्त के हीरो थे, वो करते थे डॉक्टर सतीश का रोल, अचला सचदेव उनकी मतलब मेरी बड़ी बहन का रोल करती थी। ये यहाँ से शुरू किया था। अब जो साहब मैंने वो प्ले का हमको शो मिल गया हैदराबाद में, ऐसा हुआ कि एक प्ले कर रहे थे आदर का ख्वाब, जिसमें बलराज सहनी साहब थे और गीता सिद्धार्थ, तो पिग्मिलियन पे था प्ले। तो उन्होंने कहा हमको दो प्ले चाहिए, तो हमारे पास दूसरा प्ले कुछ था नहीं, तो हमने कहा ये जो पंजाबी में प्ले किया है इसको सब हिंदी में बोलना शुरू करो, तो देखते हैं कि कितना तक क्या चाहिए। वो बोलने लग गए, सब लोग हिंदी में सेम लाइन है, पंजाबी और हिंदी नज़दीक नज़दीक की है, सिंपल वैसे ही वर्ड रखे, क्लिश हिंदी नहीं होगी, सिंपल हिंदी होगी, वो बन गया। जब एंड तक पहुंच गए फिर मैंने उसको फाइनल थोड़ा सा छोटा मोटा जो करेक्शन करनी थी कर ली, वो करके हम लोग जाके हैदराबाद में हमने शो खेला, और तब से लेकर अब आज तक ये नाटक हिंदी में चल रहा है। अब मैं वो रोल मेरे मैंने बंद किया तो रमन कुमार करता था वो रोल, मैं कोई और रोल करने लग गया, रमन कुमार के बाद राकेश बेदी वो रोल करने लग गया, फिर राकेश बेदी बड़ा हो गया, वो 20 साल का नहीं लगता, बड़ा लगने लग गया, तो अब कोई और बच्चा नया लड़का करता है, और मैं अब वो मनमोहन कृष्ण का रोल करता हूँ कभी कभी, और मैं जब राकेश बेदी अवेलेबल होता है तो वो मनमोहन कृष्ण का रोल करता है, अगर वो नहीं अवेलेबल तो मैं करता हूँ।
0: वाह वाह,
1: तो वो प्ले आज तक चलता आ रहा है। दूसरा प्ले जो मैंने आपको पहले कहा कि ये प्ले जो आखिरी क्षमा जो कैफी साहब का लिखा हुआ है, और जिसमें बलराज सहनी काम करते रहे, उसके बाद उस गालिब का रोल भरत कपूर करते रहे, अभी वो कमलजीत भरत कपूर का रोल करते हैं गालिब का रोल, और अभी हमने 56 साल की ट्रॉफियां बांटी हैं उसकी।
0: जी जी जी, काबली वाला भी चल रहा है।
1: काबली वाला अलग है, काबली वाला का ऐसा था कि यही जब मैं शबाना के संग प्ले कर रहा था तो रिंकी भट्टाचार्य जी विमलराज की बेटी वो आई परीक्षित सानी के संग आई थी, उन्होंने कहा कि रमेश तुम काबली वाला क्यों नहीं स्टेज पे खेलते। मैंने कहा काबली वाला

0: एज इट इज तो नहीं खेला जा सकता, नाटक का वर्जन बनाना पड़ेगा वो करके। मैं फिल्म के ऊपर से ले लेता हूँ, आपके ओरिजिनल डायलॉग ओरिजिनल चीजें लेके एक स्क्रिप्ट बना के आपको सुना दूंगा। और प्रचित सानी से कहा तुम रोल कर लो काबली वाला का, क्योंकि बलराज सानी ने रोल किया था। उन्होंने नहीं यार मैं अभी अब हिम्मत नहीं है स्टेज पे काम करने, वो टाइम अलग था, अब नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने आसिफ शेख से कहा कि भाई ये है तो आसिफ शेख करता है वो रोल काबली वाला का, और वो नहीं होता तो विकास रावत कभी प्रभार कर।
1: मैंने देखा है क्यूट प्ले है वो।
0: हाँ बहुत अच्छा है तो, लेकिन वो तो ओरिजिनल फिल्म से लिया हुआ है।

स्क्रिप्ट जो बनाई है फिल्म से लेके बनाई है और उसका हमने एक वर्चुअल स्टेज पे क्या हो सकता है उतना करके जमा लिया अपना और चलता है, लेकिन बहुत लंबा नहीं है, 40 मिनट का ही है प्ले। तो उसके साथ मैंने एक बार जाहिदा हैना करके एक पाकिस्तान की राइटर है, उन्होंने काबलीवाला लौट आया इन्हीं करेक्टर को लेके लिखा था और वो उन्होंने एक आर्टिकल सा लिखा, प्ले नहीं लिखा बता। तो मैं एज इट इज जब मेरा 40 मिनट का जिसको 2 घंटे पूरा चाहिए, तो मैंने तन्वी आदमी के संग सेकंड पोर्शन पढ़ने का रख लिया। अभी आपने देखा काबलीवाला जो एक्टरों के साथ अच्छे ये सोलो पढ़ती है काबलीवाला लौट आया, तो जिसको 2 घंटे का होता है तो तन्वी आदमी करती थी। तन्वी आदमी अवेलेबल नहीं हुई तो

0: राजेश्वरी सचदेव ने एक आध बार कर लिया, फिर लुबना सदीकी ने एक आध बार कर लिया। पढ़ना है भाई, तुम रीडिंग एक दो बार मेरे साथ कर लो और स्टेज पे पढ़ो। वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है और ये उसके सारे बीज जो है काबुलीवाला के लेके उन्होंने लिखा कि काबुलीवाला जब उसकी बेटी पैदा, वो बच्ची जो बड़ी हो गई है, वो छोटी बच्ची बड़ी हो गया और वो डॉक्टर बन गई है और अफगानिस्तान में मरीज है आजकल और उनका इलाज करने वहां गई है। ऐसा लिखा, बहुत अच्छा लिखा हूं। तो वो पोर्शन हमने काबुलीवाला हमारा चलता रहता है।
1: रमेश जी, बहुत ही विस्तार से अब बातें हुई हैं और बहुत दिलचस्प कहानियां आपने सुनाई अपनी जिंदगी की, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए।
0: आपका शुक्रिया भाई, ये अंदर की सारी बातें आपने निकलवा दी मेरे, ये मैं खुद भूल चुका था, अभी कई बातें याद कर रहा हूं, कुछ नाम याद नहीं आते हैं। अरे भाई उसका वो तो भी ये आपका ही वो था कि आपने आराम से सुना और इतनी देर तक सुना मुझे।
1: बहुत शुक्रिया सर।
0: शुक्रिया जनाब।
2: आ जाऊं।

0: ये थी रंगमंच और फिल्मों के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज आपने पांचवां भाग सुना। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: तारा में आज
2: उजाले।

0: वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए, ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ या लिक्विड जो भी नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसका आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

अभी विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जा रहे थे। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है।

ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। प्रायोजक हैं सीएफ वन विभाग सरगुजा।

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर मंडल के रामानुजगंज, वाड्रफ नगर और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 25 है। ये चिनिया, महावीरगंज, शिवपुर, कनकपुर, टकिया, मेंढारी, करमडीहा, भगवानपुर, नवापारा, कुंदीकला, जामदोहर, अखोरा, जवाखाड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 20 है। ये पूर्णिपा, घंघरी, सकालो, सरगवा, गुल्हाड़ी, पड़ौली, अमड़ी, किशुनपुर, मिर्गाडांड, मनोहरपुर, पंडरीपानी, डांडगांव, बरवाली, बरडांड, दांतीढाप, कंडराजा, बैगहवा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव, तपकरा और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 35 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, रानी कोम्बो, कुंजारा, लोटापानी, मयूर चूंदी, बरटोली, खड़ामाचा, राजा आमा, झिमकी, चट्टान पारा, महुआडी, खुटसेरा, पतेबहाल, झिक्की, खंताडांड, परसाडांड, पेटा, सामरबार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 137 है। ये गिरसा, पोटिया, आमगांव, रुपुंगा, तेजपुर, बेहरामार, बनहर, अवरानारा, पुरुंगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के एतमानगर, जडगा और किंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये कुदवारी, सलिहा भाटा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, डंगबोरा, खड़पड़ी, फुलसर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये बंगूरसिया, नवागांव, चक्रधरपुर, जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ वन मंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये आमाकोनी, नवापारा, सरायपाली, गंधरा चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के रवान और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये मुरुमडी, गुड़ागढ़, फुरफुंदी, दलदली, तालाझर, झालपानी, कौहा बहरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडईपानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारीपानी, डूमरघाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले।

0: मामले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोट।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। प्रायोजक थे CF वन विभाग सरगुजा। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 5:05 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज में। फिल्म है मैंने प्यार किया, देव कोहली के शब्द, राम लक्ष्मण का संगीत।

आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत दी ग्रेट गैम्बलर। इस फिल्म का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं गायक कलाकार आशा भोसले, अमिताभ बच्चन और साथ ही गीतकार आनंद बख्शी, आर डी बर्मन ने संगीत दिया है।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: श्रोताओं, महिला सभा हेतु सूचना सुनिए। फोन करे गीत सुने का प्रसारण महीने के चौथे मंगलवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 26 मई 2026 मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 25 मई 2026 सोमवार प्रातः 11:00 से 11:30 के बीच की जाएगी। आपसे चर्चा का विषय होगा नई पीढ़ी की माँ। आप जिन फिल्मों के गीत सुन सकते हैं उनके नाम हैं फटा पोस्टर निकला हीरो, यारियां, चक दे इंडिया, रंग दे बसंती। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं इन नंबरों पर 07752, यह हमारा एसटीडी कोड है बिलासपुर का, और हमारा फ़ोन नंबर है 26659231002। आपके फ़ोन का हमें इंतज़ार रहेगा।

सूचना समाप्त हुई। बढ़ते हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत की ओर और अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में सनी फिल्म का ये गाना। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है, आर डी बर्मन ने तर्ज बनाई है।

निकाह फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज़ में। हसन कमल के शब्द पर रवि का संगीत था। और अब कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के युगल स्वर में। आइए सुनते हैं हमजोली फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी ने गीत रचना की है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो। पलारी से आप हैं वीरेंद्र कुमार साहू, सोनू, आशीष, कपिल साहू। भाटापारा से केआर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल रजक, मुरली क्षत्रिय। रोहांसी से आप हैं मुकेश साहू, नंदनी साहू, मनीष साहू, मयंक साहू और जानकी साहू। चंद्रनगर सहारनपुर से कौशल्या जोशी, अजीता जोशी। गोवर्धन रोड से दुर्गा कुमारी। बागबहरा भद्रसी से पन्नालाल सेन, खुशबू सेन, तारा सेन, कौशल सेन। राजस्थान सादुल शहर से आप हैं राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। हटरी चौक बिलाईगढ़ से खिकराम देवांगन, रेनू रजनी, प्रियंका देवांगन। सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, बाबूलाल चौधरी, निर्मलाबाई चौधरी, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, योगेश मालाकार और इनका पूरा मालाकार परिवार। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा। दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से आप हैं मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद मिफरा, नाज बेबी चाहत। गांव कुम्हार हेड़ा से सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना, हसन, नाजिया, इब्राहिम। पलारी से पराग, नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पूना राम, कृष्णा देवांगन। बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता प्रजापति और शशिकांता प्रजापति। उत्तम नगर दिल्ली से आप हैं बोधराम खोरवाल, कमला रानी, गीतिका भानो। भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा। भानबेड़ा मुंगवाल से भारत राम पटोडी, जयंती, हेमंत, उमंग, मोक्ष पटोडी। साल्हेभाटा महासमुंद से आप हैं जीतू ध्रुव, केवल ध्रुव, किरण, दिव्यांशी, खेमू ध्रुव। नांदुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बांठे, संदीप, अमूल्य। अम्बागढ़ चौकी से आप हैं रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। भूतकछार लोरमी से दुर्गेश मरकाम, निर्मला, दीपक, प्रीतम, धनराज मरकाम। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, साई समर्थ और धनंजय कटनकर। सरोज चौक अमरावती से आप हैं कमरुल्ला और नसीम बानो। इसी गीत के लिए हमें ईमेल भेजा है कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा, ऋषभ सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू, रितु सिंह। आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का चित्रपट संगीत यहीं पर समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 5:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने। कार्यक्रम का पहला गाना हम आप तक पहुंचा रहे हैं राहत फतेह अली खां की आवाज़ में। फिल्म का नाम है सुल्तान। इरशाद कामिल के शब्द, विशाल शेखर का संगीत और पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी जिनके ईमेल हमें प्राप्त हुए हैं उनके नाम हैं

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत। फिल्म का नाम है दीवाना। कुमार सानू ने इसे गाया है समीर के बोल और संगीतकार हैं नदीम श्रवण। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी सिरकोतंगा महादेव पारा पोस्ट लहपटरा जिला सरगुजा से योगेश कुमार राजवाड़े, श्याम राजवाड़े, परमान राजवाड़े, लल्लू बल्लू, घन्नू, अमित कुमार, अभिजीत, गोविंद, तरुण, सकल, राम, प्रियांशु, राजकुमारी, नेहा, नायरा, समायरा, खुशी, सौम्या, उमेश्वरी, मुन्नी बाई, सोनमती, माया राजवाड़े, सिमरन राजवाड़े और इनका पूरा राजवाड़े परिवार।

शर्मा, मीना, योगेश, निवान, सौरभ, शाइना शर्मा, आप सभी हैं पंजाब से। मस्तानपुरा पूर्णा जंक्शन से आप हैं अनंता भगत, अरुणा भगत, सुलोचना भगत, चेतन भगत। और इसी गीत के लिए हमें ईमेल मिला है ज़िला यवतमाल से जयराम, दिशांत और अर्पिता का। भाटापारा से दानसी रावत, दानू पद्मिनी रावत, शुभम और सौरभ रावत। पानीपत हरियाणा से आप हैं अनिल कटारिया, मंजू नरेश, मल्होत्रा, ज्ञान भूषण शर्मा। अंबाला हरियाणा से आप हैं रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, ब्रिजेंद्र कुमार, जयजान, नूर नमत, सिमरत मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल। चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा। भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक, श्याम कुंवर, प्रमिला, श्याम कुंवर, आसमा, श्याम कुंवर। नागर कोहरा ज़िला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से आपने इसी गीत को पसंद किया है बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, बेबी, आराध्या साहू। मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनमय शफ अब्बासी, रसीद वारसी, शहनाज अब्बासी। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े। नेहरू वार्ड भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत साहू, राघवेंद्र साहू। जमशेदपुर से आप हैं अपूर्व सिंह, अनुपम कुमारी, राकेश कुमार। सहारनपुर से सोनाली नारंग, आशा नारंग, सुरेश नारंग, पथिक और कृषिव ने इसी गीत को पसंद किया है। सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली से गजानंद येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अवंतिका येले। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से आप हैं यशोधरा और श्राव्या। पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनल विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी। लक्षनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निमी शिवम, सतीश मुकेश कुमार साहू। सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, रेशमा थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आदिबा थापा और आसमा थापा। भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, सरिता गरिमा। आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती।
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता।
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत।
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट।
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल। 22 की बातें यादों के उजाले।
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग।
3: सखी सहेली।
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे।
1: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा।

0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
0: मन का सुकून, दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
2: मोहम्मद रफी किशोर कुमार का युगल स्वर है दोस्ताना फिल्म। आनंद बख्शी के शब्द, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। पसंद करने वाले इस गीत को हमारे श्रोता साथी हैं जिनके ईमेल हमें प्राप्त हुए हैं। जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल। जमशेदपुर से आप हैं रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल। देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश राम। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी नोमेश सिंगरौल, नेहा और वानिया सिंगरौल ने इसी गीत को पसंद किया है। रायपुर से आप हैं नीलू मेघ, वंदना कुमार, बिट्टू कुमार। बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू। भाटापारा से बचकमल, मोतीलाल यादव, सियाराम चोवाराम वर्मा, सूरज बारीकर, नारायण यदु, भुवन कामरी। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान अबान अब्बासी और इनका पूरा अब्बासी परिवार। भाटापारा छत्तीसगढ़ से विष्णु साहू, पूरब साहू, वीरा साहू, हर्ष साहू, कुमकुम साहू, योगेश्वरी साहू। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, निधि, निखिल, यश, शिवम, अजीत और अमित वर्मा। महाराष्ट्र से संतोष और विनोद ने इसी गीत के लिए हमें ईमेल भेजा है। भाटापारा छत्तीसगढ़ से आप हैं हिमकेश्वर साहू, करण, राहुल साहू, चंपा साहू। परिवार कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले, पुनावले। पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने और अविका। दुर्ग से आप हैं संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ शौर्य नामदेव। पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती। ग्राम पीपरलोड सरगांव से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। कोरासी भैंसा से पवन कुमार साहू, क्रांति देवी साहू, पंकज साहू, सुस्मिता, दीपिका साहू। रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से प्रशांत शिंद, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे। कनेरा मोहल्ला पटियाला से आप हैं मुकेश बत्ता, नीलम। बिहार से वसीम अकरम, शबनम, गुड़िया खातून। जिला धमतरी से रीना सेन, पिंकी, कांति सेन। राजस्थान से मेहर अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा। आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ईमेल करे गीत सुने। इसका शेष भाग हम आपको सुनवाएंगे 6:20 पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज और कल की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 6:05 पर जिले की चिट्ठी हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। 6:10 पर छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार और 6:45 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार हम रिले करते हैं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। कानून की बात आज इसमें आप सुनेंगे निशुल्क विधिक सहायता योजना, लोक अदालत, नए आपराधिक कानून में भरण पोषण के प्रावधान, इस विषय पर जानकारी देंगे श्री रविंद्र कुमार साव, असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल रायगढ़। इस कार्यक्रम को हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आज शाम 6:30 पर। ईमेल करे गीत सुने, इस कार्यक्रम को हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 6:20 पर और इसका शेष भाग सुनिएगा शाम 7:00। ग्राम सभा का प्रसारण समय होगा 7:20 पर। आज बेरा के गोठ का विषय होगा कृषि यंत्रीकरण और सुनिएगा फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम आप मन के गीत। सुगम संगीत सुनिएगा रात 8:00। आज गायक कलाकार हैं सुखदेव और रजनीगंधा का प्रसारण समय होगा रात 8:15 पर। ये तो थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कल शाम 5:00 माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए जाने वाले पद्म पुरस्कार 2025 नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव प्रसारण हम करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कल सुबह 6:30 पर सुनिएगा खेती की बात, विषय होगा प्याज के उन्नत खेती। फ्लैगशिप कार्यक्रम नौविहान का विषय होगा राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं 6:45 पर। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों के कार्यक्रम अमराई में सुनिएगा रजनी रजक, राजकुमार राजपूत, सुशील ध्रुव और साथी को, इस कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा 8:30 पर। युवा जगत में आज की बात के तहत विषय होगा वर्ल्ड फुटबॉल डे, क्रम में होगा कला साहित्य, इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे कल शाम 5:35 पर। ग्राम सभा में बेरा के गोठ का विषय होगा राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना, इस कार्यक्रम में डॉक्टर निवेदिता पाठक विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विकास केंद्र बिलासपुर से भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी, विषय होगा पोषण वाटिका का महत्व एवं आधुनिक मॉडल, भेंट करता होंगे वीरू भैया, इस कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा 7:20 पर। 8:15 का समय होता है कार्यक्रम रजनीगंधा का और सुगम संगीत का प्रसारण समय होगा रात 8:00। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। 6:05 होने वाले हैं। जिले की चिट्ठी, इस कार्यक्रम को हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। 6:10 पर छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी के बाद हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। लीजिए सुनिए गौरेला पिंडरा मरवाही जिले की चिट्ठी। आलेख हरीश मांडवा का है।
1: श्रोताओं नमस्कार। जिले की चिट्ठी के आज के अंक में हम लेकर आए हैं गौरेला पिंडरा मरवाही जिले की चिट्ठी। इसके जरिए हम आपको अगले 5 मिनट में जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। श्रोताओं गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में डायल 112 सेवा के तहत 7 अत्याधुनिक इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल और 2 हाईवे पेट्रोलिंग वाहन प्रदान किए गए हैं। पिछले दिनों पिंडरा स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मरवाही विधायक प्रणव कुमार मरपच्ची ने हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को रवाना किया।

0: अवसर पर श्री मरपच्ची ने बताया कि डायल 112 सेवा से जिलेवासियों को किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता मिल सकेगी। वहीं पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार खिलारी ने बताया कि डायल 112 सेवा पहले राज्य के 16 जिलों में संचालित थी, अब इस सेवा का विस्तार प्रदेश के सभी 33 जिलों में कर दिया गया है। श्रोताओं, जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य निर्धारित समय से पहले पूरा कर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला प्रदेश का पहला जिला बन गया है। इस उपलब्धि पर कलेक्टर और प्रमुख जनगणना अधिकारी डॉ संतोष कुमार देवांगन ने जनगणना कार्य में लगे 600 से अधिक अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। गौरतलब है कि प्रदेश में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य 1 मई से शुरू हुआ है, जो 30 मई तक चलेगा। श्रोताओं, जिले में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति को सुचारू और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए कलेक्टर डॉ संतोष कुमार देवांगन ने पेट्रोल पंप संचालकों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत बड़े वाहनों में अधिकतम 100 लीटर, कार में 20 लीटर और दोपहिया वाहन में 2 लीटर तक पेट्रोल डीजल उपलब्ध कराया जाएगा। जिला प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि आदेशों का पालन नहीं करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस बीच राज्य शासन ने सभी पेट्रोल डीजल पंपों पर ड्रम, बोतल और जेरिकेन में ईंधन की बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी है। हालांकि रबी खरीफ सीजन के लिए किसानों, कलेक्टर द्वारा चिन्हांकित शासकीय निर्माण कार्यों और अस्पताल, मोबाइल टावर जैसी अत्यावश्यक सेवाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी के परीक्षण के बाद सुरक्षा मानकों के अनुरूप बिक्री की अनुमति होगी। श्रोताओं, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में 22 मई को जिला स्तरीय मूल्यांकन और निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक में जिले के 3 नगरीय निकाय से प्राप्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का अनुमोदन राज्य स्तरीय समिति के लिए किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर पालिका परिषद गौरेला के 21 और पेंड्रा के 38 तथा नगर पंचायत मरवाही के 68 हितग्राहियों के आवेदन अंतिम स्वीकृति के लिए राज्य स्तरीय समिति को भेजे गए हैं। समिति से मंजूरी मिल जाने के बाद इन हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सकेगा। श्रोताओं, खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसानों को एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य है। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि जिले में 800 से अधिक किसानों का एग्रीस्टेक पोर्टल में अभी तक पंजीयन नहीं हुआ है। ये किसान आदिम जाति सेवा सहकारी समिति अथवा लोक सेवा केंद्र में जाकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पोर्टल में बिना पंजीयन के किसानों से धान खरीदी नहीं की जाएगी। श्रोताओं, जिले के आमाडोब और केवची गांव के जंगलों से संग्रहित प्राकृतिक शहद को अब बेंगलुरु भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत गठित स्व सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा संग्रहित इस शहद की ब्रांडिंग और पैकेजिंग का कार्य एक निजी कंपनी द्वारा किया जा रहा है। कलेक्टर डॉ संतोष देवांगन ने कहा कि स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों को राज्य से बाहर नई पहचान दिलाने और महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की दिशा में ये पहल महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। श्रोताओं, गौरेला स्थित जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में 26 मई को सुबह 10 बजे से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, फील्ड ऑफिसर और ट्रेनिंग ऑफिसर सहित 72 पदों पर भर्ती की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक अभ्यर्थी जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। अगले रविवार एक नए अंक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की चिट्ठी। आलेख हरीश मांडवा का था। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग अनुरिमा शर्मा की जय जोहार। आप सुनो आज के प्रमुख समाचार। राज्य सरकार ह खरीफ बछर 2026 बर सहकारी क्षेत्र में खातु बांटे संबंधी जारी करिस नवा दिशा निर्देश। नई दिल्ली में होइया नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति बछर 2026 बर काली देही पद्म पुरस्कार औ कांकेर नारायणपुर के सीमावर्ती जगह में सुरक्षा बल मन दू ठीन आने आने जगह ले बरामद करे है नक्सल डंप। अब समाचार विस्तार ले। राज्य सरकार ह खरीफ बछर 2026 बर सहकारी क्षेत्र म खातू बांटे संबंधी नवा दिशा निर्देश जारी करे हे। एकर मुताबिक

0: पाछू बछर किसान मन ला बांटे गे खातू के मात्रा के आधार मा ए बछर के कोटा तय करे गे हे। एखर चलत ए बछर किसान मन ला यूरिया के 80% मात्रा ही पारंपरिक यूरिया के रूप में दे जाही, बांचे 20% मात्रा ला उपलब्ध आधार में दे जाही या फिर एखर बदला नैनो यूरिया दे जाही। डीएपी बांटे के काम घलो पाछू बछर के मुकाबला 60% करे गे हे। बांचे 4% ला वैकल्पिक एनपीके उर्वरक या नैनो डीएपी दे जाही। शासन ने स्पष्ट करे हे कि कोनो भी किसान ला नैनो खातु ले बर मजबूर नहीं करे जाही, एह ऑप्शन रूप में रही। यहाँ बता दन कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय हालत और खाड़ी क्षेत्र में चलत तनाव ला देखत राज्य सरकार ह किसान मन ला बेरा मा खातु दे के निर्णय ले हे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू काली 25 मई के नई दिल्ली में होइया नागरिक अलंकरण समारोह में बछर 2026 बर पद्म पुरस्कार देही। ए मौका में आकाशवाणी है अपन श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के तहत 16 ठिन कार्यक्रम प्रस्तुत करत है। ए एपिसोड में पद्म पुरस्कार विजेता मन के काम और जीवन के बारे में जानकारी दे जाही। एकर प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 चैनल में करी जाही। एला न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में घलो सुने जा सकत है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी हा नियम कानून में सख्ती राखत नवा गाइडलाइन जारी करे है, जेखर मुताबिक अब हवाई यात्री मन एयरपोर्ट के सुरक्षा होल्ड एरिया में मोबाइल ले रील बनाना पूरी तरह ले बैन रही। संगे जउन जगह में हवाई जहाज खड़े रही और बस ले यात्री मन ला विमान ले जाए जाही वहां तक वाली जगह में रुक के रील फोटो या वीडियो बनाए ऊपर घलो रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार हा जन परामर्श बर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत मसौदा नियम प्रकाशित करे है। ग्रामीण विकास मंत्रालय हा कहे है कि कोनो भी मनखे हितधारक संगठन या संस्था अवैया महीना के 21 तारीख तक ए मसौदा नियम मन ऊपर आपत्ति या सुझाव दे सकत है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ए बछर 1 जुलाई ले सबो राज्य मन मा लागू हो जाही। छत्तीसगढ़ सरकार हा कहे है कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के कोनो कमी नहीं है और आम लोगन ला घबरा के उपरहायला बिसाए के जरूरत नहीं है। सरकार के मुताबिक राज्य में करीबन 3,94,00,000 लीटर पेट्रोल और 8,08,00,000 लीटर ले ज्यादा डीजल के भंडार उपलब्ध है। किसान और जरूरी सेवा मन ला प्राथमिकता देवत ईंधन के रोजिना आपूर्ति जारी है। राज्य में 22 मई ले ड्रम और जरीकेन में पेट्रोल डीजल दे ऊपर रोक लगाई गई है। सरकार हा लोगन मन ला अफवाह ले बांचे की अपील करे हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा आज 2 पाली में राखे गे रहीस। ए दरी परीक्षा देवैया मन ला पहली घाव फेस स्कैन सिस्टम ले गुजरे ला पड़ी से। चेहरा मैच होए के बादे उमन ला परीक्षा केंद्र भीतरी जाए के परमिशन देगीस। परीक्षा ला लेके कड़ा सुरक्षा व्यवस्था रहीस। ए परीक्षा पर रायपुर जिला में 22 ठिन केंद्र बनाए गए रहीस। सुप्रीम कोर्ट हा विशेष आवश्यकता वाले लैका मन के पढ़े लिखाई ला लेके छत्तीसगढ़ शासन ला विशेष शिक्षक मन के भर्ती प्रक्रिया ला 2 महीना भीतरी पूरा करे के निर्देश दे है। एक ठिन याचिका के सुनवाई बेरा अदालत हा कहिस कि राज्य में 49,000 ले ज्यादा विशेष आवश्यकता वाले लैका मन पर करीबन 4,000 विशेष शिक्षक के जरूरत है। राज्य सरकार हा अदालत ला बतेस कि 848 स्वीकृत पद में ले 62 जिन शिक्षक मन के नियुक्ति हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट है कहिस कि 155 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और 85 जिन विशेष शिक्षक मन ला स्क्रीनिंग कमेटी के आगू में प्रस्तुत होए के मौका दे जाए। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़बो बांचे समाचार डहार। छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल डहार ले प्रदेश के सबो डाकघर मन मा काली और परंदिन यानी 25 और 26 मई के अल्प बचत खाता खोले बर विशेष अभियान चलाया जाही। ए दौरान

0: कोनो भी नागरिक अपन तीर तखार के पोस्ट ऑफिस जाके या राज्य सरकार डहर ले नियुक्त अधिकृत एजेंट मन के माध्यम ले अल्प बचत योजना जैसे मासिक आय योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना ये सब में निवेश कर सकी। नक्सल उन्मूलन अभियान के चलत कांकेर नारायणपुर के सीमावर्ती जगह में सुरक्षा बल मन दू ठी नानिया ने जगह ले डंप बरामद करे हैं। डीआरजी, बीएसएफ और बीडीएस के संग्रह टीम हां कांकेर जिला के कोयलीबेड़ा के थाना जगह के गांव पल्लाहूर और जपमरका तीर जंगल भित्री लुका के रखे गए नक्सल डंप बरामद करे है। एमा बीजीएल लॉन्चर, बीजीएल सेल, फायर कार्टिज, AK-47 और SLR के खाली कार्टेज समेत बड़कन विस्फोटक जिनिस घलो है। इस तरह सुरक्षा बल मन कांकेर नारायणपुर सीमावर्ती जगह के गांव मरका बेड़ा आदनार और एलूर के जंगल भित्री ले घलो नक्सल जिनिस बरामद करे है। एमा 3 ठी 12 बोर के राइफल, बीजीएल लॉन्चर, बारूद और इलेक्ट्रिक डेटोनेटर समेत विस्फोटक जिनिस शामिल है। उथी राजनांदगांव जिला के बॉर्डर ले लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली माओवादी विरोधी अभियान के चलत पुलिस ला भारी सफलता मिली है। पुलिस का सर्चिंग ऑपरेशन बेरा इहोले नक्सली डंप बरामद करे है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के सरिया पुलिस धान खरीदी में फर्जीवाड़ा के खुलासा करत साले ओना उपार्जन केंद्र के समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर ला गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेज दे है। एखरबन ऊपर आरोप है कि बिना धान के वास्तविक आवक के ऑनलाइन एंट्री करके करीबन 99 लाख रुपया के गबन करेगे है। ये मामला में सहायक खाद्य अधिकारी के रिपोर्ट पर मामला दर्ज करेगी। अब पेश है मौसम के हाल। प्रदेश में ए बेरा जोरदार गर्मी पड़त है जेखर ले जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग का चेताए है कि अवैया 24 घंटा के दौरान रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और महासमुंद समेत प्रदेश के 18 ठीन जिला में ले एक दो जगह में लू चल सकत है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम ले अवैया शुष्क और तात्त हवा के सेती तापमान बढ़ गए हवे और एक स्थिति फिलहाल गर्मी ले राहत नहीं मिला थे। वहीं आज रायपुर में 43.6, बिलासपुर में 43.4 और जगदलपुर में 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज करेगी। यही बीच विशेषज्ञ मन लू ले बांचे वर सावधानी बरते की अपील करे हैं। लोगन मनला भरपूर पानी और तरल पदार्थ पिए के संगे हल्का रंग के सूती कपड़ा पहने और पूरा शरीर लतोप के राखे के सलाह दे हैं। संगे बिना काम के बाहर नहीं जाए के अपील करे हैं। अब थोरकुन समाचार सार मा बलौदाबाजार भाटापारा जिला मा जिला शिक्षा अधिकारी है दू झीन सहायक शिक्षक ला सस्पेंड कर दे है। ये दोनों पर कर्तव्य पालन में लापरवाही बरते के आरोप है। रायपुर पुलिस ने पंजाब ले नशा के तस्करी करिया एक ठे गिरोह के पर्दाफाश करत 3 झीन आरोपी ला गिरफ्तार करी है। एखर मंतिर ले करीबन 56 ग्राम हेरोइन जब्त करे गए है और बिटकॉइन में निवेश करके मुनाफा देवाए के झांसा दे के एक झीन मनखे ले 7.5 लाख रुपया के धोखाधड़ी के मामला में दुर्ग पुलिस ने एक झीन आरोपी ला रायपुर ले गिरफ्तार करे है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। राज्य सरकार खरीफ बछर 2026 बर सहकारी क्षेत्र में खातु बांटे संबंधी जारी करीस नवा दिशा निर्देश। नई दिल्ली में हुवैया नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति बछर 2026 बर काली देही पद्म पुरस्कार और कांकेर नारायणपुर के सीमावर्ती जगह में सुरक्षा बल मन दू ठीन आनियानी जगह ले बरामद करे है नक्सल डंप। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिलावत है। जय जोहार।
1: जिले की चिट्ठी और छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:20 होने वाले हैं। लीजिए सुनिए ईमेल करें गीत सुने का दूसरा भाग। श्रोताओं, कार्यक्रम को शुरू करने से पहले महिला सभा हेतु एक सूचना हम आप तक पहुंचा रहे हैं। श्रोताओं, फोन करें गीत सुने का प्रसारण महीने के चौथे मंगलवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 26 मई 2026 मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 25 मई 2026 सोमवार प्रातः 11 बजे से 11:30 के बीच की जाएगी। आपसे चर्चा का विषय होगा नई पीढ़ी की माँ। आप जिन फिल्मों के गीत सुन सकते हैं उनके नाम हैं फटा पोस्टर, निकला हीरो, यारियां, चक दे इंडिया, रंग दे बसंती। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं इन नंबरों पर। हमारा फ़ोन नंबर है 2665923100026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07

7752 अवश्य लगाएं। आपके फ़ोन का हमें इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई और शर्मिली फिल्म का गीत हम आप तक पहुंचाएंगे। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़, नीरज के शब्द हैं, एसडी बर्मन का संगीत। पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी जो हैं उनके ईमेल हमें प्राप्त हुए हैं, जिनके नाम हैं मुकम पोस्ट फुल चिंचौली तालुका पंडरपुर से आप हैं, जाकिर, सुमैया, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर और इनका पूरा परिवार। चमनपुरा मोरबी से आप हैं प्रमिला, दीपक और आशु जेटली। रायपुर से विनोद, वीणा और विविधा। इसी गीत के लिए हमें ईमेल मिला है जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवेद इरशाद, अजरा तबस्सुम। रायपुर से अनी, ज़िला बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी, आफिया परवीन। मुंबई से आप हैं आमना अंसारी, जुबैदा और नसरीन अंसारी। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानु, प्रिया देवाशीष। तेलीपारा बिलासपुर से गुणवंत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक, बेबी, आयुषी श्रीवास। बिहार से आसमा, दुखना रानी और वली भाई अंसारी ने इसी गीत को पसंद किया है। करनाल से सुधीर नूतन और संदीप। पंजाब से भूषण विष्णु विशाल। दिल्ली शहर से राज वली अंसारी, डब्लू वली अंसारी और ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या खुराना। बागपत उत्तर प्रदेश से आप हैं संजय, ममता। चांदनी चौक गड़ई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक सेन। कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश देवांगन, आशीष देवांगन, रवि, मोनू, सोनू कान्हा, आदित्य देवांगन। छत्तीसगढ़ लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू। संबलपुर से शिवदयाल वर्मा, नरोत्तम वर्मा, तुषार वर्मा, वंशिका वर्मा। जांजगीर चांपा से दिलदार मिरी, ज्योति, जानवी, दीक्षांत मिरी। पोड़ी भाटा अकलतरा से आप हैं दिलीप चंदन, चोवाराम यदु, निखिल चंदन, वसुंधरा चंदन, प्रांजल चंदन। पलचुआ मुंगेली से आप हैं उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, भानुप्रिया, योगिता, नितिन और वंशिका दिवाकर।

शर्मिली फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार नीरज और संगीत दिया था एसडी बर्मन ने। इसी के साथ ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका अंतिम भाग आप सुनेंगे शाम 7 बजे। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 6:30 होने को हैं। कानून की बात इस कार्यक्रम को अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। इस कार्यक्रम के बाद 6:45 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।

आकाशवाणी रायपुर है। कार्यक्रम कानून की बात में लीजिए सुनिए। निशुल्क सहायता योजना, लोक अदालत, नए आपराधिक कानून में भरण पोषण के प्रावधान विषय पर असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल रायगढ़ श्री रविंद्र कुमार साव से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता है प्रतिमा अजमानी। यह आकाशवाणी रायगढ़ की प्रस्तुति है।

0: श्रोताओं, जीवन में रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और वो जीवन भर के लिए होते हैं, जैसे माता पिता और संतान का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता। कई बार समय का चक्र कुछ इस तरह घूमता है कि इन रिश्तों के बीच कानून को मदद के लिए आगे आना पड़ता है, ताकि हर एक व्यक्ति को जीवन की बुनियादी सुविधाएं मिल सके। आज कार्यक्रम कानून की बात में जानकारी लेंगे। नए आपराधिक कानून में भरण पोषण के प्रावधान, निशुल्क विधिक सहायता योजना और लोक अदालत की। स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है श्री रविंद्र कुमार साव जी को, जो असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के पद पर रायगढ़ छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। नमस्कार सर।
1: नमस्कार मैडम,
0: स्वागत है आपका।
1: जी धन्यवाद।
0: रविंद्र जी, सबसे पहले हम चाहेंगे आप हमें बताएं कि निशुल्क विधिक सहायता योजना क्या है।
1: जी देखिए, अक्सर हम सुनते हैं कि कोर्ट कचहरी का चक्कर बहुत महंगा होता है।
0: जी,
1: और हमारे देश में आज भी समाज दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा जो पूंजीपति वर्ग का है, या जिनके पास पर्याप्त पैसे हैं, वो आसानी से अपने लिए बड़े से बड़ा और महंगा से महंगा वकील खड़े कर लेते हैं, जिससे उनको आसानी से न्याय मिल जाता है। पर आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिन लोग आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हैं, गरीब हैं, शोषण का शिकार हैं, बेसहारा हैं, या कई अन्य ऐसे कारण हैं जिसके वजह से वो कोर्ट नहीं जा पाते, अपने लिए वकील नहीं रख पाते। तो ये विधिक सहायता योजना उन्हीं लोगों के लिए है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश का कोई भी नागरिक केवल गरीब होने या किसी अन्य कारणों से अक्षम होने के कारण न्याय से वंचित न रह जाए।
0: बिल्कुल सर, विधिक सहायता योजना के क्या क्या लाभ आम जनता प्राप्त कर सकती है?
1: देखिए, इसमें मुख्य रूप से इस योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता के लिए वकील उपलब्ध कराना है। पर यह योजना यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इस योजना के अंतर्गत न सिर्फ वकील उपलब्ध कराए जाते हैं, बल्कि कानूनी प्रक्रिया के दौरान जो भी इसमें शुल्क आता है, वो सारे शुल्क विधिक सहायता के द्वारा ही दिया जाता है। साथ ही उनके आवेदनों की जो ड्राफ्टिंग होती है, वो सारे आवेदन तैयार किए जाते हैं, सलाह सहायता दिए जाते हैं। इसके साथ ही और भी अनेक
0: अलग तरीके की मदद भी दी जाती है लोगों को,
1: अन्य तरीके की मदद भी लोगों को दी जाती है। अभी वर्तमान में विधिक सहायता शिविर के माध्यम से भी आम जनता को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, और लोक अदालत के माध्यम से भी आपसी समझौते से लोगों के विवादों का निराकरण किया जा रहा है। ये भी विधिक सहायता योजना का ही एक अंग है।
0: जी रविंद्र जी, कौन कौन विधिक सहायता योजना प्राप्त कर सकते हैं?
1: विधिक सहायता योजना के लिए क्राइटेरिया बना हुआ है कि जैसे महिलाएं हैं एवं बच्चे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के कोई भी सदस्य प्राप्त कर सकते हैं, औद्योगिक श्रमिक या कर्मकार इसके अंतर्गत आते हैं, यदि कोई व्यक्ति जेल में बंद है और उसकी तरफ से कोई अधिवक्ता पैरवी के लिए उपलब्ध नहीं है, तो वह भी विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है। कोई दिव्यांग व्यक्ति है या आपदा पीड़ित व्यक्ति है, जैसे कि बाढ़, सूखा, भूकंप या दंगों का शिकार कोई व्यक्ति है, या गरीब वर्ग के लोग हैं जिनका आय एक निर्धारित सीमा, जो कि निर्धारित किया गया है विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिनियम में, यदि उस आय से वो कम आय रखते हैं तो उन्हें भी विधिक सहायता दिया जा सकता है।
0: जी रविंद्र जी, इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
1: जी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे यदि कोई भी व्यक्ति इन सेवाओं का लाभ लेना चाहता है, तो अपने स्थानीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में जाकर एक साधारण सा आवेदन दे सकता है।
0: जी
1: यदि उसे आवेदन भरना नहीं आता है, तो कार्यालय में जो भी कर्मचारी हैं या पैरालीगल वॉलंटियर हैं, वो पूरी तरह से सहायता करते हैं।
0: जी ये बहुत सही है, क्योंकि जो कानून के शब्दों में जिस तरीके का आवेदन किया जाता है, वो लोगों के लिए उतना सरल नहीं होता।
1: जी जी मैडम, अक्सर विधिक सहायता के लिए ऐसे लोग आते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, गरीब वर्ग के होते हैं, और कानूनी बातों को वो समझ नहीं पाते।
0: जी
1: तो हमारे पैरालीगल वॉलंटियर या विधिक सहायता के कर्मचारी आवेदन फॉर्म भरने में उनका पूरा सहायता करते हैं। इसमें कुछ बेसिक डिटेल और बहुत ही कम दस्तावेज, जैसे कि आधार कार्ड या आय प्रमाण पत्र जैसे सामान्य दस्तावेज ही लगते हैं।
0: जी
1: तो उन दस्तावेजों के आधार पर वो उनकी जानकारियां पूरी खुद से भर देते हैं, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा सहायता मिल सके।
0: जी तो रविंद्र जी, ये तो हो गया कि हम वहां जाकर मिल सकते हैं वकील से।
1: जी
0: पर इसके अलावा कोई और भी तरीका है जिससे हम इस विधिक सहायता केंद्र से संपर्क कर सकें?
1: जी मैडम बिल्कुल, यदि कोई व्यक्ति घर बैठे ही विधिक सहायता का फॉर्म भरना चाहे,
0: जी
1: तो नालसा के द्वारा nalsa.gov.in
0: जी
1: एक वेबसाइट का संचालन किया जा रहा है, जिसमें जो व्यक्ति कंप्यूटर के जानकार है या घर बैठे मोबाइल से भी अगर फॉर्म भरना चाहे, तो ऑनलाइन इस पोर्टल के माध्यम से वे आवेदन कर सकते हैं।
0: जी
1: इसके अलावा जैसे आवेदन फॉर्म भरने में या ऑनलाइन पोर्टल में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, या यदि उनको कोई कानूनी सलाह चाहिए, तो उसके लिए नालसा

0: के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर का भी संचालन किया जा रहा है जो कि नालसा 15100 है।
1: जी
0: इसमें पूरे देश भर के वकीलों को और जो लॉ में एक्सपर्ट हैं उनको जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से यदि उनका कोई भी कानूनी दिक्कत उस समय आता है
1: जी
0: तो तत्काल उसका समाधान उसमें किया जाता है।
1: बिल्कुल
0: ये पूरी तरह से निःशुल्क है मैडम, इसमें किसी प्रकार की कोई फीस देनी नहीं पड़ती है
1: जी
0: और हमेशा एक्सपर्ट अवेलेबल रहते हैं। जैसे
1: बिल्कुल
0: किसी समय यदि कोई एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं है या कोई प्रॉब्लम होती है तो
1: जी
0: कॉल तत्काल ही किसी दूसरे एक्सपर्ट को ट्रांसफर हो जाता है। या
1: अच्छा
0: इसमें एक सुविधा और भी है मैडम कि यदि तुरंत जवाब नहीं दे पाते हैं कोई एक्सपर्ट
1: जी
0: तो आपका नंबर ऑटोमेटिकली उनके आईडी पे चले जाता है
1: जी
0: और वे तुरंत जिस भी समय वो अवेलेबल हो तुरंत ही कॉल बैक करेंगे और आपका प्रॉब्लम पूछेंगे और जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसका निराकरण करने का प्रयास करते
1: जी
0: हैं।
1: बहुत अच्छी सुविधा आपने बताई रविंद्र जी,
0: जी
1: इससे लोगों को मुझे उम्मीद है काफी मदद मिली होगी और मन से एक तरीके का डर भी चला गया होगा।
0: जी
1: रविंद्र जी, अब हम चाहेंगे आप हमें लोक अदालत के बारे में बताएं।
0: मैडम, जैसा कि लोक अदालत नाम है, लोक का मतलब ही होता है जनता का अदालत।
1: जी
0: ये सामान्य अदालत की तुलना में अलग प्रकार का अदालत है जो विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ही आयोजित कराया जाता है।
1: जी
0: इसमें आपसी राजीनामा के आधार पर पक्षकारों के विवादों का निराकरण किया जाता है। ऐसे मामले जिनमें राजीनामा हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के मामले हों, जैसे कई आपराधिक मामले हैं जिनमें राजीनामा का प्रावधान है, या सिविल मामला है, या कोई लेन देन का मामला है, संपत्ति संबंधी विवाद है, या घरेलू मामला है,
1: जी
0: जिसमें राजीनामा हो सकता है, वहां पक्षकारों के आपसी समझौते के आधार पर मामले का निराकरण किया जाता है।
1: जी
0: सबसे ज्यादा फायदा इसमें यह है मैडम कि जैसे अगर आप किसी रेगुलर लोक अदालत में आवेदन करते हैं तो आपको कोर्ट फीस पे करना पड़ता है, वकील रखना पड़ता है, लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, कई पेशी
1: बिल्कुल
0: चलती है, इसी के साथ कई अन्य आवेदन और कानूनी प्रक्रिया का एक अच्छा खासा लंबा प्रक्रिया पालन करना पड़ता है।
1: जी
0: लेकिन लोक अदालत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोक अदालत में पीठासीन अधिकारी के सामने दोनों पक्षकार जाएंगे और जो भी समस्या होता है उसका आपसी बातचीत के माध्यम से निराकरण करने का प्रयास किया जाता है।
1: जी
0: जहां निराकरण हो जाता है वहां तत्काल ही उनको निर्णय दे दिया जाता है। लोक अदालत का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होता है, इसलिए वो हर जगह मान्य है।
1: जी
0: तो इससे पक्षकार जो लंबी पेशियों में लंबी कतारों में लगे रहते थे अब उनको सामना करना नहीं पड़ता, एक ही
1: जी
0: बार में उनके मामले का अंतिम निराकरण हो जाता है, कोर्ट
1: बिल्कुल
0: फीस पे करना नहीं पड़ता है तो कोर्ट फीस की भी बचत हो जाती है,
1: जी
0: एक ही दिन में निराकरण हो जाता है, इसलिए उनको कई कई सालों तक इंतजार करना नहीं पड़ता है। इसमें वकील रखने की भी आवश्यकता नहीं है मैडम,
1: जी
0: इसमें वकील की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना ही किसी प्रकार की कोई कानूनी बहुत लंबी जटिल प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। तो इसलिए ये लोक अदालत जनता की सुविधा के लिए, जनता का जनता के लिए अदालत ही वास्तव में लोक अदालत है।
1: जी सर, आगामी लोक अदालत कब है, हम चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: जी, आगामी लोक अदालत 12 सितंबर 2026 को आयोजित की जाने वाली है।
1: जी रविंद्र जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी विधिक सहायता योजना और लोक अदालत की हमारे श्रोताओं को दी। इसी कड़ी को अब आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे आप श्रोताओं को महिलाओं, बच्चों और माता-पिता के संबंध में भरण पोषण कानून के बारे में कुछ जानकारी दें। ये प्रावधान क्या है, हम चाहेंगे आप हमें बताएं।
0: भरण पोषण का प्रावधान पुराने दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 125 में था।
1: जी
0: वर्तमान में 1 जुलाई 2024 से नए आपराधिक कानून लागू हो जाने के बाद धारा 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इसका प्रावधान दिया गया है, जिसमें वे लोग जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं और अपना भरण पोषण कर पाने में पूरी तरह से असमर्थ हैं
1: जी
0: तो वे न्यायालय के माध्यम से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। जैसे ये विशेष रूप से बनाया गया है कानून की पत्नी, बच्चे तथा माता पिता जो अपना भरण पोषण कर पाने में असमर्थ हैं वे भरण पोषण मांग सकते हैं।
1: जी
0: पत्नी है यदि वो स्वयं का भरण पोषण नहीं कर पा रही है, बच्चे हैं चाहे वो उनके वैध वारिस हों, वैध बच्चे हों या अवैध संतान हो, दोनों ही प्रकार के संतान भरण पोषण मांग सकते हैं
1: हाँ
0: जब तक कि
1: हाँ
0: वो बालिक ना हो जाए।
1: जी
0: यदि कोई बालिक पुत्र है
1: हाँ
0: परंतु वह शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग है और
1: जी
0: अपना भरण पोषण नहीं कर पाता तो वह
1: जी
0: भी अपने पिता से भरण पोषण की मांग कर सकता है, और यदि माता पिता जो बुजुर्ग हो चुके हैं अब अपना भरण पोषण कर पाने में असमर्थ हैं तो वो भी अपने पुत्र से भरण पोषण मांग सकते हैं।
1: जी सर, कितनी राशि मिलती है भरण पोषण के लिए और क्या ये राशि कम या ज्यादा हो सकती है?
0: जी, हम बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ कोर्ट बहुत सारी चीजों को भरण पोषण के आवेदन का निराकरण करने के समय देखता है। जैसे जिस व्यक्ति से भरण पोषण की राशि वसूलनी है उस व्यक्ति का आय का स्रोत क्या क्या है, उसकी सैलरी कितनी है, उसकी अपनी कितनी जिम्मेदारियां हैं, और जिस व्यक्ति को भरण पोषण दिया जाना है उसका रहन सहन कितना है, ताकि सामने वाले व्यक्ति जिसको भरण पोषण

0: देना है, उसकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो
1: पूरी हो
0: सकें।
1: सके, बिल्कुल
0: तो इसके लिए कोई निर्धारित राशि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है,
1: जी
0: ये परिस्थिति को देखते हुए न्यायालय के द्वारा निराकृत किया जाता है।
1: जी वकील साहब, आदेश का पालन न करने पर क्या सजा मिलती है इस
0: इसमें
1: प्रावधान के तहत?
0: जी, यदि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध भरण पोषण का आदेश पारित किया गया है
1: जी
0: जानबूझकर भरण पोषण देने में अवहेलना करता है, जानबूझकर वो भरण पोषण नहीं देता है, तो सबसे पहले तो न्यायालय के पास ये अधिकार है कि न्यायालय चाहे तो गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है।
1: जी
0: गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर भी अगर वो भरण पोषण नहीं देता है तो सिविल कारावास में भी डाला जा सकता है।
1: हाँ
0: इसके अतिरिक्त जिस व्यक्ति से भरण पोषण वसूलना है उसके संपत्ति की कुर्की हो सकती है, जब्ती हो सकती है, या उसके वेतन से कटौती हो सकती है, और फिर भी यदि वो व्यक्ति जानबूझकर बार बार भरण पोषण देने में चूक करता है तो इसे न्यायालय अपने अवमानना समझकर अवमानना की कार्रवाई भी कर सकता है।
1: जी रविंद्र जी, फैसला आने में काफी समय लग जाता है, ऐसे में जिस व्यक्ति ने आवेदन किया है उसका जीवन किस तरह चलेगा, उसके लिए क्या उपाय है?
0: जैसा कि भरण पोषण का आवेदन प्रस्तुत करने के बाद और निराकरण होने के बीच में कई पेशी हो जाती है, और इस बीच में पक्षकार को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
1: जी
0: जैसे यदि पति या पत्नी हैं और वो अलग अलग रह रहे हैं तो उनके आने जाने का खर्च, खुराक खर्च
1: हाँ
0: और वो खर्चे, इस बीच में अंतरिम भरण पोषण का एक प्रावधान दिया गया है।
1: जी
0: अंतरिम भरण पोषण विशेष रूप से इसलिए बनाया गया है कि जब तक भरण पोषण का आवेदन निराकृत नहीं हो जाता और अंतिम रूप से ये निष्कर्षित नहीं किया जाता कि कितना भरण पोषण राशि आवेदक को दिया जाए या ना दिया जाए, इस बीच में उसे एक अस्थायी राहत के रूप में अंतरिम भरण पोषण दिया जाता है,
1: जी
0: जिसका मुख्य उद्देश्य ही यह है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक पीड़ित पक्ष को आर्थिक तंगी से बचाया जा सके। और अभी जो नया आपराधिक कानून आया है इसमें समय सीमा निर्धारित कर दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अंतरिम भरण पोषण के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है
1: जी
0: तो 60 दिनों के भीतर अदालत को अंतरिम भरण पोषण का आवेदन का निपटारा करना अनिवार्य है,
1: जी
0: और यह तब तक प्रभावी रहता है जब तक कि अंतिम फैसला नहीं कर दिया जाता।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को बताई। सर, अब मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि क्या शादीशुदा बेटी से भी माता पिता भरण पोषण की मांग कर सकते हैं?
0: जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे यदि कोई माता पिता है और उनकी एकमात्र पुत्री है या पुत्री ही पुत्री है, कोई
1: जी
0: पुत्र नहीं है, और उन
1: हाँ
0: पुत्रियों का विवाह हो चुका है, तो केवल शादी हो जाने मात्र से वो अपने माता पिता के प्रति दायित्व जो होता है उससे वो बच नहीं सकते। तो एक विवाहित पुत्री से भी भरण पोषण की मांग की जा सकती है।
1: जी और क्या सौतेली माँ भी भरण पोषण का दावा कर सकती है?
0: हाँ मैडम, बिल्कुल, सौतेली माँ भी भरण पोषण का दावा कर सकती है। यदि उसके खुद के संतान ना हो, सगे
1: हाँ
0: पुत्र पुत्री नहीं है, तो
1: जी
0: सौतेली माता पिता भी भरण पोषण मांग सकती है यदि वो अपना भरण पोषण स्वयं करने में असमर्थ है तो।
1: जी श्रोताओं, आज कार्यक्रम कानून की बात में हमने जानकारी ली नए आपराधिक कानून में भरण पोषण के प्रावधान की, निःशुल्क विधिक सहायता योजना और लोक अदालत की। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी सारी जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं ये जानकारी हमारे श्रोताओं के जरूर काम आएगी। और अब प्रतिमा अजमानी को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: कार्यक्रम कानून की बात में अभी आप सुन रहे थे निःशुल्क सहायता योजना, लोक अदालत, नए आपराधिक कानून में भरण पोषण के प्रावधान, इस विषय पर असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल रायगढ़ श्री रविंद्र कुमार साव से ली गई भेंटवार्ता। भेंटकर्ता थी प्रतिमा अजमानी। ये आकाशवाणी रायगढ़ की प्रस्तुति थी। थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य
7: घर। पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
8: बेटा,
7: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
8: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
9: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
7: कहाँ।

0: एडमिशन कराने, आता हुआ एक्टिव।
1: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
4: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
3: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
4: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
3: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
4: क्यों?
3: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
5: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
6: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते किसानों को इस वर्ष यूरिया और डीएपी पिछले वर्ष के मुकाबले थोड़ा कम दिया जाएगा, राज्य सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। राष्ट्रपति कल नई दिल्ली में प्रदान करेंगी पद्म पुरस्कार। दंतेवाड़ा जिले के गोडबोले दंपति को भी पद्मश्री से किया जाएगा सम्मानित। प्रदेश के सभी डाकघरों में अगले दो दिन अल्प बचत खाता खोलने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। और सुरक्षा बलों ने कांकेर नारायणपुर के सीमावर्ती इलाके से बड़ी मात्रा में नक्सल डंप बरामद किया। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने खरीफ वर्ष 2026 के लिए सहकारी क्षेत्र में उर्वरक वितरण संबंधी नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार बीते वर्ष किसानों को वितरित की गई उर्वरक की मात्रा के आधार पर इस वर्ष का कोटा तय किया गया है। इसके तहत इस वर्ष किसानों को यूरिया की 80% मात्रा ही पारंपरिक यूरिया के रूप में दी जाएगी, शेष 20% मात्रा उपलब्धता के आधार पर प्रदान की जाएगी या उसके बदले नैनो यूरिया दिया जाएगा। डीएपी वितरण भी पिछले वर्ष के मुकाबले 60% ही किया जाएगा, शेष 4% मात्रा के लिए वैकल्पिक एनपीके उर्वरक या नैनो डीएपी उपलब्ध कराया जाएगा। शासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी किसान को नैनो उर्वरक लेने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, यह व्यवस्था पूरी तरह वैकल्पिक होगी। गौरतलब है कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों तथा खाड़ी क्षेत्र में चल रहे तनाव के मद्देनजर राज्य सरकार ने किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए यह निर्णय लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 25 मई को नई दिल्ली में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इनमें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले को संयुक्त रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर आकाशवाणी नई दिल्ली अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के तहत 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ शासन को विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 2 माह में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। एक याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि राज्य में 49,000 से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए करीब 4,000 विशेष शिक्षकों की जरूरत है। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि 848 स्वीकृत पदों में से 62 शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 155 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और 85 विशेष शिक्षकों को स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत होने का अवसर दिया जाए। केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक संगठन या संस्था अगले

0: ने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से सभी राज्यों में लागू हो जाएगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने नियमों में सख्ती करते हुए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार अब हवाई यात्री एयरपोर्ट के सुरक्षा होल्ड एरिया पर रेल बनाना पूरी तरह से बैन रहेगा। साथ ही हवाई जहाज के खड़े होने वाली जगह और बस से यात्रियों को विमान ले जाने वाले तक स्थान पर रुककर रील फोटो या वीडियो बनाना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और आम लोगों को घबरा कर अतिरिक्त खरीदी करने की जरूरत नहीं है। सरकार के अनुसार राज्य में करीब 3 करोड़ 94 लाख लीटर पेट्रोल और 8 करोड़ 8 लाख लीटर से अधिक डीजल का भंडार उपलब्ध है। किसानों और जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए ईंधन की नियमित आपूर्ति जारी है। राज्य में 22 मई से ड्रम और जेरिकेन में पेट्रोल डीजल देने पर रोक लगाई गई है। सरकार ने लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की है। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत कांकेर नारायणपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने 2 अलग-अलग स्थानों से डंप बरामद किया है। डीआरजी बीएसएफ और बीडीएस की संयुक्त टीम ने कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पल्लाहूर और जपमरका के बीच जंगल में छिपाकर रखे गए नक्सल डंप को बरामद किया। इसमें बीजीएल लॉन्चर, बीजीएल सेल, फायर कार्टेज, AK-47 और एसएलआर का खाली कार्टेज सहित विभिन्न विस्फोटक सामग्री शामिल हैं। इसी तरह सुरक्षा बलों ने कांकेर नारायणपुर सीमावर्ती क्षेत्र के ग्राम मरकाबेड़ा, आदनार और एलूर के बीच जंगल से भी नक्सल सामग्री बरामद की है। इसमें 3 12 बोर की राइफल, बीजीएल लॉन्चर, बारूद और इलेक्ट्रिक डिटोनेटर सहित विस्फोटक सामग्री शामिल हैं। उधर राजनांदगांव जिले की सीमा से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में माओवाद विरोधी अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान नक्सली डंप बरामद किया। डंप से हथियार निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। जांजगीर चांपा जिले की पर्वतारोही अमिता श्रीवास ने बीती 22 मई को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सफलतापूर्वक फतह किया। हालांकि वापसी के दौरान अत्यंत कम तापमान और ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें आज हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर काठमांडू के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस घटना की जानकारी मिलते ही राज्य के उच्च अधिकारियों को समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अमिता के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल द्वारा प्रदेश के सभी डाकघरों में कल और परसों यानी 25 और 26 मई को अल्प बचत खाता खोलने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान कोई भी नागरिक अपने नजदीकी डाकघर जाकर या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकृत एजेंटों के माध्यम से अल्प बचत योजनाओं जैसे मासिक आय योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि में निवेश कर सकेंगे। प्रदेश में संचालित प्रयास बालक और कन्या आवासीय विद्यालयों के वर्तमान सत्र में प्रवेश के लिए आयोजित प्राक चयन परीक्षा के मॉडल उत्तर जारी कर दिए गए हैं। विद्यार्थियों से कक्षा 9वीं प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र या उत्तरों से संबंधित किसी भी प्रकार की दावा और आपत्तियां 30 मई को शाम 5:30 बजे तक आमंत्रित की गई है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सरिया पुलिस ने धान खरीदी में फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए साल्हे ऊना उपार्जन केंद्र के समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।

0: है। इन पर आरोप है कि बिना धान की वास्तविक आवक के ही ऑनलाइन एंट्री कर करीब 99 लाख रुपए का गबन किया गया। इस मामले में सहायक खाद्य अधिकारी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद सहित प्रदेश के 18 जिलों में एक दो स्थानों पर लू चलने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम से आने वाली शुष्क और गर्म हवा के प्रभाव के कारण अधिकतम तापमान बढ़ा हुआ है, जिसके कारण गर्मी से अभी राहत मिलने की संभावना नहीं है। वहीं आज रायपुर में 43.6, बिलासपुर में 43.4 और जगदलपुर में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इस बीच विशेषज्ञों ने लू से बचाव के लिए सावधानी बरतने की अपील की है। विशेषज्ञों ने पानी और तरल पदार्थों का सेवन करने, हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने और पूरे शरीर को ढककर रखने की सलाह दी है। साथ ही अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलने की भी अपील की है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। कबीरधाम जिले के एक राइस मिल में चोरी करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी हुआ चावल भी बरामद कर लिया गया है। बालोद जिले के ग्राम सिवनी और देउरतराई क्षेत्र में जिला प्रशासन और पुलिस ने तांदुला नदी तट पर हुए अवैध कब्जों को हटाने के लिए अभियान चलाया। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के बारनवापारा अभयारण्य के पास देवपुर में बच्चों के लिए विशेष नेचर कैंप का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर बलौदाबाजार वन मंडल के विभिन्न वन परिक्षेत्रों और अभयारण्य क्षेत्रों में जन जागरूकता और सहभागिता आधारित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत सारंगढ़ में वस्तु प्रदर्शनी सह विक्रय मेले का आयोजन किया गया। मेले में सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिले के जनजातीय कारीगरों ने हिस्सा लिया। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में जिला शिक्षा अधिकारी ने 2 सहायक शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। दोनों पर कर्तव्य पालन में लापरवाही बरतने का आरोप है। रायपुर पुलिस ने पंजाब से ड्रग की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 56 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है। जांजगीर के करही गांव में करीब 1 महीने पहले हुए गोलीकांड के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बिटकॉइन में निवेश कर मुनाफा दिलाने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 7.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में दुर्ग पुलिस ने एक आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते किसानों को इस वर्ष यूरिया और डीएपी पिछले वर्ष के मुकाबले थोड़ा कम दिया जाएगा, राज्य सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। राष्ट्रपति कल नई दिल्ली में प्रदान करेंगी पद्म पुरस्कार। दंतेवाड़ा जिले के गोडबोले दंपति को भी पद्मश्री से किया जाएगा सम्मानित। प्रदेश के सभी डाकघरों में अगले 2 दिन अल्प बचत खाता खोलने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और सुरक्षा बलों ने कांकेर नारायणपुर के सीमावर्ती इलाके से बड़ी मात्रा में नक्सल डंप बरामद किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
1: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो,
1: कहाँ
3: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव,
4: आरबीआई कहता है।
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: थोड़ी देर में
7: अभी हिंदी में प्रादेशिक समाचार अनुप्रसारित किए जा रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने का अंतिम भाग। सूरज फिल्म का गीत हम आप तक पहुंचाएंगे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। हसरत जयपुरी के शब्द, शंकर जयकिशन का संगीत और पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी हैं पश्चिम बिहार दिल्ली से नीरज अग्रवाल, सहज अग्रवाल, श्लोक अग्रवाल, नांदघाट कातलबोड़ से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री राजपूत, टिकेश्वर राजपूत, ऋतु राजपूत, खंडवा मध्य प्रदेश से बेबी शालिया डावर, बेबी हलीमा, बेबी जिकरा डावर, बेबी आयशा खत्री, जिलाधार धर्मपुरी से आप हैं।

गुप्ता जी, ईशा जी और जाकिर खत्री, सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश सेन, कंचन और माही सेन, बीकानेर से नरेंद्र, कांतिलाल, शरद, मयंक, विमल, लालेंद्र, होलेंद्र, रोनी, जैन, प्रमोद और इनका पूरा परिवार, संबलपुर कांकेर से आप हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी, धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान और इनका पूरा परिवार, टैगोर गार्डन न्यू दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा स्वीटी, तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा और इनका पूरा परिवार, पुरानी भिलाई 3 चौरौदा से नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, जीशान अहमद सिद्दीकी, शाहनवाज अहमद सिद्दीकी, रिंगनी छत्तीसगढ़ से आप हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, बालोद से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, इन्हीं के साथ हैं आरती और प्रभा देवी, पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल, राधिका बेबी और इनके साथी, मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित, नांदघाट से माखन चांदनी, राहुल गोपी वर्मा, आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: श्रोताओं, महिला सभा हेतु सूचना सुनिए। फोन करे गीत सुने का प्रसारण महीने के चौथे मंगलवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 26 मई 2026 मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 25 मई 2026 सोमवार प्रातः 11:00 से 11:30 के बीच की जाएगी। आपसे चर्चा का विषय होगा नई पीढ़ी की माँ। आप जिन फिल्मों के गीत सुन सकते हैं उनके नाम हैं फटा पोस्टर, निकला हीरो, यारियां, चक दे इंडिया, रंग दे बसंती। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं इन नंबरों पर। हमारा फ़ोन नंबर है 2665923100026। फ़ोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 ज़रूर लगाएं। आपके फ़ोन का हमें इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत की ओर। घायल फिल्म का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं आशा भोसले और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में। बप्पी लहरी का संगीत, इंदिवर के बोल पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी हैं कोटवा, नारायणपुर, बाबा पटिया बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, कवर्धा से आप हैं अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी खुशांत और निशांत साहू, गतौरा से बोधीराम आर्यन, शंकर अमन, सूरज, मुन्ना पाठक, कुलदीप प्रधान, विजय पांडे, संतोष यादव, जितेंद्र श्रीवास, चंद्र प्रकाश लहरे, नैला बोरसरा से हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद तिवारी, अमन कुमार तिवारी, उमाबाई, मीनाक्षी, अंजुलता और विष्णु तिवारी, चिरमिरी कुरासिया कॉलरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, हस्ता नंबर 2 से कमलेश साहू, जितेंद्र पायल साहू, तेलंगाना से आप हैं नरेश्वर नगर, नरवेल महाराष्ट्र से निर्मला विशाल और इनके साथ ही, झारखंड से

उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, आनंद सत्यम आनंद। आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं घायल फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने यहीं पर समाप्त होता है।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि कल शाम 5 बजे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए जाने वाले पद्म पुरस्कार 2025 नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव प्रसारण हम करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कल सुबह 6:30 पर सुनिएगा खेती की बात, विषय होगा प्याज के उन्नत खेती। फ्लैगशिप कार्यक्रम नौविहान में विषय होगा कल का राष्ट्रीय शिक्षा मिशन। इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं 6:45 पर। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का कार्यक्रम अमराई सुनिएगा 8:30 पर। युवा जगत में आज की बात के तहत विषय होगा वर्ल्ड फुटबॉल डे, क्रम में होगा कला और साहित्य। इस कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा 5:35 पर। ग्राम सभा में बेरा के गोठ का विषय होगा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसी कार्यक्रम में डॉक्टर निवेदिता पाठक विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विकास केंद्र बिलासपुर से भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। विषय होगा पोषण वाटिका का महत्व एवं आधुनिक मॉडल। भेंटकर्ता होंगे वीरू भैया। 7:20 पर इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं। FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। 7:20 होने वाले हैं, आइए शामिल होते हैं कार्यक्रम ग्राम सभा में।

कार्यक्रम के सुनैया जम्मो संगवारी मनला सरवन भैया के जय जोहार अउ राम राम। तो संगी हो, देखो भाई, गर्मी हाँ अब्बड़ अकन बाढ़ गए हैं, है ना भाई। आओ सूरज देवता हा तो कहे जाए अंगरा बरसावत है, कोनो कति जाहा तो एकदम मुकान्हा जरे लागथे। फिर संगी हो, काम बूता तो हमन ला करना ही है, काबर के बिना काम करे तो भाई हमारे पेट हर नहीं भरे, है ना भाई। बैठे बैठे कहाँ ले पाबो पैसा कौड़ी ला, तो काम बूता ला करने पड़ते। आओ संगी हो, देखो हमन के जेन खेती किसानी के कृषि के काम है तेना बहुत ज़्यादा रहते, आनी बानी के काम बूता ला करना पड़ते, निंदाई गोड़ाई जोताई मिसाई बुआई पानी पलोई, यानी कहे जाए तो बहुत ज़्यादा काम बूता रहते। और संगी हो, ये सब काम बूता ला कृषि यंत्रीकरण हा बहुत हद तक कम कर दे है, काबर के संगी हो खेती किसानी के काम मा आधुनिक मशीन और उपकरण के उपयोग करना ही कृषि यांत्रिकी है ना भाई। और यदि संगी हो सके तो खेती के अधिकांश काम ला पहली का हुआ है तब मनखे मन और पशु मन के सहायता ले ही करे जात रहे, है ना भाई। कि कुछ काम ला का है अपन मनखे मन करे और पशु मन के सहारा ले में ओखर हिसाब

आपसे ही उमन की रहत मही जेन भी काम है होवे। फिर अब का है, अब नवा नवा किस्म के आनी बानी के मशीन मन आ गए है, जेखर जेखर से हमन ये सब काम कर सकथन, है ना। ट्रैक्टर आ गए है, थ्रेसर, हार्वेस्टर, पंप सेट, है ना, सीड ड्रिल, ये सब मशीन आनी बानी के जेन आ गए है, जेखर ले हमन के काम ह बढ़िया एकदम जल्दी जल्दी तेज हो जाते और आसान घला हो जाते और अधिक लाभदायक बन गए हवे, है ना संगी हो। फिर संगी हो, गोट बात तो करबो हो, फिर आवाओ सुन लेथने संदेश ला।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: पापा लाइए 3,000।
2: क्यों भाई?
1: मेरी पॉकेट मनी।
2: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
1: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
2: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
1: अपना मोबाइल लाओ,
2: ले ले।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: संगी होमन बात करत रहे हैं कृषि यंत्रीकरण के। संगी, कृषि यंत्रीकरण के मुख्य उद्देश्य कि खेती के कार्य ला सरल और तेज बनाना। तो कौन ढंग ले भाई, पहली मनखे मन और पशु मन के द्वारा करन तो वह धीरे धीरे हो। जैसे एक ठील जोताई करना है तो बैला ला फांदे रहन नांगर लगा के और जोताई करत रहन, एक ठी नांगर रहे और धीरे धीरे धीरे हो। फिर अब का होते, ट्रैक्टर में जोताई करथन या और कोई मशीन में तो वहाँ 9 ठी 11 ठी नास रहते, ओमा फटाफट हो जाते और मशीन ह चलते। तो का हो गए, खेती के कार्य ला सरल और तेज हो गए है ना। समय और श्रम के बचत होते, काबर की भाई एमा बेरा भी कम लगते और जिन हमन की मेहनत रही तेनो हम बाँच गए। ओलत मशीन में चला थन, इसे बटन ला दबावा थन, बढ़िया डीजल पेट्रोल डलाए है तो हाँ गर गर गर गर चलत है जी है ना। और उत्पादन हाँ बढ़त है, बढ़ाना उत्पादन ला। तो कौन ढंग ले उत्पादन ला बढ़ाना है? तो ओमा देखो, हमन जब हाथ में करन हाथ में बोवन तो हमें जतका उत्पादन है तेन कम रहे। फिर अब आधुनिक मशीन में क्रम से बुआई हो जाते है ना, दूरी के हिसाब रहते तो ओमन में उत्पादन घलव बाढ़ गए है। काबर आनी बानी के हमन ओमा दवाई पानी घलव डल जाते, जिनमें बीमारी उमारी घलव नहीं लगे तो ओमा उत्पादन है बढ़ते। खेत के लागत है कम करना, पहली का है मनखे मन ल हमन करवान तो हमें अब्बड़ अकन पैसा देना पड़े है ना भाई, मतलब देते हैं। अपर अब वह कम हो गए है और जिन बीजा उजा रहे तेनों में लाए लगे में भी देरी ओ हो है, बेरा हो है, तो खा लागत है कम करना है। अब किसान मन के आय ला बढ़ाना, तो भाई जब जल्दी जल्दी सब काम हो ही तो हमन ज़्यादा प्रकार के हम फसल लगा सकथन, ओखर निंदाई गुड़ाई जल्दी कर सकथन, तो फिर नवा फसल लगा सकबो तो किसान मन के आय है बढ़ी है ना, लागत में कमी हो ही। अब जिन खर्चा है पहली हमन दूधिया ले लान तेखर पैसा जुड़े, फिर ओला लेगन तहाँ वहाँ बोआन जोतन तो सबके लागत है अब कम हो गए है। काबर अब फटाफट हो जाते और सिंचाई की सुविधा हो गए है। पहली मुही पार ला फोड़े जहाँ रात रात की जाके जागत पर जागत रहन है ना भाई, और मुही ला कोनो जहाँ फोड़ देवाए, अब कहो मुही हाँ गलत फूट जाए उत्ती के बंधा फूट जाए तो उत्ती पानी बोहा जाए, तेन सबके सुविधा हो गए है। काबर आनी बानी के हमन मशीन के द्वारा ओला सिंचाई करथन तो है ना। और कीट और रोग नियंत्रण हो करना एक मुख्य उद्देश्य, काबर आनी बानी के जिन बीमारी लग जाते कीट लग जाते रोग राई लगते तेखर हमन नियंत्रित करना, यही कृषि यंत्रीकरण है। और एक उपयोग होने वाले प्रमुख मशीन है जैसे ट्रैक्टर, जिन हाँ जोताई बोआई और ढुलाई जम्मो के काम आते है ना भाई, हल और कल्टीवेटर जिनमें खेत के माटी तैयार करे में काम आते और पलटाथन बढ़िया बरोबर करथन, सीड ड्रिल जिन्हें बीज ला सही दूरी और सही गहराई में बोए बर होते, पंप सेट जिन्हें सिंचाई में पानी निकाले में उपयोग होते हैं, और स्प्रेयर जिन्हें कीटनाशक और दवाई के छिड़काव करे बर उपयोग करथन बढ़िया लगा के साय साय चीज देथन ना, थ्रेसर जिन्हें अनाज ला

साफ सुथरा करके मतलब भूसा ला घला वाला कर देते, नहीं तो पहली ओ हमन पलटावत रहन ऐसे लकड़ी में कर करके तहाँ वाला ओ सामान हवा के ओ व्यवस्था करेल पड़े या पंखा धुकत रहें, ये सब हम नहीं करना पड़े, थ्रेसर में फटाफट हो जाते है ना संगियो। हार्वेस्टर जिनमें फसल ला काटे और दाना निकाले के उपयोग करथन, यानी कि संगी हो कृषि यंत्रीकरण के अब्बड़ अकन लाभ है। तो संगी हो कम समय में अधिक काम हो जाए जेन पहली और

इसी अधिकरण के अब बड़कन लाभ है। तो संगी हो, कम समय मा अधिक काम हो जाए, जेन पहली और जिन मजदूर मन की जरूरत पड़े तेन नहीं होवे, मजदूरी मजदूर मन ला निर्भर मजदूर मन में जिन निर्भरता रहे तेन कम हो गए है। फसल के उत्पादन और गुणवत्ता बढ़त है। खेती के काम में मेहनत कम लगते, समय में बुआई और कटाई होते, तो नुकसान घलो ले हमन बाँच सकथन। बड़का खेत ले खेती बहुत ही आसानी ले करे जा सकते है ना भाई। तो मशीन के उपयोग करे ले किसान मन ला कम शारीरिक मेहनत करना पड़ते, जुताई कटाई सिंचाई जेन हाँ बहुत भारी काम रहीस तेन सब आसानी से हो जाते। तो यानी कि ये सब के हमन के हमन बर वह फायदा के, और जिन मजदूर कम मजदूर लगाए तेन हाँ कम हो गए है, तो खेती के लागत घलाव हाँ कम हो जाते है ना। और आधुनिक मशीन ले समय में बुआई सिंचाई और कटाई होते तो फसल अच्छा होते, उत्पादन हाँ बढ़ते। तो संगी हो, बढ़िया हमन ला यंत्रीकरण ला अच्छे से अपनाना है, अपन जीवन ला सरल तेज और सुविधाजनक बनाते। तो ये सब हमन के फायदा के चीजें है ना भाई। और हमार जम्मो संगी मतलब भाई आज के अगोरा रहते, काबर आज है इतवार, और आज के अगोरा हमार जम्मो संगी मतलब रहते काबर के भाई आज आप मन के फरमाइश में हमन आप मन के गीतला सुनाथन है ना भाई। तो संगी हो, मन हा कहत हो ही कि आप मन हा कहत हो कि सरवन भाई हा तो गीतला सुनावत नहीं है। तो संगी हो, सुनबो गीतला फिर देखो संगी हो का है। पहली के बेरा मन में का हो, बढ़िया जेन कति देखा तो छांदी खपरा रहा है, ओसारी पटौहा ये सब के घर रहे, और जेन हाँ कतका ठंडा ठंडावे है ना। खाना बनाए वाला बन भर हड़िया उड़िया ला मिट्टी के बर्तन ला उपयोग करन, चूल्हा के उपयोग करन, जेमा खाए के मजा ही अलग रहते है। और ये सब के उपयोग ले माटी ले जुड़े रहथन, फिर वो सब हाँ तो नंदा गए है ना संगी हो। छांदी है, खपरा है, हड़िया, फिर संगी हो आवा हमने संगी मन के फरमाइश में जिन मन चाहत हैं गीत लसुने भर। तो हमार संगवारी ये बुड़गहन ले राम दुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकांता प्रजापति, शशिकांता और ग्राम रसेड़ा अकलतरा ले मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, कीर्ति कुमार, संध्या और डिगेश कुमार साहू, वासु डाली, पूर्वेश साहू, आदर्श नगर मलोट ले राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवास शर्मा, हथनी पारा भाटा पारा ले दुर्गा दुर्गेश्वरी, गीतू मुकेश वर्मा, हरीश किरण दुलारी वर्मा, ग्राम पंचायत बठेना ले बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा, चौहादा सारा गांव ले सुजान सोहात्रा, आयुषी कृत वर्मा, भाटापारा ले बचकामल मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत, विनय ठाकुर, चोबाराम वर्मा, सूरज नारायण यदु, लेखराम, राधेश्याम, जितेंद्र साहू, सियाराम टेलर, अश्वनी पांडे, ये सब के पसंद ले नील कमल वैष्णव के गाय गीत ए छांदी ले ओ छांदी आवा सुनत हन संगी हो। काबर हमन भाई छांदी और खपरा के गोट करें तय गीतों ला सुन लेथन।

संगी हो देखो भाई कतका सुग्घर गीत ला हमर संगवारी मन सुनना चाहे रही ने छांदी ले ओ छांदी कूदे रे बिलैया अ गीत लगात रही ने नीलकमल वैष्णव मन। अ संगी हो देखो भाई अभी कतका गर्मी हा बाढ़ गए है काबर की हर कति देखिया त गरम गरम लू के थपेरा चलत है ना भाई। आ वो दे कल ले तो भाई नौतप्पा घला लग जाही, नौतप्पा के पहली तो अतका थपत है सूरज देवता है और नौतप्पा में कौन जनी काय करही है ना भाई। अब ये सब के कारण का है कोनो जगह ले हमन जतका है पेड़ पौधा ला काटत जाथन है ना। अब पेड़ पौधा की कमी के मारे हर कोती एकदम टकटक लिघाम हरत है। पहली का रहा बढ़िया पेड़ पौधा रहा है और वहाँ जाके हमन ओकर छैया में जाके बढ़िया थिरा लेवन थोड़ा कहूँ जाथन त गाड़ी ला रोक लेन पैदल जाथन तभो रुक जान थोड़ी देर थिरा लेन बैठ जान सुरता लेन तेखर ले फिर हमन आघू रद्दा में रेंगन। फिर अब का है तो कोनो जगह में पेड़ पौधा बाचेच नहीं है, है ना भाई। तो जाहा तक कोती रुखिया कोनो छऊहे नहीं है फिर काय करिया संगी हो। तभे तो हमन ला पेड़ पौधा ला लगाना बहुत जरूरी है काबर संगी हो जब हमन पेड़ पौधा लगाबो तो बाढ़ी और हमन के जेन पर्यावरण है तेन ला वह सुरक्षित रखी काबर की पेड़ पौधा ले ही हमार जिंदगानी है ना भाई। उखरे ले पानी घलाव हा गिरते छैया रहते हवा आते और जिन मौसम के अतका तपत है गर्मी होते तपन बाढ़े है तेन घलाव हा उमा कहे जाए तो उतका नहीं बाढ़ी।

काबर के एक सही समय में सही जगह में और सही सही बाढ़ी ज्यादा नहीं हुई। अब आजकल का है कभू भी पानी गिर जाते, कभू भी गर्मी हो जाते, तो ठंडा हर ठंडा के दिन में रहबे नहीं करे, तो यानी पूरा मौसम के जिन चक्र तेन हाँ बिगड़ गए है ना भाई। तो वो सब ला बचाए ला हमन ला पेड़ पौधा लगाना चाहिए, काबर की पेड़ पौधा लगे रही तभी तो हमन थिराबो। और संगी हो जब थिराए विराए के बात करत हन तो पहली की तो अब तो गाड़ी मोटर मन में डोला हा चल रहे थे, बर बिहाव होते तो गाड़ी मोटर आते, पहली रेंगत रेंगत आवे है ना भाई, और अपन खंधा में धर के दुल्हन ला ले गए है ना भाई, बिहाव हो रहा है तो ओला ओमा ले गए डोला में ले गए पर ओला अपन जावाए। तो का करे जब ज़्यादा गर्मी रहे तब तो बढ़िया आमा उमा तरी में जाके रुक जाए डोला है, थोड़ा थिरा ले मैं ओहू मन कहार मन भी थिरा ले वै और दुल्हन घला और बराती घला थिरा ले वै, तहाँ पानी उनी पी के गुड़ पानी पी ले मैं तहाँ फिर रद्दा बनेंगे। तो ए ढंग ले जावा जी, तो जब हमन एक बात करथन मझनिया के घाम के और आमा के तरीके तो एक गीत ला हमार संगवारी मन सुनना चाहे ममदा चंद्राकर के गाय गीत जर गए मझनिया के घाम। अब एक गीत लगा सुनना चाहें शांतिनगर भाटा पारा ले मिलाऊ दास कुलदीप संतोष दास संदीप दास अजीत दास कुलदीप मिर्जा संजना और लक्की हराउत बाजार लाहौद ले कमलनाथ पटेल राकेश कुमार पटेल समीर पटेल और राजकुमारी पटेल। देवरी भाटा पारा ले गन्नूलाल रजक के आर साहू अश्विनी वर्मा गणेश मिस्त्री मयाराम रजक पुरेश्वर रजक फानेश्वर रजक मुकेश कुमार रजक डॉक्टर हत्या रजक कुमारी रानिया रजक ग्राम बसीवार ले शिवनारायण नामदेव सविता देवी राम प्रसाद कुमारी आंचल कुमारी चंचल कुमारी चांदनी विनय कुमार वर्षा डॉक्टर मनोज कुमार कंवर शांतिनगर पाली ले विष्णु सिंह कोरम श्रीमती संतोषी कोरम कुमारी आरती कुमारी पूर्वा कुमारी प्रतिभा योगेश नीलेश चंद्रशेखर एवं समस्त कोरम परिवार। रिंगनी छत्तीसगढ़ ले दिनेश वर्मा करुणा वर्मा छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी ले द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार वर्मा दीपक कुमार वर्मा शावेंद्र कुमार वर्मा महादेव घाट हमलेश्वर ले डोमन ठाकुर सुमन मिथिलेश तारनी सूरज सुजला ज्योति रेयांश ठाकुर। तो आवा संगी आप इन सब के पसंद में एक गीत लसुनथन जिन गीत लगावत है ममता चंद्राकर मन।

जर गए मझनिया के घामरे आमा तरी डोला ल उतार दे। संगी हो ए गीत ला भी आप मन सुने हो और गीत लगात रही ने ममता चंद्राकर। और देखो भाई अभी के बेरा है बर बिहाव घलाव के बेरा है तो हमन ला ऐसा बेरा में अपन स्वास्थ्य के घलाव ला ध्यान देना चाहिए। काबर के अतका गर्मी में ज़्यादा तेल मसाला वाले हमन ला खाना नहीं खाना चाहिए। काबर वह गरिष्ठ होते और पचे में घलाव हा नुकसान करते। तो भाई हमन ला बढ़िया हल्का फुल्का भोजन करना चाहिए। काबर की जब हमन स्वस्थ रहन तभी तो हमन ला कोनो पूछी और का है जब कुछ कोनो नहीं रहें हमन बने नहीं रहन स्वस्थ नहीं रहन तो हमारा पूछैया घोलो घलाव कोनो नहीं रहे है ना भाई। काहे मन चंगा तो कठौती में गंगा कहे जाते। तो संगी हो अब एक गीत ला सुनना चाहे हैं हथकेरा भाटा पारा ले पंचू यादव दादू यादव बावली ले कमलेश साहू हरेंद्र साहू सुशील बेलसपुरिया बिलसपुरिया और ग्राम महमंदपुर भक्तिन बाजार अकलतरा ले रमेश कैवर्त राज कुमारी आरती कैवर्त और नकुल श्याम मोहम्मद मोहम्मद अजीज स्थान लुतरक खमरिया ले रुआ बांधा सनीचरी बाजार भिलाई ले सुशील जैन कमला जैन श्रेया जैन सौरभ जैन सौर्य जैन और शुभम जैन दतरेंगी भाटापारा ले नौखेलाल वर्मा हीरा मणि वर्मा पारस मणि वर्मा पुष्पेंद्र मणि वर्मा और लच्छनपुर छत्तीसगढ़ ले विश्वनाथ साहू पंकज तिरुपति धनय आरू साहू बारगांव पामगढ़ ले निशांत तिवारी नीतू ले महेंद्र दुबे श्वेता स्वाति सार्थक संतोष गिरछा ये सब के पसंद में आवा सुनथन हमरो पूछैया भैया कोनो नहीं है गीतला जिन गीतला गावत है केदार यादव।

संगी हो अभी आप मन हमरो पुछैया भैया कोनो नहीं है। केदार यादव के गाए गीत ला सुने हो। अब भाई देखो बर बिहाव नहीं हो रहा है तत नहीं हो रहा है, बर बिहाव हो जाते तो कहे जाए आओ बहुत सारा जिम्मेदारी है बाढ़ जाते। तो संगी हो अपन परिवार ला चलाए पर हमर ला काम बूता ला करत रहना चाहिए। काबर की परिवार है बाढ़ते तो हमर काम घलो है बाढ़ते। तो बढ़िया सुग्घर ढंग ले हमर ला अपन खेती किसानी करत हन तो ओला करना चाहिए। ओकर संगे संग पशुपालन बकरी पालन मुर्गी पालन ये सब काम करके हमन अपन परिवार के आय ला बढ़ा सकथन। काबर के भाई अभी तो आनी बानी के काम ला हमन शुरू कर सकथन। ओमा सरकार घलो हमन ला सहायता करते पैसा पर लोन देते है ना भाई। तो हमन अपन काम ला अच्छे से करके अपन

परिवार ला अच्छे से चला सकता। और संगी हो पंचरा मिर्जा के तोर कंचन कायला गाय एक गीत ला सुनना चाहे हैं। कतियापारा जुना बिलासपुर ले सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश, आशीष, रवि, मोनू, सोनू, कान्हा, आदित्य देवांगन, बमहर चाटी टीले गंगा देवी देवांगन, पूनम देवांगन, धनेश्वरी महेश्वरी, कुमारी मिल्की, बेबी मीनाक्षी, निधि देवांगन, श्री सिंगी, ऋषि, महानदी, सिहावा पर्वत अंचल ले ग्राम बेलर गांव ले मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु, अंकित देवांगन, जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई, मोती बाई मानिकपुरी, ग्राम गणेश धाम मरसूली, तहसील डोंडी लोहार, जिला बलौद छत्तीसगढ़ ले बाजार पारा बेमेतरा ले भाई भरत लाल सिन्हा, लव कुमार, लक्की सिन्हा, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ ले रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिम्पल देवांगन, डोगरगांव ले जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ ले राष्ट्रपाल जय भिगे, तन्मय बेबी अनिष्का राधिका गजभिये, बागबहरा भद्रसी ले पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल सेन, खुशबू सेन, यवतमाल विदर्भ ले संतोष खड़से, विनोद खड़से। तो संगी हो आवा ए सबके पसंद के एक इतला सुना था।

तोर कंचन कायाला हो सोनपुत्री सही सबरा हूँ एक गीतला पंचरा मिर्चा द्वारा गाए गए है। और संगी हो देखो भाई गोट बात करत रहें गीत सुनवावत रहें। अब भाई महू ल जाए देवा आप मन घर कोती फिर महू ल जाए देवा कहत हो तो मोला जाए देना रे गीतला बेहतर राम साहू के गाए गीतला सुनना चाहे हैं। दतरेंगी ले विश्राम यदु पार्वती यदु प्रतिमा रीना यदु लक्ष्मी यदु लालपुर ले लुकेश यदु समीर यदु हरदेवलाल पारा वार्ड सिमगा ले रमेश कुमार यादव श्रीमती माया यादव रिंकू सन्नी कोमल यादव।

ग्राम उड़नताल दतरेंग दगोरी ले श्यामलाल प्रसाद गायकवाड़, हेमलता जागृति, सरला पल्लवी, समीर गायकवाड़। ग्राम पहारा अहिवारा जिला दुर्ग ले पोषण बंछोर, चंद्रकिरण प्रीति छाया बंछोर। और हटरी बाजार भाटापारा ले मोतीलाल देवास, श्रीमती गौतम देवास, मुकेश पवन गोलू देवास। रमन चमन चौक भाटापारा ले पूरन लाल साहू, श्रीमती चंद्रिका साहू, सोनू कुमार साहू, मोनू कुमार साहू। तो संगी हो आओ इन सब के पसंद के सुनत हन एक गीत ला।

भाई अब्बड़ बेरा हो गए महू ल जाइन देवा। बेहतर राम साहू के गीत के संगे संग संगवारी हो अपन सरवन भैया घलो जाइन देवा। मौसम के अधिकतम तापमान 46 डिग्री और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री रही से। अब एक संगे संग दयामय राग के अपन अंतस्मा अब आज्ञा देवा मोला जाइन के। जय जोहार राम राम।

अभी ग्राम सभा का प्रसारण किया जा रहा था। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। रात के 8 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। आज कलाकार हैं सुखदेव।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर। अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के कलाकार हैं सुखदेव।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं पर समाप्त होता है। आज गायक कलाकार थे सुखदेव। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 8:15 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम रजनी गंधा।

कार्यक्रम रजनीगंधा सुन रहे सभी श्रोताओं को वर्षा का स्नेहिल नमस्कार। आज आप मेरे साथ चलेंगे रजनीगंधा के सफर में।

रजनीगंधा एक ऐसा फूल है जो रात के अंधेरे में अपनी खुशबू बिखेरता है। ठीक वैसे ही कुछ पुराने और सदाबहार गाने हमारे अकेलेपन और यादों को अपनी धुन से महका देते हैं।

कुछ रातें खास होती हैं, उनमें एक ठहराव होता है, एक कसक होती है, बिछड़ने का एक खामोश डर होता है। जब दो दिल इस बात से वाकिफ हों कि आने वाली सुबह उन्हें एक दूसरे से दूर कर देगी, तो वो इस रात को जी भर के जी लेना चाहते हैं। उस वक्त पूरी कायनात समेट लेना चाहते हैं, क्योंकि दिल का एक कोना जानता है कि शायद ये रात आखिरी हो।

मोहब्बत का एक दौर ऐसा भी था जहां चिट्ठियों में अपने जज्बात उतारे जाते थे और धड़कनें दूर बैठे भी एक दूसरे को सुन लेती थी।

उसका कोई मुकाबला नहीं। कुछ आंखें इतनी गहरी और नशीली होती हैं कि दीवाने बिन पिए ही बहक जाते हैं, और जब उन आंखों में मोहब्बत का रंग खुल जाए तो दिल को संभालना मुश्किल हो जाता है।

कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जहाँ ना मंजिल का पता होता है ना फासलों का, बस एक अनजाना सा सफ़र होता है जो दिल को एक अजीब सी कश्मकश में डाल देता है।

अलविदा कहना तो बस एक रस्म है, आँखों में कल की उम्मीद और ढेर सारा प्यार लेकर अलविदा कहने का वक्त अब हो चला है। तो दीजिए मुझे रजनीगंधा को समाप्त करने की अनुमति और सुनिए कार्यक्रम का अंतिम तराना।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम रजनीगंधा यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 8:45 होने वाले हैं। समाचार अब रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई U23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ

0: संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंदर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
4: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन

0: 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जाँच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच CBI को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए। इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।

0: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उजुदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विथ द न्यूज एट 9। The headlines. India and US outline trade agreement, energy security and mobility as key areas of cooperation in high-level talks in New Delhi. BJP candidate Debangshu Panda sweeps West Bengal's Falta Assembly repoll by over 1,00,000 votes. TMC candidate forfeits deposit. West Bengal government directs all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners. Government ropes in IIT Madras and Kanpur to experts to fix CBSE re-evaluation portal glitches. In Karnataka, 8 people swept away by strong currents in Tatte Hakalu River in Uttara Kannada district. President, Vice President and Prime Minister expressed grief over the loss of lives. Normal life affected due to severe heat wave in central and northwest India. Conditions to continue for next 7 days. And at the Asian Under 23 Wrestling Championships, Indian grapplers clinched 3 gold, 2 silver and 3 bronze medals in Vietnam. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and US Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both leaders reaffirmed the strength of the India-US strategic partnership and outlined key areas of cooperation including trade, energy, mobility and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy, trade and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
3: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
2: On the Iran conflict, Mr. Jaishankar said both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and

0: साथी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार नौशाद।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर।

16 साल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था। इसी के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
2: आज के फनकार।

चाहते थे कि उनका बेटा असरार उल हसन इंग्लिश की पढ़ाई करे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को पारंपरिक शिक्षा के लिए मदरसे में दाखिल किया और अरबी व फारसी में काबिल बनाकर आलिम का सर्टिफिकेट दिलवाया। बाद में असरार उल हसन उर्फ मजरू ने लखनऊ के तकमील उल तिब कॉलेज से यूनानी चिकित्सा की तालीम भी हासिल की और वो हकीम कहलाए, लेकिन शायराना तबीयत की वजह से वो हकीमी ठीक से कर नहीं पाए और सुल्तानपुर में रहकर गजलें लिखते रहे और मुशायरों में शिरकत करते रहे। तत्कालीन दौर में वो शायर जिगर मुरादाबादी के सानिध्य में भी रहे। हकीम से शायर बनते बनते असरार उल हसन खान की शख्सियत मशहूर शायर मजरू सुल्तानपुरी में कब तब्दील हो गई, ये खुद उन्हें भी पता नहीं चला।

मजरू सुल्तानपुरी का जन्म आजमगढ़ के निजामाबाद में 1 अक्टूबर सन 1919 में हुआ था। उनका असल नाम था असरार उल हसन खान। उनके पिता पुलिस विभाग में थे और वो नहीं

सन 1945 में मजरू सुल्तानपुरी तत्कालीन बॉम्बे शहर में साबू सिद्दीक इंस्टीट्यूट में एक मुशायरे के सिलसिले में आए और अपनी पुरअसर शायरी से सुनने वालों के दिलों पर छा गए। सुनने वालों में उस समय जाने माने फिल्मकार A.R. कारदार भी शामिल थे। वो मजरू साहब से बेहद मुतासिर हुए। उन्होंने जिगर मुरादाबादी के जरिए मजरू से संपर्क किया और संगीतकार नौशाद से मजरू साहब की मुलाकात तय कर दी। दौर था 1946 के साल का, फिल्म थी शाहजहां और फनकार थे K.L. सहगल।

वामपंथी विचारधारा के समर्थक मजरू सुल्तानपुरी ने 1949 में बलराज साहनी के साथ कुछ समय जेल में भी बिताया। आर्थिक रूप से कमजोर भी हुए, लेकिन सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया।

1950 से लेकर 1960 के पूर्वार्ध तक मजरू सुल्तानपुरी भारतीय सिनेमा में अपनी गीतकारी के साथ पूरे शबाब पर रहे। सन 1965 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती के एक गीत के लिए फिल्म फेयर के श्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मजरू साहब को प्रदान किया गया।

दोस्तों, मजरू सुल्तानपुरी ने हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया, जैसे नौशाद, मदन मोहन, एसडी बर्मन, रोशन, रवि, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आरडी बर्मन, अनु मलिक, राजेश रोशन से लेकर आनंद मिलिंद, जतिन ललित और ए आर रहमान तक सभी के संगीत में मजरू ने अपने बोल पिरोए।

आरडी बर्मन के संगीत में भी मजरूह के गीतों ने कई बार धूम मचाई, चाहे वो फिल्म तीसरी मंजिल हो या हो जमाने को दिखाना है। सभी गानों ने सुनने वालों के कदमों को थिरकाया है।

0: कह सका।
1: 24 मई सन 2000 को न्यूमोनिया बीमारी के गंभीर हमले से मजरू साहब उबर नहीं पाए और मौत ने आखिरकार उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। जिंदा दिल शायरी का मतवाला और रूह को छू लेने वाले गीतों का ये रचयिता बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने गानों के जरिए सदा हमारे दिलों पर राज करता रहेगा।

0: प्रस्तुत करता रमेश गोखले। अब दीजिए राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: छाया गीत
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर

0: आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
0: छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। तुम्हें बस तुम्हें साथ लेकर चलना है जीवन की हर राह पर, हर कदम पर, क्योंकि अधूरे हैं तुम्हारे बिना सारे सपने, क्योंकि तुमने रंग भरे हैं जीवन के हर खांचे में। तुम्हारे होने से गीत बन गई है ये जिंदगी, सुर खोले हैं तुमने अपनी मुस्कानों से।

मन की उड़ान धरती और आसमान के परे है। मन की उड़ान शहरों, समंदरों, पहाड़ों और घाटियों के पार जाती है। खींचा चला

जाता रहा मन तुम्हारी तरफ, तुम्हारे आने से बहुत पहले से, बहुत पहले से तुम्हारा था ये मन तुम्हारी तरफ खींचा चला जाता रहा सदियों से। सदियों के सफर में तुम हो हमारे मन का सुकून।

तुम्हें देखना सिर्फ तुम्हें देखना नहीं है, जब तुम्हें देखते हैं हम तो अपने सपनों को जीते जागते देखते हैं। हम देखते हैं तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारे बिखरे बालों की अदा, तुम्हारा अपने ख्यालों में खो जाना, तुम्हारा गुनगुनाना, होठों में उंगली दबाकर दूर कहीं देखते चले जाना।

दुनिया की रीत है, प्यार की राहों में दुनिया अड़चने खड़ी करती है, पर प्यार करने वाले तमाम रास्तों, रस्मों और तरीकों से अलग अपने नए रास्ते तैयार करते हैं। प्यार की राहें बस राहें होती हैं उनके लिए, इन पथरीली राहों पर सुनहरी जिंदगी उनका इंतजार करती है।

दुनिया की जुल्मतों और परेशानियों के बीच चमकता रहे मुस्कान का सूरज, सीने में जब दर्द का तूफान उठे तो भी छलक न पड़े आंखें, होंठों पर पड़ी मुस्कान की चादर छिपा ले सब कुछ, सिर्फ तुम्हें पता हो कि क्या चल रहा है मन के भीतर। दुनिया के लिए मुस्कान हमारा परचम है।

अक्सर जिंदगी में चीजें देर से मिलती हैं या नहीं मिलती, अक्सर नहीं ही मिलती कुछ चीजें दुनिया में। ये कमियां, ये तकलीफें, ये अड़चने जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। कई बार दर्द भी दिल के भीतर फूल खिलाता है।

0: और फिल्म आहिस्ता आहिस्ता।
1: माना
0: आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार। ढलती जाए रात।

0: बीतती जाए रात।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है।
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। 11 बजने वाले हैं। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा, बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83